सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58:40 हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने

0: तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिसे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित GMO उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, SDRF और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। SDRF के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

यह संसार भी नश्वर है और शरीर भी जो पंच भौतिक तत्वों से बना है यह भी तो नश्वर है। जैसे गर्म तवे पर अगर पानी की बूंद डाली जाए तो कुछ सेकंड्स पानी का बुलबुला उठता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है।

यह भी तो नश्वर है। जैसे गर्म तवे पर अगर पानी की बूंद डाली जाए तो कुछ सेकंड्स पानी का बुलबुला उठता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। पानी का बुलबुला ही तो है। जब कुछ सेकंड्स का यह क्षणिक जीवन है, क्षण भंगुर है, तो फिर इस माया मोह के आकर्षण में आकर किस बात का गुमान अंदर आ जाता है प्राणी के। यह अभिमान कैसा और क्यों और किस लिए, क्या यह साथ जाता है? साथ तो सिर्फ मनुष्य के कर्म जाते हैं और जिस झूठी शान के लिए, अपने अहंकार की संतुष्ट के लिए अभिमान मानव करता है, तो सब कुछ तो यहाँ का यहीं धरा रह जाता है। कुछ भी तो नहीं साथ जाता जो जीवन भर जिसके लिए हाय तौबा मारा मारी, लेकिन कुछ भी तो नहीं, तो फिर कैसा अभिमान।

प्रभु और राम तो भक्त में करुणा वत्सल हैं और बहुत ही सहज सरल हैं, इतने दयालु कृपालु हैं कि देखिए प्रेम के ऊंचे उस उदात्त भाव में वह शबरी के माता शबरी के झूठे बेर भी खा लेते हैं, उसमें तनिक भी उन्हें हिचक नहीं होती। और उन्होंने यह ऐसा करके अपने आचरण से यह सिखलाया, संसार को बताया कि प्रेम सर्वोपर होता है, प्रेम की पावनता भाव से होती है, भाव हृदय से होता है उत्पन्न। हृदय आपका पावन होना चाहिए, उसमें तनिक भी मलिनता नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे शुद्ध और पावन हृदय से निकली हुई वह भावधारा जो प्रेम रसधारा में प्रवाहित हो जाती है, तो फिर भला जो प्रभु हैं वो उस पर उस भक्त से कैसे दूर हो सकते हैं। और ऐसे प्रभु का नाम ये सांस अगर लेती है तो जो आनंद की अनुभूति होती है वह अव्यक्त है।

0: आप सुन रहे थे अभी संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा जिन गायक स्वरों में भक्ति परक रचनाएं सुनी आपने, वे गायक स्वर थे जगजीत सिंह साथी, अनूप जलोटा और राजेंद्र कचरू के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं आज इस कार्यक्रम में द्वेष की भावना संबंधी विचार, आलेख डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी और वाचन यतीन्द्र चतुर्वेदी का है।
1: एक दिन परम संत स्वामी अखंडानंद जी गीता के अनुसार भक्त की विशेषताएं बताते हुए अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे कि एक भक्त ने पूछा, महाराज द्वेष हृदय से जाता नहीं, अद्वैष्टा कौन हो सकता है और इसका उपाय क्या है। स्वामी जी ने कहा, अद्वैष्टा सर्वभूतानाम का अर्थ है किसी प्राणी से द्वेष न करना। भक्ति के आचार्य कहते हैं कि द्वेष भक्ति का विरोधी भाव है। जितनी देर हृदय में द्वेष रहेगा उतनी देर हृदय में भक्ति नहीं रह सकती। प्रेम और दुख तो एक साथ रह सकते हैं। हृदय में भगवान की भक्ति भी हो और भगवान की अप्राप्ति का दुख भी हो, ये संभव है। लेकिन प्रेम और द्वेष ये विरोधी भाव हैं। हृदय में भगवान भी रहें और साथ ही हृदय में शत्रु भी रहे, ये भला कैसे संभव हो सकता है। शत्रु से द्वेष होगा तो वो हृदय में रहेगा ही। इसीलिए भगवान का भक्त किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता। द्वेष आकारवान होता है। जिससे द्वेष करोगे वो नेत्र बंद करने पर भी मन में स्वप्न में दिखेगा ही। लेकिन अद्वेष आकारवान नहीं है। द्वेष किसी व्यक्ति विशेष से होगा किंतु अद्वेष सबके प्रति। इसलिए द्वेष आकार के साथ बांधता है, अद्वेष किसी के साथ बांधता नहीं। द्वेष का अर्थ अशांति और अद्वेष का अर्थ शांति है। कुमारिल भट्ट ने कहा है कि जिसे तुम गांव से निकाल देना चाहते हो उसी को अर्थात द्वेष को अपने घर में बसा लेना कहां की बुद्धिमानी है। द्वेष से तुम्हें मिलता क्या है? द्वेष मन में लेकर संध्या तर्पण जप हवन करोगे तो क्या होगा? मुख से कहोगे इंद्राम स्वाहा, लेकिन मन में शत्रु का ध्यान रहेगा। अतः वह आहुति इंद्र को प्राप्त न होकर शत्रु को प्राप्त हो जाएगी, उससे शत्रु का बल बढ़ेगा। इस रीति से द्वेष धर्म का विरोधी है, उससे धर्म की सिद्धि नहीं होती। द्वेष अर्थ का विरोधी है, क्योंकि दुकानदार और ग्राहक में द्वेष हो तो उनमें झगड़ा होगा। स्वामी सेवक में द्वेष हो तो सेवक निकाल

0: दिया जाएगा। द्वेष काम का भोग का भी विरोधी है। भोजन करते समय मन में द्वेष भरा हो तो भोजन का स्वाद नहीं आएगा। मोक्ष का विरोधी है, क्योंकि राग द्वेष त्याग कर ही मुक्त हुआ जा सकता है। द्वेष से द्वेष बना है, द्विविष अर्थात दुगुना विष द्वेष है। जो द्वेष करे वह भी जले और जिससे द्वेष करे उसे भी जलाए। द्वेष की पूर्ण निवृत्ति परमात्मा का ज्ञान होने पर, सर्वत्र भगवत भाव होने पर जगत मात्र है, यह जान लेने पर सब प्रकृति का खेल है। इस निश्चय से सब पंचभूत की बनी कठपुतलियां हैं और इन्हें न जाने वाला कोई और ही है। इस निश्चय से अथवा कहीं अपना स्वार्थ न रहने पर ही होती है। जिससे तुम्हारा द्वेष है, घृणा है, स्पर्धा है, उसके प्रति नित्य रात को सोते समय प्रेम पूर्वक सच्चे हृदय से ये भावना करो कि मैं तुम्हें अपना प्यार देता हूँ, तुम तो मेरी ही आत्मा हो, तो द्वेष मिट जाएगा। धर्म तथा भक्ति हृदय को शुद्ध बनाने के लिए है। द्वेष ज्वलनात्मक वृत्ति है, स्वयं जलती है और दूसरे को जलाने को व्याकुल रहती है। अज्ञान से अभिमान, अभिमान से द्वेष और उससे क्रोध और क्रोध से हिंसा की उत्पत्ति होती है। चित्त शुद्धि के लिए मैत्री के भाव से द्वेष का नाश किया जा सकता है। भक्त के लिए, मानव मात्र के लिए द्वेष पतन का कारण है। अतः इसका त्याग करो, सबके प्रति मैत्री भाव धारण करो।
1: चिंतन बिंदु क्रम में अभी आप सुन रहे थे द्वेष की भावना संबंधी ये विचार, आलेख डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी का था और स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर वाणी जयराम और उत्तरा केलकर के संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर वाणी जयराम और उत्तरा केलकर के थे। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप दिन में 1:15 पर सुनेंगे कार्यक्रम वनिता लोक के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। आज इस कार्यक्रम में विषय रहेगा दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। विशेषज्ञ होंगी कार्यक्रम में डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 2:30 का। युवाणी कार्यक्रम संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में नशे से हमेशा दूर रहें और उर्दू संरक्षण के लिए अधिक संसाधन, इन विषयों से संबंधित चर्चा और अंजलि गर्ग की कहानी आवरण आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। संध्या 6:15 पर कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर लक्ष्मी गौतम वार्ता प्रस्तुत करेंगी। विषय रहेगा ब्रज साहित्य में सद्भावना के स्वर। संध्या 6:30 पर सुनिएगा भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या 6:50 पर कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण में आज आप सुनेंगे पशु आहार में खनिज लवण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, इन विषयों से संबंधित चर्चा। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत विजय कुमार रावत वार्ता प्रस्तुत करेंगे। विषय होगा खरीफ फसलों में कृषि रसायनों के प्रयोग संबंधी सावधानियां। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा शाम सुहानी शाम 7:31 पर। और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात SMS सुनिएगा दोपहर 12:00। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे नुजहत आरा जुबेरी की।

0: का लिखा हुआ नाटक आंखें खुल गईं। प्रस्तुति डॉक्टर ब्रजबल्लभ मिश्रा की होगी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जितेंद्र अभिषेकी का गाया ख्याल गायन। सुबह आप सुनेंगे 9 बजे डॉक्टर शालिनी शर्मा से ली गई ओपी सिंह की भेंट वार्ता। विषय रहेगा पर्यावरण के क्षेत्र में कथनी करनी का भेद। कार्यक्रम आबोहवा सुनिएगा सुबह 9:25 पर। आज इस कार्यक्रम में मोनिका विजय जानकारी देंगी बढ़ती आवश्यकताएं और बिगड़ता पर्यावरण। ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:30 पर। हेलो आकाशवाणी, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा पूर्वाह्न 11 बजे का। दोपहर 12:30 का समय रहेगा ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में डोरीलाल गोला प्रस्तुत करेंगे मल्हार गायन। ब्रज माधुरी कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर सुनिएगा कवि मुखसों क्रम में कवि देवकी नंदन कुम्हरिया का काव्य पाठ। और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा भूले बिसरे गीत प्रातः 7 बजे। श्रोता साथियों, ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आइए सुनते हैं आज इस कार्यक्रम में विजय सिंह नौलखा से जानकारी। विषय है पशुओं में टीकाकरण कब और कैसे।
1: आज हम पशुओं में टीकाकरण कब करें और कैसे करें, इस विषय पर जानकारी देंगे। पशुपालन हमारे पशुपालक भाइयों की आय का एक प्रमुख साधन है। भारत में लगभग 70% जनता कृषि व पशुपालन पर निर्भर करती है, या कहा जा सकता है कि भारत की जनता का एक बहुत बड़ा भाग अपनी दिनचर्या के लिए पशुपालन पर निर्भर होता है। इसके लिए हमारे पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वह अपने पशुओं के स्वास्थ्य का संपूर्ण ध्यान रखें। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि पशुपालक अपने पशुओं में कितने समय अंतराल पर व किस किस बीमारी के लिए टीकाकरण कराए, क्योंकि संक्रामक रोग न केवल दुग्ध उत्पादन घटाते हैं बल्कि रोग होने पर और समय से चिकित्सा के अभाव में पशु के लिए ये जानलेवा सिद्ध होते हैं। आइए अब बात करते हैं उन विभिन्न रोगों की जिनका टीकाकरण कराना हमारे पशुपालक भाइयों के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम बात करते हैं खुरपका मुंहपका रोग के बारे में। इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जन्म के उपरांत 4 से 6 माह के बाद करवाएं व नवम्बर से दिसम्बर के बीच वार्षिक टीका लगवाएं। टीके की मात्रा लगभग 5 मिलीलीटर रखी जाती है तथा टीका त्वचा के अंदर लगवाएं। इस टीके की प्रतिरोधक क्षमता लगभग 15 दिन में स्थापित हो जाती है तथा 6 से 8 महीने तक चलती रहती है। इसके बाद दूसरा टीकाकरण करवाएं। खुरपका मुंहपका बीमारी के बचने के लिए प्रमुख टीके हैं रक्षा FMD, रक्षा ओवेक इत्यादि। दूसरा प्रमुख रोग है गलघोंटू रोग। इस रोग से बचाव के लिए जन्म के उपरांत 6 माह बाद टीकाकरण करवाएं व साल में एक बार मानसून आने से पूर्व टीका अवश्य लगवाएं। टीके की मात्रा 2 से 5 मिलीलीटर तक होती है तथा टीका त्वचा के अंदर लगाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता 21 दिन में स्थापित होती है तथा 1 साल तक चलती है। इसके बाद पुनः टीकाकरण करवाना आवश्यक होता है। गलघोंटू रोग से बचाव के लिए रक्षा HS, एलम, प्रेसिपिटेटेड इत्यादि टीके प्रमुख रूप से लगाए जाते हैं। रिंडरपेस्ट रोग का टीकाकरण भी आवश्यक है। इस रोग का टीका भी जन्म के उपरांत 4 से 6 माह तक लगवाए जाते हैं तथा शरद ऋतु में वार्षिक टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। टीके की मात्रा 2 मिलीलीटर त्वचा के अंदर लगवाएं। इसकी प्रतिरोधक क्षमता लगभग 2 से 3 साल तक रहती है। इसके बाद पुनः टीकाकरण करवाना आवश्यक होता है। ब्लैक क्वार्टर रोग का टीकाकरण जन्म के उपरांत 6 माह के बाद करवाएं तथा वार्षिक डोज सालाना मानसून आने से पहले लगवाएं। टीके की मात्रा 2 से 5 मिलीलीटर तक रहती है, जो कि टीके के प्रकार व पशु के वजन पर निर्भर करती है। इस टीके की प्रतिरोधक क्षमता

0: 15 दिनों में स्थापित हो जाती है तथा एक साल तक चलती है। इसके बाद पुनः टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। एंथ्रेक्स बीमारी का टीकाकरण भी जन्म के 4 से 6 माह के बाद अवश्य लगवाना चाहिए। एंथ्रेक्स का टीकाकरण उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जिस क्षेत्र में इस बीमारी का ज्यादा प्रभाव होता है। वार्षिक टीकाकरण फरवरी से मई तक करवावें। टीके की मात्रा 1 मिलीलीटर तक त्वचा के अंदर लगवावें। इसकी प्रतिरोध क्षमता 10 दिन में स्थापित हो जाती है तथा लगभग 1 साल तक चलती रहती है। ब्रुसेलोसिस या संक्रामक गर्भपात बीमारी के लिए साधारणतः टीका 6 से 9 माह की बछिया को करवावें। आवश्यकता पड़ने पर परिपक्व पशुओं में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। 2 से 5 मिलीलीटर की मात्रा में टीका लगवावें तथा इसकी प्रतिरोध क्षमता प्रथम व द्वितीय गर्भकाल तक चलती है। इसके बाद पुनः टीकाकरण करवाना आवश्यक होता है। एंट्रोट्रॉक्सीमिया बीमारी का टीकाकरण 4 माह की आयु पर करवावें तथा 15 दिनों के बाद दूसरी मात्रा लगवावें। टीके की मात्रा लगभग 2 मिलीलीटर तक रखें। एंट्रोट्रॉक्सीमिया का टीकाकरण मानसून से पहले मई के माह में करवाना अच्छा रहता है। पीपीआर रोग हमारे क्षेत्र में बहुतायत से होता है। इस रोग की टीकाकरण 3 माह या इससे ऊपर की आयु के मेमनों में करवावें। पीपीआर का टीकाकरण प्रत्येक 3 साल बाद अवश्य कराना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें और अब समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो बस अब से कुछ ही देर में।
2: वाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज क्षेत्रम् अंतरिक्षानुसंधान क्षेत्रे प्रवर्तितुं प्रेरितवान्, येन नवोन्मेषस्य वैश्विक वातावरणस्य निर्माणं भवेत् तथा च विश्वस्य सर्वे जनाः अनुभवेयुः यत् यदि ते अंतरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं निर्मातुम् इच्छन्ति तर्हि भारतम् आगन्तव्यम्।
3: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: श्री मोदी एतत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य 20 नवोद्यमानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः संस्थापकैः च सह संवादावधौ उक्तवान्। राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे ह्यः प्रकाशितस्य संवादस्य प्रतिलेखानुसारं प्रधानमन्त्री अंतरिक्षक्षेत्रे उद्यमान् प्रारम्भं कर्तुं भारतस्य व्ययसम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मकक्षमताम् अपि प्रकाशितवान्। संवादावधौ श्रीमोदी अंतरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यमान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुम् समर्थं सुदृढं अंतरिक्षक्षेत्रीयं परितन्त्रं निर्मातुं च प्रेरितवान्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः रूसदेशस्य 2-दिवसीयायै आधिकारिकयात्रायै मॉस्कोनगरं प्राप्तवान्। यात्रावधौ विदेश मंत्री व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोग चेत्यादिषु विषयेषु भारत रूस अन्तः प्रशासकीय आयोगस्य 27वें अधिवेशनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यति। असौ रूसस्य विदेश मंत्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह अपि मेलनं करिष्यति तथा क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु च विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 27 दिनांक पर्यन्तं जापानस्य 4-दिवसीय यात्रायां भविष्यति। असौ टोक्यो नागोया ओसाका चेत्येतेषां स्थलानां यात्रां करिष्यति अथ च जापानं प्रति भारतस्य अद्यावधि बृहत्तमस्य व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य मण्डले 200+ व्यापार प्रतिनिधयः सम्मिलिताः सन्ति। वाणिज्योद्योग मन्त्रालयेन उक्तं यत् एषा यात्रा उभयोः देशयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिं प्रति विद्यमानं महत्वाकांक्षायाः व्यापकतां

जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म काला बाजार के इस गीत को। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत SD बर्मन का था। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

रतन फिल्म में ये आवाजें थी जहरा भाई अंबाले वाली और साथियों की। गीत को लिखा था गीतकार डीएन मधुक ने, संगीत नौशाद साहब का था। और साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले एक सूचना सुन लीजिए। कार्यक्रम से संबंधित आज दिन में 1:15 से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम हेलो सहेली में आज का विषय रहेगा दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। विशेषज्ञ होंगी हमारे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप टेलीफोन नंबर 0565 ये एसटीडी कोड लगाएं और 25135 पर या फिर मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर कार्यक्रम में दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। विषय ध्यान रखिए दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। समय आज दिन में 1:15 से। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्री 420। आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार शैलेंद्र और संगीत शंकर जयकिशन का था। अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे परख फिल्म के गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार शैलेंद्र और संगीत सलिल चौधरी का था। आज का ये कार्यक्रम इसी गीत के साथ यहीं पर संपन्न होता है। अगला प्रसारण साथियों बस अब से कुछ ही देर में।

0: डीला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का किया आग्रह। कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में व्यक्त किया अपना विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए 4 कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की। कहा, सरकार ने सुनिश्चित की है रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में उमड़ी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर। बाढ़ प्रभावित प्रदेश के 19 जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और इस क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तराशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। उन्होंने इस क्षेत्र में युवाओं के काम की सराहना भी की। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले करीब 3,54,000 रसोइयों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अब उन्हें हर साल 5,00,000 रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी। लखनऊ में कल आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है।
2: हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं। पहला मानदेय वृद्धि, दूसरा अगर किसी रसोइया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2,00,000 रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की, तीसरा प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवा, और चौथा आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था, अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1,000 रुपए करने के लिए हम एकत्र हुए हैं।
0: स्वाधीनता संग्राम सेनानी अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के 91वें बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के झंडे वाला पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री योगी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों की यादों को जीवित रखने के लिए प्रदेश सरकार स्मारकों के निर्माण का काम जारी रखेगी।
3: राज्य सरकार उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों

0: अमर बलिदानियों की स्मृतियों के लिए उनके स्मारक बनाने के कार्यक्रम को निरंतरता देगी। उन सभी महापुरुषों की मूर्तियों के छाजन लगाने, पार्क को नव निर्माण करने, उन्हें सुरक्षित करवाने के लिए धनराशि स्वीकृत की है।
1: जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कल काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, यामानाशी प्रांत और जापान के बीच संबंधों को लंबे समय तक और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल ग्रीन हाइड्रोजन सिस्टम के माध्यम से उत्तर प्रदेश और यामानाशी प्रांत के विकास को बढ़ावा देना है। इससे पहले जापानी मेहमानों का मंदिर पहुंचने पर रुद्राक्ष की माला और अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ आ रहा है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल युवाओं और मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उनसे संवाद करेगा, साथ ही बीएलओ से उनके अनुभव और सुझाव साझा करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ है। सावन के आखिरी सोमवार पर आज की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मुरादाबाद अमरोहा के ब्रजघाट तक करीब 60 किलोमीटर सड़क को आज तक के लिए जीरो ट्रैफिक कर दिया गया है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि वहां हाईवे पर 106 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं।
2: सावन के आखिरी सोमवार के परिप्रेक्ष्य में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। सारे जो भारी वाहन है वो ऑलरेडी डायवर्ट कर दिए गए हैं। रास्ते को एक तरफ कर दिया गया है, जहां पर एक कावड़ चल रही है, दूसरे तरफ पर जो हल्के वाहन हैं वो अभी के लिए चल रहे हैं।
1: वाराणसी में वाहनों की आवाजाही से भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने रूट कंट्रोल लागू किया है। आगामी 26 अगस्त को मिलाद उन नबी मनाया जाएगा। इस मौके पर होने वाले जलसों और जुलूस के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से सेंटर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
3: इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ की जानिब से रबीउल अव्वल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें मुसलमानों से अपील की गई है कि 12 रबीउल अव्वल यानी मिलादुन नबी 26 अगस्त को है। यह मौका वो है उस दिन बड़े पैमाने पर जलसे होते हैं और 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस में इस बात का ख्याल रखें कि जो रास्ते मुकर्रर किए गए हैं उन्हीं रास्तों से जुलूस निकालें और जुलूस में कोई भी ऐसा नारा ना लगाएं जिससे किसी के भी रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट होते हों। इसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जो रूट मुकर्रर किया गया है उसी पर सिर्फ जुलूस निकाला जाए।
1: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिषद के मुताबिक वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये पिछले वर्ष से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 सहित मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इस इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान भी जताया है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने से प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। संत कबीरनगर जिले में घाघरा और सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से धनघटा क्षेत्र के करीब 18 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का किया आग्रह। कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में व्यक्त किया अपना विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए 4 कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की। कहा, सरकार ने सुनिश्चित की है रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में उमड़ी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर, बाढ़ प्रभावित प्रदेश के 19 जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

साथियों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे ही होंगे, है ना? हम तो यही कामना करे हैं राधे रानी ते की वे सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें। और देखो साथियों, कहाँ तो देखो इतनी उमस पड़ रही है, गर्मी है रही है। अब देखो आज तो रात, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि 2 या 3 बजे से ही के मध्य में ही वर्षा की ऐसी झड़ी लगी है कि देखो अभी तक जो है पड़ रही हैं, बुनियाँ पड़ रही हैं। कहूँ जो है अब सवेरे बहुत तेज है गई थी वर्षा, और अब थोड़ा सा जो है ने मध्यम पड़ी है। तो देखो सावन को महीना तो चल ही रहे हो, और आज है सावन को सोमवार, है ना? आज वैसे वो देखो जब बाहर अच्छी हुई है ना, और सावन को महीना तो देखो वैसे हो बढ़िया लगे है, सावन को लगे है प्रकृति के हर जीव जंतु को मन भावे है।

प्रकृति जो है नहाए धोके कैसी खिल जावे है ना, ऐसी सुंदर लगे है। और वर्षा सुंदरी तो कहाँ कहे वो, कारे कारे आसमान पे छाई घटाएं है ना, अगर मंदब मंदब बयार, और फिर कोयल की कूक, दादूर चातक, सब अपने जो है सबके जो चेहरा खिल जावे हैं जब वर्षा की बूंदें पड़े हैं, और वैसे तप्त धरती को तृप्त कर दे है वर्षा की बरसात। और अपने ब्रजमा तो कहा कही वो है ना, महीना सावन जो है जब ते लगे है तब ते अपने यहाँ ब्रज में खूब धूमे धूम मच रही है, झूलनो उत्सव जो है मनाया जा रहा है। ठाकुर जी के देखो मंदिरन में कैसे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तन को, और नित्य जो है मंदिरन में हिंडोला दर्शन होवे है ना, और रंग बिरंगे जो है कबू जो है फूलन ते, कबू फूल पत्तिन ते, कबू स्वर्ण जड़ित और रजित जति, यानी सोने चांदी के हिंडोला, और तरिया तरिया के रंग से मन भावन हिंडोला सजीव है। और वहाँ में ठाकुर जी ऐसे सुंदर लगे हैं विराजित होके कि कहा कि वो आनंद ही आनंद है देखो है ना, तो अद्भुत आनंद प्रभु की जो छटा है वो ऐसी भाए जाए है कि फिर तो कछु और देखने को मने नहीं करे है। घाटा घाटा की जब बात चल रही है तो देखो घटा तो अपने मंदिर में देखो ठाकुर जी के मंदिर में मौसम के अनुरूप जैसो मौसम होए है, घटा उनको जो उद्देश्य है वो यही हुए है कि जो बाहर मौसम जैसो है जातरिया को है, तो वैसे ही ठाकुर जी को वो एहसास कराओ जाए है। कबू तो देखो आसमान में जो है गुलाबी रंग का जो है वातावरण है जाए है, कबू लाल है जाए है, कहूँ जो है रुमझुम रुमझुम खूब बरसा बरसे है, कारे कारे मेघ ऐसे गरजें कछु कहा कहे वो, तो कारी घटा गुलाबी घटा हैं और फिरोजी घटा सोसनी घटा सब तरह की लहरिया घटा, तो कैसे सुंदर लगे हैं। बहरहाल अपने ब्रज में तो कहा कहे वो है ना, आनंद आनंद है। और फिर अपने कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में तो देखो साथियों आप सब उनको प्यार है कि जो ब्रजमाधुरी कार्यक्रम और ज़्यादा रंग रंगीलो और आनंदमय है जाए है। तो अपने कार्यक्रम में तो देखो सावन की बाहर दिखे कि ना दिखे, तो फिर आओ तो फिर सबसे पहले सुने जेलो गीत।

0: शिव शंकर चले कैलाश बुनिया परवे लगी। तो साथियों, अभी आपने जो है इस लोकगीत को सुना है, तो और अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें और आनंद लें काव्य पाठ को। कवि मुखसो क्रम में आज के कवि हैं देवकी नंदन कुम्हेरिया।
1: के 16 अवतार भये हैं, जिनमें 12 परशुराम, नरसिंह, कच्छ मच्छ, ये सब ऐसे अवतार हैं जिन्हें सच्च भाव ही ना सकें। और श्री राम जी तो राजकुमार हैं, लेकिन कृष्ण को जो अवतार है वही ऐसा है जब ब्रजवासी ने खूब सच्च भाव को प्रयोग किया हो और हमारे संतन ने खिलत में को काको घुसैया भाग गयो लेके कुपोत गमारे से सुनाए। तो आज के संदर्भ में हम ब्रजवासी खरी खोटी सुनाए वे पीछे ना आए। तो सुनो कि एक काली नाग नाथ मन में सिहाए रहे हो, एक काली नाग नाथ मन में सिहाए रहे हो, और सांपन के बीच तो हमारे घर द्वारे हैं, हमें देख ले। कि एक काल यवनन के डर सो तू भाग गयो, और देतन सो लड़े हम युद्ध अति भारी हैं। एक कंस कौतिक तू देख के कुपित भयो, ऋषाय को एक बात कही, एक कंस कौतिक तू देख के कुपित भयो, और यहां नित कंस भिड़े गेल ओ गिरारे हैं। कहे कवि नंदन तू कर ले विचार यार, तोते हम जीवट में लाख गुने भारे हैं। और तू तो रहो और खरी खोटी देखो कि तू तो रहो भोगी रूप रंग को ही लोभी सदा, तू तो रहो भोगी रूप रंग को ही लोभी सदा, और द्वारकाहू जाए जोरे कंचनी अखाड़े हैं। कि आठ पटरानी और 16,000 रानी कुनबा बढ़ायो जाके ठाट बाट न्यारे हैं। हमको हूं देख जाके संग साथ फेरा फिरे, हमको हूं देख जाके संग साथ फेरा फिरे, और ताहे संग राख के गृहस्थ पन पारे हैं। नंदन जू सपने हूँ देखी ना पराई नार, और तेरी तरिया ते हम नाम ना निकारे हैं। रुक्मिणी लेके भग गए हो, चोरी बरजोरी तो एक घुट्टी में मिली है लाल, तेरो दोस्त ना है। कि चोरी बरजोरी तो एक घुट्टी में मिली है लाल, और झूठ फूट द्वंद फंद रचे नित न्यारे हैं। कि भोरी नदरानी जू

कीनों अति लाड़ प्यार और ताही ते बिगर गई लक्षण तिहारी है। गोकुल में ग्वालिन सो नित्य जो रचा तो रार, गोकुल में ग्वालिन सो नित्य जो रचा तो रार, और बनिगो स्वभाव ताने गजब गुजारे हैं, बनिगो स्वभाव ताने गजब गुजारे हैं, नंदन जू नायक तू बन्यो महाभारत को, और भैयन ते भैया ही कटाए सब मारे हैं। और हम ब्रजवासी, देख हम कितने सीधे सच्चे हैं कि हम ब्रजवासी द्वंद फंदन सो दूर रहें, हम ब्रजवासी द्वंद फंदन सो दूर रहें, व्यर्थ में लड़े ना काहू भूल ना सता में हैं, व्यर्थ में लड़े ना काहू भूल ना सता में हैं, मान ओ गुमान को तो मन में न लामे ध्यान, मान ओ गुमान को तो मन में न लामे ध्यान, सरल स्वभाव और ना ही इतरा में है। संठन कु संत, ब्रजवासी बड़े हेकड़ हो, संठन कु संत और संतन कु महासंत, संठन कु संत और संतन कु महासंत, और गुणिन कु विप्रन कु नित्य शीश नामे है, गुणिन कु बड़े निकु नित्य शीश नामे है, नंदन जू साची कहे एक जे हमारी टेक, नंदन जू साची कहे एक जे हमारी टेक, छाण ब्रज मंडल को अनतन जामे है, छाण ब्रज मंडल को अनतन जाने हैं। और ब्रजवासी को सहज स्वभाव हो, हास पर हास पे लास्को तो मैं कुछ विनोद आपके सामने रख रहे हूं। कविवर श्री बाचाल जी, कविवर श्री बाचाल जी आए अपने पास, और मन की पीरा कह रहे है रहे अधिक उदास, मन की पीरा कह रहे है रहे अधिक उदास, है रहे अधिक उदास, आंख सो अश्रु टपक रहे है रहे अधिक उदास, आंख सो अश्रु टपक रहे, और हिचकी सी ले रहे कंठ में शब्द अटक रहे, हिचकी सी ले रहे कंठ में शब्द अटक रहे, देख दशा हमने पूछी जे का कर डारो, देख दशा हमने पूछी जे का कर डारो, और गोल मटोल शरीर सुख चो भयो सो छुआरो। बे बोले फिर सुबकते, बे बोले फिर सुबकते हम है गए अपंग, बे बोले फिर सुबकते हम है गए अपंग, और घरवारी गई छोड़ के हाय हमारो संग, घरवारी गई छोड़ के हाय हमारो संग, हाय हमारो संग, ना है कोई धीर धरैया छोड़ हमारो संग, ना कोई धीर धरैया, और स्वार्थ को संसार बहु बेटा और भैया, स्वार्थ को संसार बहु बेटा और भैया, पूछी का भाभी तलाक लेके भग गई पीहर, पूछी का भाभी तलाक दे भग गई पीहर, वो बोले झर्राए पहुंच गई वो तो ऊपर, वो बोले झर्राए पहुंच गई है वो ऊपर, बिरह बिथा लख मित्र की हमें हंसी गई आए, बिरह व्यथा लख मित्र की हमें हंसी गई आए, किंतु तुरत ही मोह पे लियो पट्टो लटकाए, पट्टो लियो चढ़ाए रोमनी सूरत की नी, हसेंगे तो नाराज है ना, पट्टो लियो चढ़ाए रोमनी सूरत की नी, हाय हाय करके कछु नकली हिचकी लीनी, हाय हाय करके कछु नकली हिचकी लीनी, बोले भैया आप बृथाई मत घबराओ, बोले भैया आप बृथाई मत घबराओ, और सत्तर की गई छोड़ पचहत्तर की ले आओ, सत्तर की गई छोड़ पचहत्तर की ले आओ, सुन के मेरी सीख हूं वो बोले गरमाए, सुन के मेरी

0: सीख कू, वो बोले गरमाए, अरे बुढ़ापे में रहे मेरी हंसी उड़ाए, अरे बुढ़ापे में रहे मेरी हंसी उड़ाए, मेरी हंसी उड़ाए कटे पे नोन लगाओ, मेरी हंसी उड़ाए कटे पे नोन लगाओ, और कछु तो करो विचार नेक मन में शरमाओ, कछु तो करो विचार मेरे बुढ़ापे को, कछु तो करो विचार नेक मन में शरमाओ, नंदन अपनो समझ तिहारे घर पे आयो, और तुमने कस के व्यंग दुख कर दियो सब आयो, तुमने कस के व्यंग दुख कर दियो सब आयो, हाथ जोर विनती करी के बड़े बूढ़े ते हंसी नहीं करनी चाहिए, हाथ जोर विनती करी क्षमा करें श्रीमान, हाथ जोर विनती करी क्षमा करें श्रीमान, अब ना मैं हांसी करूं पकड़ूं दो कान, अब ना मैं ठट्टा करूं पकड़ूं दो कान, पकड़ूं दो कान देख के वे हर्षाए, पकड़ूं दो कान देख के वो हर्षाए, और तभी नीति के वाक्य हमें हृदय में झट घुस आए, तभी नीति के वाक्य हृदय में झट घुस आए, बालक बूढ़े विधुर, बालक बूढ़े विधुर के इनसे बच के रहिए, बालक बूढ़े विधुर के इनसे बच के रहिए, और मित्र मंडली बीच हास्य में चहे सो कहिए, मित्र मंडली बीच हास्य में चहे सो कहिए। और आज की स्थिति भैया ब्रज की दशा बिहारो निहारो पद है, आज की स्थिति पे ब्रज का स्वरूप है, भैया ब्रज की दशा देहारो, और ता पीछे मिलजुल के सगरी जाको रूप सुधारो, भैया ब्रज की दशा सुधारो, अब नहीं कुंज करील कदम्ब न टेंटी कहूँ दिखा मैं, अब नहीं कुंज करील कदम्ब न टेंटी कहूँ दिखा मैं, और कांटेदार बमूर उगे जो पायन में छिद जा मैं, कांटेदार बमूर उगे जो पायन में छिद जामे, और गऊ नदी के एक गलिन में सूकर टोल के लोलें, गऊ नदी के एक गलिन में सूकर टोल के लोलें, और टांगर में घुस घुस के जो कुश्ती सी लड़ते डोलें, जमुना में जलनाए भैंस घुस तामे लोट लगामे, और कच्छ मच्छ छू मंत्र है गे कौने चना चबा में, कौने चना खवा में, और दध माखन तो दूर आज सप्रीटा हूँ नहीं पामे, और मोदक मठरी के बदले अब अंडा दर्श दिखा में, गोचर भूमि कहा कर्म ठोके शमशान बिचारे, गोचर भूमि कहा कर्म ठोके शमशान बिचारे, और बीच सड़क को घेर खड़े हैं झंडा डंडा बारे, और बीच सड़क को घेर खड़े हैं डंडा झंडा बारे, ब्रज भाषा है गई गमारसी ब्रज में ही खोती जावे, ब्रज भाषा है गई गमार जे ब्रज में ही खोती जावे, और जाकाई को देखो डू डू हु हु कर तो पावे, जा काई को देखो डू डू कर हु हु कर तो पावे, और बाग बगीचा कट गई सिगरे दब गए कुंड सरोवर, और ढूंढे तेऊ मिले ना गांव के छोर पुरानी पोखर, ढूंढे तेऊ ना मिले गांव के छोर पुरानी पोखर।
1: वाकई में अभी देखो जो हम सब आप सुन रहे हैं कवि मुखोक्रम में कवि देवकी नंदन कुमेरिया को काव्य पाठ, कितना बढ़िया जो अंतिम जो पद है तो है ना, बहुत ही सार्थक है तो बहुत बढ़िया लोगों। और आज के समय में तो जहाँ ये तो खैर समस्या पूरे संसार की है, लेकिन अपने ब्रज पहले हरो भरो है तो बहुत ही बढ़िया, कितने वन उपवन हैं, और या कि हरितमा तो कहा कहीं वो सबको मन जो है मोह लेती है थी। और लेकिन अब देखो जो कवि महोदय ने चिंता व्यक्त करी है, आज को जो वर्तमान में जो बढ़िया से जो खाको खींचो है अपने यहाँ ब्रज को, तो ये हम सबन के ताई एक संदेश है कि हम सब पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक होएं, सजग होएं, और अपने ब्रज को हरो भरो स्वच्छ बनावें।

है ना, पेड़ जो कट रहे हैं, पोखर तालाब ये सब सूख रहे हैं, हैं जो गाय भैंस हैं वे देखो कैसी बेचारी परेशान हैं। अब पहले तालाब जगह जगह हते, गांव में हते, गांव के बाहरों हते, पोखर छोटी छोटी हो में, तो मतलब सबको प्रकृति ने सबको सबके हिसाब से सब कुछ दियो, उपलब्ध करायो। लेकिन अब कहाँ कहें, ऐसे आधुनिकता के चक्कर में अपने हम सब जो है मौलिकता खोते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही हम सबन के लिए गंभीरता का विषय है। तो हम सब अपना और सजग हुए, आगे बढ़ें, अब वो जो है समय रहते चेत जाए तो हम अपने पर्यावरण के लिए कछु कर सके हैं, बचा सके हैं। तो अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें और फिर सुने जे लोकगीत।

तो साथियों, अभी जो है आप आनंद ले रहे हते लोकगीत को सुन के, और या को सुर दे रहे हते प्रदीप कुमार शर्मा। तो साथियों, आज को जो है ब्रजमादरी कार्यक्रम यहीं विश्राम ले है। आप सबन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग

0: इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
1: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिता फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: हर हर महादेव।
3: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवार के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नव भारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायो

0: मैट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jaishankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kanizsa Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
2: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मंत्र है कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. More from our correspondent.
3: The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. This annual strategic forum enables coordination among intelligence, paramilitary and police leadership on internal security, border management and emerging threats. During the DGP-IGP conference in 2016, Prime Minister Narendra Modi had directed the security and police heads to hold the National Security Strategies Conference every year, with the objective of finding solutions to major national security challenges using the extensive experience of the cutting-edge level officers working at the grassroots level in collaboration with domain experts. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will co-chair the 27th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation with First Deputy Prime Minister of Russia, Denis Manturov, in Moscow today. He will also meet his

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।
1: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। जी हाँ साथियों, आज जिस तरह से मौसम भीगा भीगा है तो उसी तरह से आज कुछ भीगे, कुछ रुझुम, कुछ रिमझिम, कुछ सावन की मस्त बहार, कुछ ठंडी बया, कुछ काली घटाओं से और भी वगैरह वगैरह जो मन को आनंद दे मौसम के अनुसार, इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए हैं ये गीतों का खूबसूरत सा गुलदस्ता।

आप अभी सुन रहे थे फिल्म नमक हलाल के इस गीत को किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर, 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें

0: पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

साथियों, आपने सुना अभी फरार फिल्म के गीत को किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज दिन में 1:15 से आप सुनेंगे हेलो सहेली कार्यक्रम में। आज ये फोन इन कार्यक्रम विषय रहेगा दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। शामिल होने के लिए कार्यक्रम

में आप टेलीफोन नंबर 25 3135 और जो मथुरा से बाहर के श्रोता हैं सिटी कोड अवश्य लगाएं 0565 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं और दांतों की सामान्य बीमारियां और उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। समय और ध्यान रखिए 1:15 से और विषय रहेगा दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। आप दांतों से संबंधित कैसी भी समस्या हो जैसे कैविटी है, दांतों में सड़ना, मसूड़ों की बीमारी, दांतों का संक्रमण है, दांतों की संवेदनशील झंझनाहट, सांसों की बदबू, दांतों का टेढ़ा हो जाना, दंत प्रत्यारोपण आदि जो भी आपकी समस्या है इसके लिए आप सवाल पूछ सकते हैं। समय 1:15 से सूचना समाप्त थी और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म अनजाना के इस गीत को। अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे फिल्म प्यासा सावन के इस गीत को लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। प्यासा सावन के इस गीत को लिखा था गीतकार संतोष आनंद ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: दो रास्ते फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत को लिखा था गीतकार आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदी वार्ता क्रम में आज डॉक्टर शालिनी शर्मा से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता। विषय है पर्यावरण के क्षेत्र में कथनी करने का भेद।
1: पर्यावरण हमारे जीवन का अहम पहलू है। पर्यावरण की जो बात है हम कई बार आपसे करते रहते हैं, लेकिन बात करना और उन बातों पर अमल करना ये दोनों जिंदगी के अलग पहलू हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के अनेक प्रयास हुए, अनेक नियम कायदे कानून हुए और आज भी वो जारी हैं, लेकिन बावजूद इन प्रयासों के, नियमों के, कायदे कानूनों के, पर्यावरण संरक्षण की जो बात का क्रियान्वयन होना चाहिए, जो कार्य रूप में होना चाहिए, उतना हो नहीं पा रहा। और इसी का कारण है कि पर्यावरण के जितने भी घटक हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे मनुष्य स्वयं हो, वो सब इसके प्रभाव को झेल भी रहे हैं। क्या कुछ किया जा सकता है और हमारे इस कथनी और करनी के जो भेद को हम कैसे मिटा सकते हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी शर्मा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी बीएससी कॉलेज मथुरा में। मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार। नमस्कार
1: जी। तो ये कथनी और करनी का जो अंतर है, अगर हम इसको जीवन में कहीं भी लागू करें, शायद ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हर आदमी जानता है, लेकिन उस गैप को शायद भर नहीं पाता। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ उसमें?
2: बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक तरफ तो प्रयास ये कर रहे हैं कि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, और उसके लिए दुनिया भर के सम्मेलनों में पैसा बहाया जाता है और कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कि जो हम गतिविधियां करते रहते हैं वो बराबर से चलती रहती है हमारे, तो बात ये यहाँ पर यही समझ में आती है कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा
1: अंतर है
2: उनका। देखिए, पृथ्वी पर जो प्रदूषण है वो कम नहीं होने पर आ रहा है, चाहे वो आप कितने प्रकार के आविष्कार हो या कोई और तरीके की गतिविधियां हो जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, चाहे अपनी सुरक्षा से संबंधित हो या आपकी आरामदायक जीवन शैली के लिए कोई चीजें बना रहे हो आप, तो वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका पर्यावरण को
1: तो
2: प्रदूषित करने में।
1: कहीं ये कहें कि हमारा जो वैचारिक चिंतन है जिस पे हम मनन करते हैं, या क्योंकि आदमी पहले विचार रूप में होता है और उसके बाद में क्रिया आती है उसमें, तो आदमी ये कहते हैं कि जैसा सोचता है वैसा ही आदमी बन भी जाता है उसमें, लेकिन आजकल जो है उसका वो जो भेद है, आपने एसी की जैसे बात की, भाई हम सोचते विचारते एसी में बैठ करके, लेकिन एसी का जो दायरा है वो अलग है, और एक जो स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छंद वातावरण है, बहुत सारे काम हम जीवन की अगर प्राकृतिक वातावरण करें तो उनको सहजता से किया जा सकता है, लेकिन आदत इतनी हो गई है कि हम उससे कट गए। ये शायद आप कहना चाह रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, हम उससे बिल्कुल कट गए हैं। बात तो हम करते हैं, वही चीज हम करते जा रहे हैं साथ के साथ, और उसी से बचाव की बात करते जा रहे हैं, तो वो चीजें कैसे कंट्रोल में आएंगी, उनको करने के लिए आपको उसको यथार्थ रूप देना पड़ेगा, जमीन पर आकर के आपको काम करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि हम जो चीजें कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, और यही वजह है कि आज हम जो है अपना पर्यावरण प्रदूषण में पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। इतनी सारी आप देखिए संक्रामक बीमारियां होती जा रही हैं जिनको बारे में कभी वर्षों पूर्व कभी हुआ ही नहीं थी वो बीमारियां।
1: जी, उस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है उसमें।
2: जी,
1: अगर हम आधुनिक जीवन

0: द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बाद के उसमें अगर एरा में ले ले, क्योंकि शायद 1950 से पहले इतनी गंभीरता से नहीं सोचा गया था पर्यावरण को लेकर
1: जी
0: के, क्योंकि आबादी भी कम थी हमारे स्वयं के जो देश की। अगर 47 की बात कर ले जब देश आज़ाद हुआ, और उन 75 सालों में उस समय आज़ादी के समय शायद हमारे देश की अपनी जो आबादी थी वो 36-37 करोड़ थी,
1: जी
0: और आज हम 1 अरब 36 करोड़ की
1: बिल्कुल
0: तरफ जा
1: बहुत
0: रहे
1: कम।
0: हैं। तो इन 75 सालों में भी जनसंख्या इतनी बढ़ी, उस जनसंख्या के जीवन यापन और उन्नत जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत सारा जो है बोझ
1: बोझ भी
0: पड़ा,
1: है।
0: तो उन्नत जीवन को करने और उसको अच्छा बनाने के लिए ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भार अंत में प्राकृतिक संसाधनों पर ही
1: बिल्कुल
0: पड़ता
1: पड़ा।
0: है। तो बहुत सारे प्रयास भी उस बीच में होते रहे। इन पे एक नज़र अगर आप डालें तो क्या लगता है कि बहुत सारे प्रयास तो हुए, लेकिन बात वही थी कि जो प्रयास हुए वो कम पड़ गए, वो होने चाहिए थे,
1: जी
0: वास्तव में उन
1: बिल्कुल।
0: पे अमल नहीं हो पाया
1: देखिए,
0: उसमें।
1: अब 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है,
0: जी
1: और ये जो है जलवायु सम्मेलन आयोजित तब किया गया जब ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो युद्ध की विभीषिका थी, जो उससे चीजें नष्ट हो गई थी, प्राकृतिक संपदा खत्म हो गई थी, बीमारियां फैलने लग गई थी, तभी सोचा गया कि कुछ पर्यावरण को बचाने के लिए काम किए जाएं। उससे पहले नहीं सोचा गया था। तब उसके बाद ये सम्मेलन हुए और पर्यावरण को संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ी। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने भी बहुत से अधिनियम बनाए कि आप वन्य जीवों का संरक्षण करें, जल का संरक्षण करें, वायु का संरक्षण करें। आपने उद्योग धंधे भी लगाने के लिए अगर आपको जरूरत है तो सरकार की
0: अनुमति
1: अनुमति
0: कीजिए।
1: लें।
0: हाँ
1: लेकिन बहुत कोशिश की उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए, लेकिन युद्ध की विभीषिका थी उससे चीजें इतनी खत्म हो जाती हैं, और वो आज भी हम देख रहे हैं कि हम वर्षों से उन पे काम कर रहे हैं। अभी ग्लासगो सम्मेलन होके चुका है, पेरिस समझौता होके चुका है, जलवायु परिवर्तन के लिए पूरा विश्व एक हो चुका है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, उससे पहले ईरान इराक का वर्षों युद्ध चला।
0: हाँ
1: तो जो उससे जैव विविधता नष्ट हुई, वन संपदा नष्ट हुई, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। और हमने सुरक्षा के लिए बहुत सारे, अभी हमें मालूम है किसी भी देश से युद्ध हो सकता है हमारा, तो हम वर्षों से हमारे यहाँ युद्ध नहीं होगा लेकिन उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। सुपरसोनिक जो विमान जब उड़ता है तो उससे वनों को और जो मनुष्य मानव जाति है दोनों
0: जी
1: के लिए बहुत प्रदूषण होता है। एक लेयर बना जाते हैं वो आसमान के अंदर जो कि बहुत हानिकारक है। और जो हम परीक्षण करते हैं, अब आप देखिए मिसाइल का परीक्षण होता है, परमाणु बम, अभी एक आपने न्यूज में देखा होगा कि जब ये रूस का कुछ यूक्रेन की तरफ गया तो वहां से रेडिएशन लीक होने लग गया।
0: जी जी जी
1: अब ये बताइए अगर वो रेडिएशन लीक हो करके किस पर असर होगा? जो चीजें हम पर्यावरण को बचाने के लिए वर्षों से मेहनत
0: वर्षों
1: कर
0: से
1: रहे हैं
0: कर रहे थे। जी
1: वो
0: जी
1: एक क्षण के अंदर आप जो है नष्ट कर देंगे, उससे क्या नुकसान नहीं हो रहा? जो मलबा होता था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, लोगों को जानकारी नहीं थी, उस समय विश्व युद्ध हुआ, जो बचा मलबा था जो ऊपर से गिरते थे वॉर्म मिसाइल, उनको समुद्र में बहा दिया गया। अब सारा कचरा जब समुद्र में बह गया तो वहां समुद्र का जो जल तंत्र था
0: जी
1: वो खत्म हो गया, वहां के जीव जंतु नष्ट हो गए, पृथ्वी का जो सॉइल के नीचे की चीजें थी, जो जीव थे, वो जल था, वो सब प्रदूषित हो गया। उसको आज भी यूक्रेन में हजारों जो बच्चे हैं उनको डायरिया की शिकायत हो सकती है, ये पूरा हो
0: आगे
1: चुका
0: चल
1: है
0: करके
1: अभी,
0: मतलब
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: अभी
0: सारी
1: जल्दी
0: चीजें।
1: में।
0: अब जैसे आपने समुद्र की बात की तो समुद्र में देखने में हमें लगता है समुद्र है, पानी है, लेकिन उसके नीचे का जो जैव तंत्र है
1: जैव तंत्र
0: शायद
1: है
0: वो जो दुनिया में हम खुली आंखों से देखते हैं उससे ज्यादा बड़ा है, और
1: जी।
0: उसमें जब हम बिना किसी प्रयास के बिना जाने कुछ भी डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर प्रभाव रहेगा।
1: और हम सब एक
0: आपने
1: दूसरे से जुड़े हुए हैं,
0: जी जी जी
1: हमारा तंत्र भी वही इकोसिस्टम जो है, अगर एक बार बिगड़ गया तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है किसी ना किसी रूप में, और वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक भी चीज इसमें डिस्टर्ब होती है, चाहे वो जल तंत्र हो, चाहे वायु तंत्र हो, और चाहे भूमि तंत्र हो, तो वो उसका जो दुष्परिणाम होते हैं वो मानव जाति को भी झेलने पड़ते हैं।
0: जी
1: अब आप ये
0: तो
1: देखिए, जैसे हमारे जो ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें आपने कभी पढ़ते हैं, हम लोग सब कहते हैं कि रामायण का पाठ करेंगे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो कभी आप ध्यान दीजिए उसमें जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो एक चीज सबको पता होगी कि समुद्र जो था वो रास्ता नहीं दे रहा था
0: हाँ
1: श्रीलंका जाने के लिए। तो राम को जब क्रोध आता है तो वो कहते हैं कि जल से सुखा देंगे
0: हाँ
1: हम,
0: हाँ
1: लेकिन जब समुद्र जी प्रकट हो जाते हैं
0: हाँ
1: और वो कहते हैं कि आप सुखा देंगे, आप इतने शक्तिशाली हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर जीव जंतु हैं
0: इसलिए मैं
1: वो
0: अपना ईगो
1: कदम
0: छोड़ता
1: मैं
0: हूं।
1: छोड़ता हूं।
0: हाँ सही
1: ये
0: बात है।
1: इस पे सब कुछ निर्भर है यहाँ की व्यवस्था, ऐसे ही हनुमान जी जब जाते हैं, वो संजीवनी बूटी, ये सबने सुना होगा।
0: ना।

0: तो संजीवनी बूटी के लिए जाते हैं, तो लेकिन जो वैद्य होते हैं तो वो कहते हैं हनुमान जी से, ये जो बूटी वाला पहाड़ तुम उठा लाए हो ना, ये बूटियां बहुत कीमती हैं, इनको आप ले जाके वहीं रख दो, ये यहाँ मत छोड़ो, वहीं छोड़ देते। तो क्योंकि
1: संरक्षित
0: वहां
1: नहीं
0: वहां
1: रह
0: वो
1: पाएंगे।
0: संरक्षित इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट नहीं है, वहां टेम्परेचर नहीं है, वहां पे उस तरीके की चीजें नहीं है जो कि वो जड़ी बूटियां बच पाए। तो आप उनको जहां से लाए वहीं छोड़ाइए। तो वो जमाने से ये चीजें सीख दी गई हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं उस पर ध्यान नहीं देते
1: ध्यान
0: हैं
1: नहीं देते
0: कि
1: हैं।
0: हमें अपनी जैव विविधता, जैव संपदा और वनस्पति सभी को बचाना बहुत जरूरी है। और जहां तक युद्ध की बात आती है, युद्ध में जो ये चीजें हम लोग करते हैं, युद्ध से कोशिश ये करनी चाहिए सिर्फ बातचीत से कुछ मसले हल हो जाएं, तो कम से कम जो ये चीजें आज विभीषिका दिख रही है हमको, वो नहीं झेलनी पड़े।
1: जी, मतलब चाहे हमारा अहम व्यक्तिगत तौर पे हो, चाहे एक देश के तौर पे हो, चाहे किसी संस्था के तौर पे हो, अपने छोटे से ईगो के लिए, छोटे से किसी लाभ के लिए, छोटे से हित के लिए, हमको सामने वाली चीज़ को दांव पे नहीं लगाना
0: जी
1: चाहिए। और पर्यावरण चूंकि एक सामूहिक जिम्मेदारी है, एक सामूहिक प्रयास है, और ये कहें कि यह सामूहिक एक विरासत है,
0: जी
1: बिना उसके हमारा किसी का भी अस्तित्व तो संभव नहीं है,
0: फिर
1: तो उसमें सामूहिक सोच और सामूहिक जिम्मेदारी से ही उसको हम बचा सकते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, दो
1: जी
0: लोगों की लड़ाई में आप देखिए, दो देशों की लड़ाई हो रही है, लेकिन उसका असर आप देखिएगा
1: पूरी
0: कि
1: मानव
0: पूरे
1: जाति
0: पूरे
1: के
0: मानव
1: ऊपर,
0: जाति पर पड़ रहा है और पड़ेगा आगे जा करके
1: आगे
0: उसके, क्योंकि
1: जाके।
0: हमें आज जब कोई चीज होती है, जो हम आज कोई आविष्कार करते हैं, हमें उसके दुष्परिणाम नहीं पता होते हैं। आज हमें बहुत अच्छी लग रही है चीज, लेकिन जब समय बीतता जाता है तो उसके जो है वो दुष्परिणाम हमारे सामने आते
1: और
0: जाते हैं।
1: इस रूप में अगर हम ये कहें कि सबको, फिर चाहे कोई भी सक्षम हो, कोई भी निर्बल हो, कोई भी प्रबल हो उसमें, लेकिन समूची मानव जाति और समूचे राष्ट्रमंडल देशों को इसमें एकजुट होना चाहिए मानवता के संरक्षण के लिए, कि जो चीज़ें हैं वो कम से कम भाई उसको सुलझा लेंगे, बाद
0: उसको
1: में भी भाई वार्ता से ही सुलझेगा
0: बाद में
1: वो,
0: भी वार्ता से सुलझेंगी, तो उस बात को
1: तो
0: पहले से ही करना चाहिए।
1: आगे क्यों बढ़ाएगा
0: और ये
1: उसको।
0: जो चीजें जो आविष्कार हुए परमाणु बम जैसी चीजों के, उन पर भी आपको रोक कुछ ना कुछ लगानी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें हैं तो इनका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम कभी ना कभी पड़ेगा जरूर। तो शांति का जो करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, एक बहुत छोटी सी चीज है, अगर शांति रखते हैं तो पर्यावरण बच सकता
1: बच
0: है।
1: सकता है, तो मतलब जो कथनी करनी का भेद है वो नहीं होना
0: नहीं
1: चाहिए,
0: चाहिए
1: कम से कम इस लेवल पे, इस एक सामूहिक उत्तरदायित्व तो और सामूहिक हित के लिए, जो हमारी साझी विरासत है पर्यावरण, उसके संरक्षण के लिए हमें एक होना पड़ेगा, और उसमें जो हम सोच रहे हैं उसी रूप में हमें उसको क्रिया के रूप में लाना पड़ेगा,
0: बिल्कुल करना
1: तभी
0: पड़ेगा
1: हम उसको बचा सकते हैं
0: जी,
1: उसमें।
0: क्योंकि सिर्फ सोचने से ही काम नहीं चलेगा, क्यों, और आपको उसमें आगे
1: आगे
0: कोशिश
1: आना
0: भी करनी
1: पड़ेगा, पहल
0: पड़ेगी।
1: करनी पड़ेगी। तो श्रोताओं, विषय तो लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ बात हम सिर्फ यही कर रहे थे कि जो हम सोचते हैं कम से कम उसको क्रिया में लाएं, और एक क्रिया के रूप में अगर हम ये कह सकते हैं कि भाई पर्यावरण संरक्षण की बात चल रही है, तो 5 पौधे लगाने की शायद हमारी
0: जी
1: भारतीय
0: बिल्कुल
1: संस्कृति में है,
0: बिल्कुल
1: तो यहीं से शुरू कर दें, चिड़ियों को पानी पिलाएं, छोटा सा पात्र रख दें, तो अपने आसपास के, कम से कम हम अपने घर के आसपास के वातावरण को, अपने जो
0: अपने
1: कॉलोनी का
0: आसपास के नदियों
1: वातावरण
0: का प्रदूषण
1: है,
0: होने से बचाएं, उसमें
1: हाँ,
0: चीजें ना डालें, प्लास्टिक ना डालें, इतना तो हम अपना अपने लेवल से तो कर ही सकते
1: अपने
0: हैं।
1: जीवन शैली में अगर ले
0: हाँ
1: आएंगे
0: बदलाव
1: तो
0: ला
1: शायद
0: सकते हैं।
1: कुछ बदलाव हो सकता है। मैडम, आप आई और जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। आप सुन रहे थे अभी ये हिंदी वार्ता क्रम में पर्यावरण से विषय से संबंधित भेंट वार्ता डॉक्टर शालिनी शर्मा से ओपी सिंह की ली गई। विषय था पर्यावरण के क्षेत्र में कथनी करनी का भेद।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अयोध्या और बलिया जिलों की हलचल।

0: प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी हो गई है। 11 और 12 अगस्त को अंतिम दौर के साक्षात्कार हुए। कुल 5,585 आवेदन मिले थे, जिनमें से कई चरणों की स्क्रीनिंग के बाद 16 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया। अब चयन समिति 3 नामों का पैनल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपेगी, जिसके बाद अंतिम नाम पर फैसला ट्रस्ट की 2 सितंबर को प्रस्तावित बैठक में हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 15 अगस्त से अर्चकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास के मुताबिक सभी अर्चकों ने पीत वस्त्र धारण किया, गर्मी में नीचे धोती और जबकि सर्दी में मौसम के अनुसार ऊनी वस्त्र होंगे, लेकिन रंग पीत ही रहेगा। बिना सिले रेशमी वस्त्रों की व्यवस्था से रामलला की सेवा में एकरूपता और अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। श्रावण शुक्ल तृतीया पर अयोध्या में झूलनोत्सव की भव्य शुरुआत हुई। रामलला के चल विग्रह को पालकी में विराजमान कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया, जिसके बाद रामलला तीनों भाइयों के साथ कुबेटिला पहुंचे, जहां झूलनोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। अयोध्या में झूलनोत्सव सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा है, जिसमें सावन के दौरान भगवान को झूले पर विराजमान कर भजन कीर्तन और झूलन के पदों से उन्हें रिझाया जाता है। मणि पर्वत मेले में भी अयोध्या के अलग अलग मंदिरों से भगवान के विग्रह शोभा यात्रा के साथ पहुंचे और झूलनोत्सव में शामिल हुए। धार्मिक समिति के सदस्य स्वामी रामानंद दास कहते हैं,
2: जैसे अयोध्या अनादि है, वैसे ही भगवान का गोलमोत्सव जिसको झूला कहते हैं, यह अनादि है और पद्म पुराण में इसका विशेषता से वर्णन है। हमारे यहाँ ये भाव रहता है कि भगवान झूले में पधारते हैं और श्रावण में उनको गीत गवनई के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है।
1: विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया। रामचंद्र दास परमहंस की 23वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा कि ट्रस्ट की सिफारिश पर SIT जांच हुई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वहीं गौ संरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि गाय सनातन धर्म और भारत की धरोहर है तथा प्रदेश में करीब 16 लाख गायों के संरक्षण का काम गौशालाओं के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
3: श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, SIT बनी, SIT के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। दूध का दूध पानी का पानी ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए।
1: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। 1,66,055 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं और 120 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इसमें 86 छात्राओं और 34 छात्रों ने बाजी मारी। इस बार स्वर्ण पदक विजेताओं के माता पिता और अभिभावकों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और शिक्षा को शोध नवाचार कौशल और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का आह्वान किया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने अयोध्या में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लिया और रामलला व हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और कई महिलाएं 25 से 30 हजार रुपए प्रतिमाह कमा भी रही हैं। सिविल लाइन स्थित ऐतिहासिक राजकीय पुस्तकालय के उच्चीकरण और नई गैलरी के निर्माण का काम शुरू हो गया है। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भूमि पूजन कर परियोजनाओं की शुरुआत की। करीब 3,23,00,000 रुपए की लागत से होने वाला काम लगभग 9 महीने में पूरा होने का लक्ष्य है। पुस्तकालय में करीब 60,000 किताबें मौजूद हैं, जिनमें कई दुर्लभ पुस्तकें भी शामिल हैं। मिल्कीपुर के रामपुरवा गांव स्थित विघ्नेश्वर महादेव मंदिर में 60 फीट लंबा और 8 कुंतल वजनी विशाल त्रिशूल स्थापित किया गया। सावन के पहले सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 12 जिलों के रास्ते अयोध्या लाया गया यह त्रिशूल अब मंदिर की नई पहचान और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर रामनगरी शिव में नजर आई। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। सुबह से ही शिवालयों में लंबी कतारें लगी।

0: रही और हर हर महादेव के जयकारे से अयोध्या गूंजती रही। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए।
1: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
2: बलिया जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में जनपद में मेरा युवा भारत के समन्वय में अभियान का व्यापक आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालदेवपुर में आयोजित हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री के संदेश का सजीव प्रसारण किया गया और 200 से अधिक युवाओं ने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की। इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न खंडों में कार्यरत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों द्वारा स्थानीय युवा मंडलों, स्वयं सेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से भी प्रधानमंत्री के संदेश के सामूहिक श्रवण का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेते हुए नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। कुलपति ने अपने उद्बोधन में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमें केवल अधिकार नहीं देती बल्कि अपने कर्तव्यों का बोध भी कराती है। आज हमें संकल्प लेना होगा कि अपने राष्ट्र को ज्ञान, नवाचार, अनुसंधान, तकनीक और मानवीय मूल्यों के माध्यम से सशक्त बनाएंगे। इस अवसर पर वंदे तरम गीत गाया गया। इस गीत का महत्व जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया।
3: वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और स्वतंत्रता संघर्ष की अमर भावना का प्रतीक है। ऐसा पहली बार हुआ कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वंदे मातरम के सामूहिक गायन को विशेष महत्व दिया जाना निश्चित रूप से देश की गौरवशाली विरासत और राष्ट्रीय एकता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: बलिया जिले में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्थित सभागार में गोद लिए गए 6 रोगियों के बीच पोषण पोटली का वितरण CMO अभय नारायण राय द्वारा एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर CMO ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना TB मुक्त भारत हो अपना TB को हराने के लिए पोषण पोटली का वितरण रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। बलिया प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु तहसील बांसडी क्षेत्र के ग्राम महाराजपुर के बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने कटान और बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पात्र प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद तहसीलदार को निर्देश दिया कि कोई भी बाढ़ पीड़ित मुआवजे से वंचित न रहे। जिन ग्रामीणों के मकान और खेत बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनकी नियमानुसार पूरी सहायता सुनिश्चित की जाए। बलिया जिले में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत राष्ट्रभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट से शहीद पार्क तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में अधिकारियों, कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों समेत करीब 2000 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लिए लोगों के कदम बढ़े तो पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। वहीं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा नशा मुक्ति, स्वच्छता और तिरंगा यात्रा का विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कृषि प्रभारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर लाल विजय सिंह ने बताया कि
4: बलिया में विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता, नशा मुक्ति एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन उत्साह पूर्वक किया गया। विद्यार्थियों ने मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाते हुए नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, एकता एवं देशभक्ति का संदेश दिया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
6: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम आबो हवा में, आइए सुनते हैं।

0: ये जानकारी विषय है बढ़ती आवश्यकताएं और बिगड़ता पर्यावरण, और जानकारी दे रही हैं मोनिका विजय।
1: सामान्यतः पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है और मनुष्य को एक अलग इकाई और उसके चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त चीजों को उसका पर्यावरण घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएं हैं जो अपने को पर्यावरण से अलग नहीं मानती और उनकी नजर में समस्त प्रकृति एक ही इकाई है जिसका मनुष्य भी एक हिस्सा है। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो खंडों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। हालांकि पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण जिससे में मानव हस्तक्षेप बिल्कुल ना हुआ हो कहीं नहीं पाए जाते। यह विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता का द्योतक मात्र है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण शब्द का प्रयोग पर्यावास के लिए भी होता है। तकनीकी मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य और जीवन में विलासिता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ मानव द्वारा कई बार छेड़छाड़ की गई है। साल भर में हम जितनी गड़बड़ियां फैलाते हैं वह एक दिन पर्यावरण दिवस में ठीक की जा सकती है। साल भर में फैलने वाली गड़बड़ियां दूर करने के लिए हमें अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार जरूरी है। पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है इसकी व्याख्या करना आपके सामने आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आजकल विश्व भर में पर्यावरण और इसके संतुलन की बहुत चर्चा है। पर्यावरण क्या है, इसके संतुलन का क्या अर्थ है, यह संतुलन क्यों नहीं है, हमारे लिए ये क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न समय समय पर उठते रहे हैं। लेकिन आज इन प्रश्नों का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वर्तमान में पर्यावरण विघटन की समस्याओं ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया है कि पृथ्वी पर प्राणी मात्र के अस्तित्व को लेकर भय मिश्रित आशंकाएं पैदा होने लगी है। पर्यावरण को लेकर मानव समाज की दुर्गति मानव के इस निरर्थक विश्वास के कारण हुई कि प्रकृति में हर वस्तु उसी के उपयोग के लिए है। प्रकृति की उदारता, उसकी प्रचुरता तथा उसकी दानशीलता को मनुष्य ने अपना अधिकार समझ लिया और उसकी इसी संकीर्णता से प्रकृति के शोषण से उत्पन्न असंतुलन की स्थिति भयावह हो चुकी है। प्रकृति के साथ अनेक वर्षों से की जा रही छेड़छाड़ से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखने के लिए अब दूर जाने की जरूरत नहीं है। विश्व में बढ़ते बंजर इलाके, फैलते रेगिस्तान, कटते जंगल, लुप्त होते पेड़ पौधे और जीव जंतु, प्रदूषणों से दूषित पानी, कस्बों और शहरों पर लहराती गंदी हवा और हर वर्ष बढ़ती हुई बाढ़ एवं सूखे के प्रकोप इस बात के साक्षी हैं कि हमने अपनी धरती और अपने पर्यावरण की ठीक देखभाल नहीं की। अब इसके होने वाले संकटों का प्रभाव बिना किसी भेदभाव के समस्त विश्व, वनस्पति जगत और प्राणी मात्र पर समान रूप से पड़ रहा है। आज पर्यावरण संतुलन के दो बिंदु सहज रूप से प्रकट होते हैं। पहला, प्राकृतिक सौंदर्य का उचित लाभ उठाया जाए एवं दूसरा, प्रकृति में मनुष्य जनित प्रदूषण को यथासंभव कम किया जाए। आज मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार से पर्यावरण का इस्तेमाल कर रहा है, फिर वह चाहे कागज के रूप में हो या लकड़ी के रूप में, या फिर गोंद, रेजिन या अन्य किसी उपयोगी सामग्री के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। इन सब से पर्यावरण पर इसका प्रभाव क्या होगा ये हम पहले ही जान चुके हैं। अतः सारांश में यह कहना उचित ही होगा कि मानव की आवश्यकताएं और पर्यावरण दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत अभी ये जानकारी दे रही थी मोनिका विजय। विषय था बढ़ती पर आवश्यकताएं और बिगड़ता पर्यावरण। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण।

0: आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रही हैं सुरभि शर्मा।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: कार्यक्रम के संयोजक हैं ओपी सिंह।
1: स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका करते हैं आप बड़ी बेसब्री से इंतजार। इस कार्यक्रम में न केवल दी जाती है आपको सही और सटीक जानकारी, करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों से आपका मनोरंजन भी। श्रोताओ, शुरुआत करते हैं आज के विचार के साथ। आज का विचार है, अपनी धरा को हरा भरा बनाएं, स्वच्छ बनाएं। सावन मास चल रहा है, हम देख रहे हैं जैसे चारों तरफ हरियाली का माहौल है, पेड़ पौधे नवीन वस्त्र धारण करके हमारे सामने खड़े हैं। जब बारिश की बूंदें उन पर पड़ती हैं तो वो उमंग और उत्साह से भर जाते हैं। वो नहाए हुए वृक्ष इतने सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे धरती ने नया श्रृंगार किया है। ये सब हमारी आंखों को बहुत भाता है। पक्षियों का चल चहचहाना, उनका कलरव बहुत सुंदर लगता है, वो आवाजें कानों को सुकून देती हैं। लेकिन ये ऐसा कब तक? जब हम थोड़ा आगे पीछे जाते हैं तो वहीं ना वहीं कंक्रीट का जंगल हमारा स्वागत करता है। हर कोई व्यक्ति अपना एक घर चाहता है, आशियाना चाहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको वृक्ष ही काटने पड़े। क्योंकि अगर हमारी धरा हरी भरी नहीं होगी, वृक्ष नहीं होंगे, तो आने वाले समय में हम जी ही नहीं पाएंगे, हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। ईश्वर ने जो हमें देन दिए, हमारा जीवन दिया है, वो इन वृक्षों से, हरियाली से ही संभव है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां भी हमें दोष देंगी, हमने उन्हें क्या किया, दूषित पर्यावरण, दूषित वायु, दूषित जल। ऐसे में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अपनी धरा को हरा भरा बनाएं, एक वृक्ष लगाएं और उसका संरक्षण भी करें, तभी हम कह पाएंगे कि आया सावन झूम के।

सावन का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के बाद सावन का महीना प्रारंभ हो जाता है। तो श्रावण का महीना वैसे तो भगवान शिव का है, और शिव की पूजा आराधना करने से भगवान शिव सबका कल्याण करते, शिव माने कल्याण। तो जो शिव सावन के सोमवार में भगवान शिव का रुद्राभिषेक या जल चढ़ाते हैं हम, तो कहते हैं वो सीधा भगवान शिव को प्राप्त होता है, क्योंकि सब देवताओं के महीना बटे हुए हैं। जैसे कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण का है, इसी प्रकार से श्रावण का महीना भगवान शिव का है। आपने पूरी साल कोई पूजा पाठ नहीं किया, यदि श्रावण के सोमवार में और श्रावण के महीना में भगवान के ऊपर एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया, तो आपके जीवन की सारी तपस्या सफल हो जाती है। और श्रावण का महीना तो बहुत सुहावना है, और इसका संबंध हमारे राधा कृष्ण

से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रावण के महीना में भगवान बाल गोपाल अपने जो है झूला में झूलते हैं और राधा रानी भी झूला में झूलती हैं। तो सावन का झूला इतना पवित्र है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी इसका आनंद लेते हैं और साथ में भक्तों को भी आनंद दिलाते हैं। तो झूला का महत्व भी है, झूला गलते हैं सावन के महीना में, भगवान जुगल जोड़ी के स्वरूप में राधा रानी को झुलाते हैं और राधा रानी को सखियाँ झुलाती हैं। तो ब्रज का बहुत बड़ा महत्व है कि श्रावण के महीना में भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण दोनों का संयोग बना हुआ है। श्रावण के महीना में ये दोनों की लीलाएं हैं और दोनों ने लीलाएं की, और इसलिए ब्रज का बहुत बड़ा महत्व है कि श्रावण का महीना सभी महीनों में अति पवित्र उत्तम, और जो है देवताओं के प्रति के ब्रज में सारे देवता ये लीला दर्शन कर देखने के लिए ब्रज में पधारते हैं। हमारे भगवान शिव तो गोपेश्वर के वेश में ही बैठे विराजमान रहते हैं, और भी जो देवता हैं 33 करोड़ वो सब ब्रज में आते हैं। तो श्रावण के महीना में भगवान राधा कृष्ण का झूला का दर्शन करना, उनको झूला झुलाना, तो ये मान लीजिए कि सभी देवता हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमारे जीवन के सभी कष्टों को हरण करते हैं। और भगवान शिव कहते हैं कि भाव ही मेट सकहित पुरारी, भगवान शिव की पूजा करने से आपका भाग बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, क्योंकि सब उन्हीं के हाथ में है। महादेवों के देव महादेव मृत्यु को भी टालने वाले हैं। तो श्रद्धा और प्रेम के साथ में भगवान शिव के देवालयों में देखा होगा श्रावण के महीना में बहुत भीड़ होती है, सभी श्रद्धा विश्वास के साथ जल चढ़ाते हैं। और भगवान शिव की तो ऐसी लीला है कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम यमे भक्त्या पृच्छति, आप पे कुछ नहीं हो, एक लोटा जल ही चढ़ा दो, एक पुष्प चढ़ा दो, आग का धतूरे का फल चढ़ा दो, यदि बेल पत्र चढ़ा दो, एक बेल पत्र चढ़ाने से श्रावण के महीना में त्रिगुणा त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम तो त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल पत्रम शिवार्पणम, एक बिल पत्र अर्पण करने से भगवान शिव के ऊपर हमारे 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं, देवों के देव महादेव। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सहित झूला में झूलते हैं, और भगवान शिव की पूजा करने से हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रावण का महीना का बहुत बड़ा महत्व है, सभी उसमें पूजा करें भगवान शिव की, और राधा कृष्ण को भी अपने घरों में झूला में झुलाएं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और श्रावण का महीना तो इतना पवित्र है कि साक्षात भगवान ब्रज में आके अपनी लीलाएं करते हैं। तो श्रावण का महीना में इसलिए ब्रज में तो बहुत बड़ी भीड़ होती है, पूरे श्रावण ये समझिए कि मेला की तरह रहता है, सभी भक्तों के मन में उत्साह होता है, ऐसे हरियाली छा जाती है जैसे हम स्वर्ग से उतार करके साक्षात भगवान झूला में झूलने आते हैं। और अपने घरों में भी गोपाल जी को झूला में बैठार करके झुलाते हैं, लाड़ा लड़ाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन भी खिलाते हैं ठाकुर जी को। तो ये मान के चलिए कि भगवान बाल रूप में राधा कृष्ण विराजमान होते हैं और ब्रज में घर घर में आनंदित होता है और भक्तों को दर्शन देते हैं और सभी भक्तों का कल्याण होता है। तो श्रावण का महीना भगवान शिव और कृष्ण की पूजा से इतना जुड़ा हुआ है कि ये दोनों के स्वरूप के दर्शनों से, इनकी पूजा करने से हमारे जीवन में हमारा, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, सबका भविष्य उज्ज्वल होता है, मंगलमय होता है, और भगवान शिव अपनी कृपा बरसाते हैं और देवों के देव महादेव सभी कष्टों का निवारण करते हैं। बोलो, हाँ, घटाएं देखिए श्रावण के महीना में जो घटाएं होती हैं वो घटाओं का जो संपर्क है वो सीधा मेघ से है, क्योंकि श्रावण के महीना में वर्षा भी होती है, और वर्षा होने के बाद में जो है 7-8 दिन तक ऐसे बारिश होती है, बिजली चमकती है, काली घटाएं होती हैं। तो भगवान के भक्ति और भाव के कारण जो भी भक्त होते हैं वो घटाओं का भगवान को वही लीला का दर्शन कराते हैं। 7 दिन की 7 घटाएं अलग अलग होती हैं, जैसे 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के, इसी प्रकार से हम भी उस भाव से लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में, द्वारकाधीश मंदिर हो या हमारा जन्म स्थान हो या वृंदावन में बांके बिहारी हो, घटाओं से संबंध है, 7 रंगों का संबंध, ताकि काली घटा, हरी घटा, क्योंकि जीवन में जो हमारे रंग हैं वही खुशियाँ हैं।
तो हर प्रकार से घटाओं का दर्शन होता है, और उसी प्रकार से ठाकुर जी के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो सात घटाएं, सात रंग, और जीवन में सात ही दिन होते हैं, ताकि वो सातों दिनों में हम ठाकुर जी का ऐसा उत्सव मनाएं कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। और ये घटाओं का सबसे ज़्यादा महत्व आपको ब्रज में ही मिलेगा, क्योंकि काली घटा में यूँ मानो लगता है कि हमारे कन्हैया के घुंघराले वाल हैं, और वो वैसी श्याम वर्ण हैं, और श्याम जो है मेघों को भी कहा गया।

है तो उनका मेघों से संबंध होने के कारण काली घटा का दर्शन होता है। और इसी प्रकार से जो इंद्रधनुष के सात रंग होते हैं, सात रंगों में हमारे कन्हैया को वस्त्रों का, श्रृंगारों का बहुत बहुत सुंदर सज्जा होती है। और घटाएँ जो है वो साक्षात कृष्ण के स्वरूप में, और उन घटाओं का वर्णन होता है। बहुत से मंदिरों में तो फुहारे लगा करके वर्षा कराई जाती है, अब थोड़ा सा प्रकृति का ऐसा है उतनी वर्षा नहीं होती, तो इसीलिए हम भगवान से ही प्रार्थना करते ऐसे ही वर्षा हो ताकि जीवन धन वन बना रहे, गऊओं की जो है चारे की व्यवस्था होती रहे और हरा भरा जीवन रहे। तो वर्षा जब हम घटाएँ अपने अपने मंदिरों में मनाते हैं तो उससे मेघ भी प्रसन्न होते हैं और फिर इंद्र देवता वर्षा करते हैं और हमारे ब्रज में हरियाली छा जाती है और सभी का कल्याण होता है, क्योंकि बारिश होगी तो सबके लिए सुखदाई है, जीव जंतु गाय बछड़ा सबका कल्याण होता है। तो घटाओं का मतलब साक्षात भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और वही घटा के स्वरूप में विराजमान होते हैं, क्योंकि सब कुछ करने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं। क्योंकि कहते हैं ये तन चांस कलापुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हम केवल माध्यम बनाते हैं कि आज ऐसा हुआ, करने वाले सब हमारे कन्हैया हैं। तो घटाओं का जो संबंध है वो राधा रानी से और श्री कृष्ण से है, इसलिए वो घटाओं में मेघ के रूप में वर्षा करते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाता है।

0: देशा।
1: श्रोता, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सावन मास आरंभ हो चुका है। सावन मास को बड़ा पवित्र माना गया है और कहा जाता है कि सावन मास में पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। क्यों सावन मास को इतना महत्व दिया गया है, क्या है इसके पीछे मूल वजह, इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं।
2: मैं राकेश तिवारी, एडवोकेट, विधि एवं मीडिया प्रभारी, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा। श्रावण मास की जहाँ बात हम कर रहे हैं, तो श्रावण मास प्रारंभ होता है चतुर्मांस्या से, और सावन, भादों, क्वार और काते के चारों ही महीने बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस चार माह में हिंदू रीति रिवाज से या सनातन धर्म में कोई भी शादी और विवाह नहीं होते हैं। अगर होता है तो वो व्रत 84 कोस की परिक्रमा होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के द्वारा अपने माता पिता को जब यात्रा कराने की बात आई, तीर्थ यात्रा की बात आई, तो देखिए जिसका पुत्र इतना सक्षम हो उसके माँ बाप तो तीर्थ यात्रा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने सभी तीर्थों का आह्वान करके उन्हें ब्रज में बुलाया है, और वो सभी तीर्थ चार माह तक ब्रज में वास करते हैं। और इसलिए सावन का महत्व, भादों का महत्व, क्वार का महत्व और कार्तिक का महत्व, चारों का महत्व बहुत है।
1: आपने जिक्र किया कि सभी तीर्थ चतुर्मास में ब्रज में आ जाते हैं, तो जो हमारे चार धाम हैं, हमारे प्रयागराज हैं, हमारे जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, क्या सब ही ब्रज में आ
2: सब
1: जाते हैं?
2: टोटल ब्रज में विराजमान है। देखिए यहाँ ब्रज में बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, गंगोत्री भी है और यमुनोत्री भी है। अब स्थल निरीक्षण करने किसी को जाना है तो वो चार मास में कहीं भी जाए, लेकिन मान्यताओं के अनुसार सभी तीर्थ ब्रज में ही विराजते हैं इस समय चार माह में। इसलिए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है, और उस 84 कोस की परिक्रमा में देश विदेश से हजारों यात्री आते हैं, और जो व्यक्ति अपने घर से सब्जी लेने पैदल नहीं जा सकता वो 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलता है।
1: क्या ये ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है, क्या ये पैदल मार्ग से की जाती है, या इसको कब आरंभ किया जा सकता है, इस बारे में श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
2: देखिए इसको आरंभ किया जाता है इन चार माह में, इसको करने का फल है। भ्रमण के हिसाब से लोग इसे 8 दिन में गाड़ी से भी कर लेते हैं। लोग जो आज की तारीख में भी नहीं चल सकते हैं वो पाल में रहते हैं, लेकिन गाड़ी से करते हैं। लेकिन जो इसका महत्व है वो केवल इस चार माह में। वैसे आदमी अपनी सुविधा अनुसार, भाई मुझे दर्शन करने हैं, मैं कभी भी गया दर्शन कर आया, वो एक अलग विषय है। लेकिन वास्तविक में जो श्रावण मास को आपने उठाया है, तो श्रावण मास के हिसाब से इस चार माह में व्रत 84 कोस की परिक्रमा का महत्व है, और वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ हम बात कर रहे हैं सावन में हिडोलों की और झूलों की, पूरे ब्रज मंडल की ये परंपरा है कि देखिए पवित्र सावन मास में ही रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो लड़कियाँ अपने पियर जाती हैं, वहाँ आप

देखिए नीम की डाली पे उस पे झूले डाल के झूला झूलती हैं, ये हमारे ब्रज की एक परंपरा है। हम बात कर रहे हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय की। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में झूले को हिडोला कहते हैं, और ठाकुर जी के द्वारकाधीश मंदिर में स्वर्ण और रजत हिडोले बने हुए हैं जो लगभग 100 वर्ष पुराने हैं। ठाकुर जी श्रावण मास के प्रथम दिन स्वर्ण रजत हिडोलों में विराजमान होते हैं, उसके बाद मखमली हिडोला है, केसरी हिडोला है। कहने का तात्पर्य क्या है कि पुष्टि मार्ग में जो सेवा है वो बाल स्वरूप की सेवा है, तो बालक के किस प्रकार से लाड़ लड़ाए जाएं वो महत्वपूर्ण है। तो प्रतिदिन हिडोलों के कार्यक्रम होते हैं।

अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। अचानक चढ़ रहा बुखार, अस्पताल में बड़ी मरीजों की भीड़, बदलते मौसम के बीच लोगों को अचानक तेज बुखार परेशान कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिला अस्पताल के ओपीडी में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सुबह से बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को एक बड़े वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में उभारा जा रहा है। राज्य की नई औद्योगिक नीति, आधुनिक बुनियादी ढांचे और बढ़ती पर्यटक संख्या ने विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित किया है। पिछले 4 वर्षों में जिले को रसद पर्यटन विनिर्माण क्षेत्रों से 41,351 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों से विदेशी निवेशकों अप्रवासी भारतीयों का योगदान है। जिला उद्योग केंद्र के अनुसार 4 साल में 376 समझौता ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 12,264 करोड़ रुपए के 200 समझौता ज्ञापनों पर काम चल रहा है। वहीं 15,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली 166 इकाइयां शुरू हो चुकी हैं। ब्रज क्षेत्रों में निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। पिछले 4 साल में 376 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें से लगभग 41,000 करोड़ रुपए का निवेश है। तेजी से विकसित होते मथुरा जिले में और भी निवेश होने की संभावना है, ऐसा कहना है चंद्रभान सिंह, उपायुक्त उद्योग। अब सौर ऊर्जा से जगमग होगी पूरी ग्राम पंचायत। गोवर्धन ब्लॉक की ग्राम पंचायत अडिक को मॉडल सोलर गाँव बनाया गया जाएगा। यहाँ बिजली की जरूरत को पूरी तरह सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए यूपी नेडा वसुधा फाउंडेशन मिलकर परियोजना बना रहे हैं। परियोजना में गांव के प्रत्येक घर, दुकान, निजी व सरकारी कार्यालय, चक्की, ट्यूबवेल, लाइट, जलपूर्ति आदि को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। वहीं ग्रामीणों को सौर ऊर्जा में सरकारी सब्सिडी एवं सौर ऊर्जा उपकरणों में लाभ दिलाया जाएगा। अड़िक को सोलर मॉडल गांव बनाने की कार्य योजना बनाई गई है। इसके लिए वसुधा फाउंडेशन सरकारी उपक्रमों के करीब 1 करोड़ रुपए की परियोजना बना रहा है। स्वीकृत हो तो इसका कार्य आरंभ करा दिया जाएगा। गाँव को हर घर, दुकान एवं उपक्रम को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना है, ऐसा कहना है एस के वर्मा, सहायक निदेशक यूपी नेडा। अब डालते एक नजर आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा था, जिसने भारत में अंग्रेजों के व्यापार की शुरुआत करी। वहीं 1649 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने दिल्ली में गुरुद्वारा सिसगंज साहब को ध्वस्त करने का आदेश दिया। वहीं 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट होने का आह्वान किया। वहीं 1987 में गोवा को भारत का 25वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया। वहीं 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। वहीं 1997 में कलकत्ता मेट्रो ने अपनी पहली कमर्शियल सेवा शुरू की थी, यह भारत की पहली मेट्रो सेवा थी। वहीं 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्लूटो को ग्रह का दर्जा छीन लेकर उसे बोना ग्रह घोषित किया गया। ये थी आज से जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाएं, क्या करें क्या ना करें के अंतर्गत बातचीत करते हैं। आम विषय के बारे में होते हैं, अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश हो चुकी है, इस मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है, नदी नालों में भी जल भराव हो जाता है। अपने घर का कूड़ा करकट नालियों में ना डालें, ये प्रयास करें। अपने घर के साथ साथ अपने बाहर के माहौल को भी साफ रखें, बाहर की सड़क को भी साफ रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वही कूड़ा पानी के द्वारा बह के आपके घर में आ जाए। क्योंकि जहाँ पर गंदगी होगी वहीं पर बीमारी होने का अंदेशा पूरा पूरा बना रहेगा। इस मौसम में बीमारियाँ बहुत जल्दी फैलती हैं, मक्खी मच्छरों के प्रकोप से कई तरह की बीमारियाँ फैल जाती हैं। ऐसे में अगर आप अपने पास पास साफ सफाई का माहौल नहीं रखेंगे तो समस्या आपके लिए ही होगी। शासन प्रशासन अपना काम पूरा करके चला जाता है, उसका सहयोग करना आपका कर्तव्य है। क्योंकि जब तक आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे आप अपने अधिकार की डिमांड नहीं कर सकते। अधिकार और कर्तव्य सिक्के के दो पहलू हैं, तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का पालन भी कीजिए। और आपके यहाँ जो भी नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं उन्हीं में कूड़ा डालें और अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें। सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। और इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्याज दर्पण। प्रस्तुति सुरभि शर्मा की और संयोजक ओपी सिंह थे।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आप अभी सुन रहे थे फिल्म जैसे को तैसा। इस फिल्म के गीत को लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी के लिखे इन बोलों को धुन से संवारा था संगीतकार आर डी वर्मन ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की आवाज़ में आपने सुना फिल्म बेताब के इस गीत को। और साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभिजीत पूर्णिमा और योगना पांड्या की आवाज़ में आपने सुना फिल्म चालबाज का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत।

आपने सुना भी चांदनी फिल्म के गीत को? गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया ने। आवाज़ें थी अनुपमा देश पांडे, सुरेश वाडेकर की। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज दिन में 1:15 से कार्यक्रम हेलो सहेली प्रसारित किया जाएगा। आज विषय रहेगा इस कार्यक्रम में दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप टेलीफोन नंबर 0565 25 ये स्टडी कोड लगाएं और 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में दांतों की बीमारियां और उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। समय कृपया ध्यान रखें, दिन में 1:15 से। दांतों से संबंधित कोई भी समस्या जैसे कैविटी, मसूड़ों की बीमारियां हैं, दांतों का संक्रमण है, दांतों की संवेदनशीलता यानी झंझनाहट, सांसों की बदबू है, दांतों का टेढ़ा हो जाना है, दंत प्रत्यारोपण आदि जैसी भी कोई समस्या अगर इससे संबंधित है तो आप कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होइए और वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता गुप्ता से अपने समस्या का समाधान ले सकते हैं। सूचना समाप्ति कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में दाग फिल्म के इस गीत को साहिर लुधियानवी ने शब्दों में ढाला था इस गीत को, और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी ब्लैकमेल फिल्म के गीत को किशोर कुमार की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने गीत को लिखा था, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

सावन को आने दो, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को, जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज़ में। गीत को लिखा था गौहर कानपुरी ने और संगीत दिया था राजकमल ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज दिन में 1:15 से हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज विषय रहेगा इस कार्यक्रम में दांतों की सामान्य बीमारियां और उचित देखभाल। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमारा टेलीफोन नंबर 0565-25135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9481225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में दांतों की सामान्य बीमारियां और उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप दांतों से संबंधित समस्या जैसे कैविटी है, मसूड़ों की बीमारी है, दांतों का संक्रमण, दांतों की संवेदनशीलता, सांसों की बदबू, दांतों का टेढ़ा हो जाना, दंत प्रत्यारोपण आदि, इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए आप अपने जवाब ले सकते हैं डॉक्टर विनीता गुप्ता से, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ हैं। कार्यक्रम का समय कृपया ध्यान रखें दिन में 1:15 से। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत। बिट्ठल भाई पटेल ने इस गीत को लिखा था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब आइए साथियों सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोता साथियों, आप सुन रहे थे अभी फिल्म सत्ते पे सत्ता का ये गीत आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। अगला गीत सुनने से पहले सूचना सुन लीजिए। एक कार्यक्रम से संबंधित, आज दिन में 1:15 से हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। विषय रहेगा आज का इस कार्यक्रम में दांतों की सामान्य बीमारियां और उचित देखभाल। जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। आप हमारा टेलीफोन नंबर 0565253015 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर कार्यक्रम में शामिल होकर दांतों की सामान्य बीमारियां और उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का समय कृपया ध्यान रखें 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। और अब साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में सौतन फिल्म के गीत को। लिखा था सावन कुमार ने और संगीत उषा खन्ना का था।

0: आनंद और कल्पना की आवाज़ में आपने सुना फिल्म वेलकम का ये गीत। आज का ये कार्यक्रम इसी गीत के साथ ही यहीं पर संपन्न होता है। साथियों, अब समय हो चुका है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी।
3: परम आदरणीय महोदय, सादर सुप्रीम, प्यार से नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका।
3: जी हृदय से धन्यवाद आपका। ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर आप कहते हैं, कई दिनों पश्चात आपसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
2: जी जी, हम सभी लोग बहुत अच्छे हैं। प्रजापति जी, आपके क्या हाल चाल है?
3: बाकी बिहारी कृपा है, हम सब आनंद मंगल से रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना पसंद करते हैं।
2: जी जी बिल्कुल, काफी मनोयोग से सुनते हैं हमारे कार्यक्रम।
3: जी निसंदेह, मैं 7-8 साल पुराना तो हो ही गया हूँ
2: जी, जी।
3: आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हुए, और जब भी फोन लगता है आकाशवाणी मथुरा वृंदावन में, काफी प्रसन्नता और खुशी की अनुभूत करता हूँ। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, इतने परिश्रम और मेहनत से, लगन से कार्यक्रम तैयार करके हम श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करते हैं, इस हेतु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका प्रयास सराहनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है।
2: आपका भी धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। आज के कार्यक्रम में फरमाइश क्या है प्रजापति जी?
3: मानवर, श्रावण का महीना है, श्रावण का अंतिम और चौथा सोमवार, ऐसे में देवों के देव महादेव को याद करना चाहता हूँ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, ये प्यारा सा भक्त गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ सावन सोमवार के अवसर पर।
2: सुनवाते हैं प्रजापति जी आपकी फरमाइश पर ये भक्ति गीत। बहुत बहुत धन्यवाद
3: जी। हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी,
0: ऋषि सर को हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है यादराम जी।
0: अब आकर के लगा है
1: चलिए, आपका प्रयास सफल हुआ है, अपना परिचय दे दीजिए।
0: सर मैं आपका जाना पहचाना रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ सर, गांव उस पार से। सर
1: कैसे हालचाल हैं?
0: बस बढ़िया है सर, कन्हैया जी की कृपा है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे दीक्षित सर भी ऐसे ही बने रहे और हमारे आकाशवाणी परिवार ऐसे ही बना रहे।
1: आपकी दुआओं के लिए धन्यवाद। आज
0: बहुत बहुत
1: फरमाइश क्या
0: धन्यवाद।
1: है यादराम जी?
0: देखिए सर, अब सावन का महीना चल रहा है और बहन भाइयों का त्योहार है पवित्र।

0: त्योहार, रक्षाबंधन आ ही रहा है और अब बहन बेटी अब आ रही हैं, जो बड़ी बूढ़ी हैं अपने परंपरा के आधार पर वो भी आ रही हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: अब ये त्योहार तो है ही पवित्र त्योहार, इसमें एक गाना सुनवा दो साहब, एक राखी का।
1: बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
0: रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, राखी बनवा ले मेरे वीर बनवा ले चंदा।
1: सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद यादराम जी।
0: जय श्री कृष्णा,
1: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: जी नमस्ते,
0: नमस्ते
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।

0: जी थैंक यू। कैसे हैं आप?
1: एकदम अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
1: जी, उज्जैन में कैसा है मौसम?
0: अभी काफी अच्छा है। 2-3 दिन पहले अच्छी बारिश हुई थी यहाँ पर। अभी
1: जी
0: तो खुला मौसम है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और बादल भी आए हैं, बरसने का इंतजार हो रहा है
1: जी
0: फिर
1: जी
0: से।
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी बात है, मौसम अच्छा है वहाँ। जी, और परिवार में कैसे हैं सब?
0: सब अच्छे हैं। आकाशवाणी मोबाइल ऐप पर सुनते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं फोन इन।

0: हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं फोन इन प्रोग्राम में।
1: बताइए आज क्या फरमाइश है
0: जी, फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम
1: जी।
0: और गाने के बोले सूरज हुआ मद्धम चांद जलने लगा।
1: लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: ग्राम पजोनिया, जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया।
0: स्वागत है सत्येंद्र कुमार जी आपका।
1: सर, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और मैंने आपको परिचय तो दे दिया,
0: जी
1: लेकिन हम जिस भूमि से बोल रहे हैं, जिस स्थान से बोल रहे हैं, वो अब स्थान बता दूं।
0: जी
1: 19-20 अगस्त में श्रोताओं का सम्मेलन होता है,
0: जी
1: तो 2026 का सम्मेलन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में हुआ था।
0: बहुत बहुत तो शुभकामनाएं हैं इस सम्मेलन के लिए आपको।
1: और इस समय हम उसी मैदान पर खड़े हैं, और वहां से फोन लगाया और फोन लग गया, तो मैंने कहा आपको पूरी बात बता दें। परिचय तो हमारा जालौन से आता है, लेकिन हम जिस जगह से बोल रहे हैं तो हमने वो भी बता दिया।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ओर से भारतवर्ष के सभी श्रोता जो एक जगह एकत्र हुए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार
1: जी, आपकी शुभकामना हम एक बार और लेंगे अभी इस बात के लिए कि
0: जी।
1: अगली बार बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर के लिए प्रस्तावित हो गया है,
0: जी
1: और इसमें सक्रिय भूमिका हमारी भी रहेगी, लेकिन फिर भी समिति की ओर से आप लोगों को भी बुलावा आएगा, तो आप लोग जरूर आइएगा।
0: बिल्कुल। और घर परिवार में सब बढ़िया हैं?
1: सब शुभकामनाएं हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारा आकाशवाणी मथुरा परिवार भी अच्छी तरीके से खुशहाल रहे, ऐसी ही शुभकामना हम करते हैं।
0: जी, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं।
1: जी,
0: बताइए आज कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: आज हरियाली और रास्ता फिल्म का सुनवा दीजिएगा।
0: बताइए कौन सा गीत।
1: टाइटल सॉन्ग है ये, हरियाली और ये रास्ता।
0: लीजिए सुनवाते हैं सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया जी की फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके सर, ओके।
0: नमस्कार।
1: दीक्षित जी, नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी।
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
0: और सभी बढ़िया हैं?
1: एकदम अच्छे हैं सभी लोग। आप कौन साहब बोल रहे हैं?
0: मैं सर राजाराम तरकर, गांव भाई बरारी से बोल रहा हूँ।
1: राजा राम जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका।
0: धन्यवाद
1: और गांव में क्या चल रहा है आजकल?
0: सर। ये खेती बाड़ी का बरसात हो नहीं रही है, धान वान में पानी लग रहे हैं।
1: जी,
0: अब तो बाजरा में भी पानी देना पड़ेगा।
1: पानी की व्यवस्था है आपके यहाँ?
0: जी, पानी की व्यवस्था तो है
1: जी,
0: जी। एक गाना सुनना चाहता हूँ, फिल्म रोटी का।
1: कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो।
1: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर रोटी फिल्म से ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति थी देवराज कृष्ण दीक्षित की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

रास्ते मंजिल तक पहुंचाने के लिए होते हैं, किसी की जिंदगी से उसे दूर करने के लिए नहीं। सफर वही खूबसूरत है जिसमें मंजिल के साथ हर मुसाफिर सुरक्षित घर लौटे। साथियों नमस्कार, मैं उषा पांडे स्वागत करती हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम फिल्म संगीत के इस सफर पर। हम सबकी जिंदगी से चाहे हम पैदल चलते हों, चाहे साइकिल चलाते हों, चाहे दोपहिया वाहन चलाते हों और चाहे कार में हम सफर करते हों या सार्वजनिक परिवहन का हम इस्तेमाल करते हों, लेकिन हम सफर करते हैं और इस सफर का सीधा संबंध है साथियों हमारी जिंदगी से। जिंदगी के इस सफर की हम आपसे बात करेंगे, यानी आज हम बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे फिल्म संगीत के साथ साथ आपसे सेकेंड डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से 2030 तक के बारे में, अर्थात सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दूसरा दशक। क्योंकि साथियों सड़क हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन यही सड़क अगर सावधानी और जिम्मेदारी के बिना इस्तेमाल की जाए तो हादसे के कारण भी बन सकती है। इसीलिए आज का संदेश बिल्कुल सीधा है, सड़क पर जल्दी नहीं सुरक्षित पहुंचना जरूरी है।

में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है कर कर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई जरा देख के चलो

0: ज्यादा वफादार है। आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, सभी जगह हमें देखकर चलना चाहिए। सचमुच जिंदगी का सफर तभी सुहाना लगता है जब हम यातायात के नियमों का सम्मान करें और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी की भी परवाह करें। साथियों, दूसरा दशक क्यों जरूरी है? सड़क दुर्घटनाएं केवल सड़क पर ही होने वाली घटनाएं नहीं हैं, इनके पीछे टूटते परिवार हैं, अस्पतालों के चक्कर हैं, आर्थिक नुकसान है और कई बार जिंदगी भर विकलांगता भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 1.19 मिलियन यानी

11.9 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और लगभग 2 से 5 करोड़ लोग घायल होते हैं, जिनमें कई लोगों को लंबे समय तक या स्थायी रूप से गंभीर चोटों का सामना करना पड़ता है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 में 2021 से 2030 तक सड़क सुरक्षा के दूसरे दशक की घोषणा की। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है साथियों 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों को कम से कम 50% तक घटाना। यानी यह केवल सरकारों का कार्यक्रम नहीं है, यह हम सबका संकल्प है। अब सवाल है कि आखिर सड़क दुर्घटनाएं होती ही क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है तेज रफ्तार। हमें लगता है कि कुछ मिनट बचाने के लिए थोड़ी तेज गाड़ी चला लेने में क्या नुकसान है, लेकिन याद रखिए रफ्तार अगर नियंत्रण में हो तो सफर है और नियंत्रण से बाहर तो खतरा है। इसके अलावा शराब या नशे की हालत में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, लाल बत्ती तोड़ना, गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवरटेक करने में जल्दबाजी, वाहन चलाते समय नींद या थकान, सड़क और वाहन की खराब स्थिति, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्तों का अभाव, ये सभी सड़क सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौतियां हैं साथियों। आज मोबाइल हमारे साथ हर समय रहता है, लेकिन सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन हाथ में लेना केवल एक छोटी सी गलती नहीं है। एक मैसेज पढ़ने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उन कुछ सेकंड में सामने क्या हो जाए किसी को क्या पता, कुछ पता नहीं। इसीलिए याद रखिए, मोबाइल की एक घंटी इंतजार कर सकती है लेकिन जिंदगी नहीं। अगर फोन जरूरी है तो वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोकिए और फिर बात कीजिए। दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेलमेट कोई पुलिस के डर से पहनने वाली चीज नहीं है साथियों, यह आपके सिर और आपके जीवन की सुरक्षा का कवच है। इसी तरह कार में सीट बेल्ट केवल ड्राइवर के लिए नहीं बल्कि सभी यात्रियों के लिए सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। हेलमेट सिर की रक्षा करता है, सीट बेल्ट जिंदगी को थामती है। बच्चों को भी शुरू से सड़क सुरक्षा की आदत सिखानी चाहिए। साथियों, जिंदगी को सकारात्मक बना के चलिए और सोच को भी। जिंदगी यदि आपकी हर समय कुछ सीख के साथ चलती है तो कुछ यूं हो जाती है।

साथियों, मुसाफिर तो हम सभी हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सफर लंबा भी हो और सुरक्षित भी। सड़क पर केवल कार और मोटरसाइकिल चलाने वाले ही नहीं होते, पैदल यात्री, बच्चे, बुजुर्ग, साइकिल चालक और दिव्यांगजन भी सड़क का हिस्सा हैं। सड़क सुरक्षा का मतलब केवल वाहनों की सुरक्षा नहीं, बल्कि हर सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा है। साथियों, WHO और संयुक्त राष्ट्र की सड़क सुरक्षा योजना सुरक्षित पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर भी जोर देती है। इसीलिए वाहन चालक को पैदल यात्री के लिए यात्रा देना चाहिए। स्कूलों और अस्पतालों के आसपास विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बुजुर्ग और बच्चे, एक छोटा बच्चा सड़क के नियमों को पूरी तरह समझ नहीं सकता साथियों, और एक बुजुर्ग व्यक्ति शायद तेज गति से आती गाड़ी को समय पर न देख पाए। इसीलिए जिम्मेदारी हमारी है कि सड़क पर सबसे पहले अधिकार उसका है जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। स्कूल के पास हॉर्न कम करें, गति कम करें और धैर्य रखें। सड़क सुरक्षा केवल दुर्घटना रोकने तक सीमित नहीं है। अगर दुर्घटना हो जाए तो घायल व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सहायता मिलना भी बेहद महत्वपूर्ण है। ग्लोबल प्लान में दुर्घटना के बाद प्रभावी और समय पर मिलने वाली आपातकालीन चिकित्सा सहायता को भी सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। ऐसे समय पर भीड़ लगाकर वीडियो बनाने की बजाय हमें उनकी मदद करनी चाहिए। घायल को अनावश्यक रूप से खींचने या उठाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और तत्काल आपातकालीन सहायता बुलानी चाहिए। साथियों, भारत जैसे विशाल देश में सड़क सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे यहाँ गांव की सड़क से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक हर जगह अलग अलग प्रकार के सड़क उपयोगकर्ता मिलते हैं। कहीं पैदल चलने वाले लोग हैं तो कहीं साइकिल, कहीं ट्रैक्टर, कहीं मोटरसाइकिल और कहीं तेज गति से चलने वाले वाहन। इसीलिए हमें केवल नियम बनाने की नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। सरकार सड़क संकेत वाहन सुरक्षा और कानून को बेहतर बनाए, प्रशासन नियमों को लागू करें, लेकिन नागरिक भी

अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि सड़क सुरक्षा का कानून सरकार बनाती है, लेकिन सड़क सुरक्षा की आदत समाज बनाता है। सड़क सुरक्षा का संबंध साथियों पर्यावरण से भी है। सुरक्षित पैदल मार्ग, साइकिल के लिए सुरक्षित रास्ते और बेहतर सार्वजनिक परिवहन केवल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मदद नहीं करते, बल्कि स्वस्थ और टिकाऊ परिवहन को भी बढ़ावा देते हैं। इसीलिए भविष्य की सड़क ऐसी होनी चाहिए जहां वाहन भी सुरक्षित हों, पैदल यात्री भी सुरक्षित हों, साइकिल चालक भी सुरक्षित हों और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। साथियों, हर दुर्घटना के बाद केवल अफसोस करने की बजाय हमें यह सोचना होगा कि अगली दुर्घटना को कैसे रोका जाए। आज हम खुद से 5 छोटे छोटे वादे करें। पहला, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोपहिया वाहन पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट जरूर लगाएंगे। तीसरा, तेज रफ्तार से बचेंगे। चौथा, शराब या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। और पांचवा, सड़क पर अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ एक छठा संकल्प भी ले लेते हैं कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बचाने के लिए करेंगे। क्योंकि साथियों, राहों में मुश्किलें आए तो रुकना नहीं, सड़क पर जल्दबाजी करके झुकना नहीं, मंजिल मिलेगी, थोड़ा इंतजार करो मेरे भाई, अपने जीवन से कभी खिलवाड़ करना नहीं, अपने जीवन से कभी खिलवाड़ करना नहीं।

श्रोता साथियों, सेकेंड डिकेट ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से 2030 हमें केवल एक लक्ष्य नहीं देता, बल्कि एक जिम्मेदारी देता है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम से कम आधा करना एक वैश्विक लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं, हमारे घर से ही होगी। हमारे बच्चे जब सड़क पार करेंगे, हम जब बाइक्स पर हेलमेट लगाएंगे और जब कार में सीट बेल्ट लगाएंगे, हम जब मोबाइल को जेब में रखकर वाहन चलाएंगे, जब किसी दूसरे की गलती पर गुस्सा करने की बजाय धैर्य रखेंगे, तभी सड़क सुरक्षा का असली अभियान शुरू होगा। अंत में बस इतनी सी बात, मंजिलें बहुत हैं जिंदगी में, लेकिन जिंदगी से बढ़कर कोई मंजिल नहीं साथियों। सड़क आपकी है, रास्ता आपका है, पर जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं, आपसे जुड़े हर अपने की है। आइए संकल्प लें, सुरक्षित चलेंगे, सुरक्षित चलाएंगे और सुरक्षित घर लौटेंगे। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और दूसरों की जिंदगी का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि साथियों, सड़क पर आपकी सावधानी किसी के घर की खुशहाली बन सकती है।

साथियों, चर्चा के साथ फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS।

परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किलें जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में दोस्तों, पर मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ साथियों आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गीत बात और SMS में। साथियों समय हो गया है आपके संदेशों को पढ़ने का, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश का कार्यक्रम का ये पहला गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म आशा के इस गीत को। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत था प्यारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। साथियों, आइए अब पढ़ लेते हैं आपके संदेश। ये लांदू तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज, भानु राज, अमित खन्ना और अम्मी का संदेश प्राप्त हुआ। अगला संदेश भेजकर हमसे जुड़ चुके हैं पीएस हांवकर, निर्मला हांवकर, विशाल हांवकर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आप हमसे जुड़े, मलकापुर महाराष्ट्र के नारायण इंगले सोपान आशीष मुरहेकर का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का संदेश भी मिला। सुरेवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम, सदानंद विराज, स्वीट अंशुमन बेबी ओवी का संदेश भी हमें प्राप्त हुआ। अगला संदेश हमारे पास आया है मसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगसापुर से। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी का। हमारे अगले फरमाइश करता है अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा से आप हमसे जुड़े। भावी निमगांव महाराष्ट्र से श्री राम गोंधली, उषा हर्षदा, वैष्णवी पूनम, युवराज गोंधली का संदेश हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता है मोताला महाराष्ट्र के विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी, चंडीगढ़ के सतीश अनेजा, विमला अनेजा का संदेश भी हमें मिल चुका है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की सूतासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद हमसे जुड़े पाकुड़ झारखंड से और बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल के मुन्ना भगत, गुड्डी भगत का संदेश भी मिला। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र

भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी कुलदीप कंवल का संदेश मिल चुका है। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू पप्पी और तमन्ना भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमसे जुड़े। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सेन का संदेश भी हमें मिला। अगले फरमाइश करता है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के राजीव राज वर्मा, राजेश राज वर्मा, कार्तिक आर्यन और प्रीति वर्मा। हमसे जुड़े शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ के पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, मुन्ना भाई स्वर्णकार का संदेश भी हमें प्राप्त हो चुका है। संभलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव का संदेश प्राप्त हुआ। खैल बाजार पानीपत के नरेश मल्होत्रा उर्फ नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगू, भाविक सिक्का का संदेश भी हमें मिल चुका है। दादरी गेट भिमानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल मेहरा का संदेश प्राप्त हुआ। अगले फरमाइशकर्ता ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां हमसे जुड़े आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। राजनगर मधुबनी बिहार के राजकुमार गुप्ता, विनीता, रविराज, गौरव कुमार और समस्त मित्रगण छपरा दालदली बाजार से संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार, सर्वजीत कुमार और सुधांशु कुमार गुप्ता का संदेश भी मिला। लतागिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हमसे जुड़े। सुशीला देवी मंदूलकर, सदानंद कुमार, गौरव मंदूलकर, डाबकी रोड अकोला से हमसे जुड़े। सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम सहारनपुर से हमसे जुड़े। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश, प्रमिला बंछोर, गांव पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़ चुके हैं। आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

इस गीत को आपके लिए हमने लिया है साथियों फिल्म साथी से। आवाजें मुकेश कुमार और सुमन कल्याणपुरी की है। मजरूह की शब्द रचना और संगीत नौशाद का।

में मिला। अगला संदेश हमारे पास आया है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से, अनंता भगत अरुणा चेतन सुलोचना भगत का। हमसे जुड़ चुके हैं संदेश भेजकर टैगोर गार्डन नई दिल्ली के रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा, कलानौर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा और नितिन मयंक शर्मा का संदेश भी मिला। छत्तीसगढ़ के गुनी राम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज सूरज राजपूत का संदेश प्राप्त हुआ। हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, मोहाली से टीडी मल्होत्रा, कालका से शुभचंद्र बजाज का संदेश भी हमें मिला। साथियों आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने फिल्म कभी कभी से लिया है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश कुमार की, गीत को लिखा है साहिर ने और खय्याम ने दिया संदेश।

रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश साहू का संदेश हमें मिल चुका है। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी के अकरम हुसैन, प्रिंस उर्फ डाक बाबू, बेगम इशरत, वसीम, रूबीना, आरिज, नदीम, शमी, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता है भिलाई छत्तीसगढ़ के मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, राहुल मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल, बेबी प्रियांशी का संदेश साहू नगर यवतमाल से हमें प्राप्त हो चुका है। राजकोट गुजरात के रश्मि झरना भरत कुमार का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया। हमारे अगले फरमाइशकर्ता रहाट गांव कंप अम्परावती महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हर्ष रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका, समस्त रामेकर परिवार, दयानंद गायकवाड़, नारायण, ओमकार और साई गायकवाड़ का संदेश हमें कोली नांदेड़ से प्राप्त हुआ। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश वर्मा का संदेश हमें मिला ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। हमसे जुड़ चुके हैं राजेश सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से। साथियों, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का, आपसे अनुमति प्राप्त करने का। चलते चलते बस यही कहेंगे कि बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, हंसा के रुला जाती है जिंदगी। जी लो अपनी जिंदगी अपनों के साथ साथियों, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रह जाता है और खत्म यूं ही हो जाती है जिंदगी। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

कार्यक्रम संबंधी सूचना श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम हेलो सहेली में सोमवार 24 अगस्त में यानी कि आज अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-22-55-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे साथियों, कार्यक्रम का विषय है दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। श्रोताओं, यदि आप दांतों से संबंधित समस्या जैसे कैविटी, दांतों में सड़न, मसूड़ों की बीमारी, जिंजिवाइटिस, पायरिया, दांत का संक्रमण एब्सेस, दांतों की संवेदनशीलता

झंझनाहट, दांतों से आने वाली सांसों की बदबू, दांतों का टेढ़ा हो जाना, दंते प्रत्यारोपण आदि के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार यानी कि आज 24 अगस्त 2026 और समय दिन में 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रजलोक गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
8: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
9: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं मल्हार गायन का, और कलाकार हैं डोरीलाल गोला।

0: कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे डोरीलाल गोला। आप सुन रहे थे डोरीलाल गोला के द्वारा गाए हुए कुछ मल्हार गायन के गीत। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेनदेन के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है।

0: पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमी पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

अब से कुछ ही देर में यानी कि अपराह्न 1:10 पर आप सुनेंगे समवेत स्वरों में देशगान। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक अपराह्न 1:15 पर। आज वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। विषय होगा दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ, और कार्यक्रम में डॉक्टर साहब के साथ होंगी दीप्ति कपूर। अपराह्न 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अपराह्न 2:30 पर NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। संध्या 5:30 पर युवा भाइयों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी के साथ, जिसमें आज की बात के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा होगी नशे से हमेशा दूर रहें एवं उर्दू संरक्षण के लिए और अधिक संसाधन विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे कहानी आवरण, कहानीकार होंगी अंजलि गर्ग। संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रजवार्ता के अंतर्गत आप सुनेंगे ब्रज साहित्य में सद्भावना के स्वर। वार्ताकार होंगी डॉक्टर लक्ष्मी गौतम।

संध्या 6:50 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें होगी चर्चा पशु आहार में खनिज लवण एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता खरीफ फसलों में कृषि रसायनों के प्रयोग संबंधी सावधानियां। जानकारी देंगे विजय कुमार रावत। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मृणालिनी दीक्षित। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी संध्या 7:31 पर आप सुन सकेंगे। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत का आप ले सकेंगे आनंद। चित्रपट संगीत सुहाने तराने रात्रि 9:15 पर प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे नाटक आंखें खुल गईं। लेखक होंगे नुजहत आरा बेगम। प्रस्तुति डॉक्टर ब्रजबल्लभ मिश्रा की होगी। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे राग होगा जीलाफ

अपराह्न 1:15 पर बहनों के कार्यक्रम वनतालोक के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली प्रसारित किया जाएगा, जिसमें श्रोता साथी फोन करके दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ से।

अभी श्रोता साथी जानकारी प्राप्त कर रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। आज का विषय है दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ।

जिंदगी की राहों में कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जहां अपने भी कभी कभी दूर हो जाते हैं। हौसला रखिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जो आज आंसू हैं वही कल मुस्कान बन जाते हैं। आपकी मुस्कान को बनाए रखने के लिए लाए हैं हम आपके लिए हेलो सहेली फोन इन कार्यक्रम वनितालोक कार्यक्रम के अंतर्गत। कुछ नई पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में। विचारों को और अपने जीवन को शुद्ध रखें, क्योंकि बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन

को जीने का एक दूसरा मौका है। जिंदगी हमें हर रोज एक नया सबक सिखाती है, कभी हंसाती है और कभी हमारी आंखें नम भी कर जाती है। जो हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, जिंदगी उसी के लिए खूबसूरत बन जाती है। कहते हैं हमारी मुस्कान हमारी पहचान होती है, और इस मुस्कान को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे दांतों की सबसे अहम भूमिका होती है। लेकिन क्या हम अपने दांतों की उतनी ही देखभाल करते हैं जितनी हमारे शरीर के दूसरे अंगों की? सुबह उठकर ब्रश करना हमारी रोज़मर्रा की आदत है, लेकिन क्या सही तरीके से ब्रश करना हम जानते हैं? दांतों में दर्द, मसूड़ों से खून आना, दांतों का पीला पड़ना या मुंह से दुर्गंध आना जैसी अनेक समस्याएं

0: या मुंह से दुर्गंध आना जैसी अनेक समस्याएं इनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आखिर सही देखभाल कैसे की जाए, इन सभी समस्याओं के निदान के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता गुप्ता। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उषा पांडे और मैं दीप्ति शर्मा। तो उषा जी, हमारे कार्यक्रम में दांतों से संबंधित अनेक समस्याएं जो हैं उनके लिए और हमारे जो श्रोताएं हैं उनके लिए हम डॉक्टर साहब से दांतों के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं।
2: बिल्कुल। प्रश्न से पहले अपने साथियों को मैं बता दूं कि हमारा यह कार्यक्रम साथियों प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे सोमवार को दोपहर 1:15 से 1:45 तक प्रसारित किया जाता है, और जिसमें आते हैं अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ और करते हैं श्रोता साथियों की समस्याओं का समाधान। और समाधान के लिए आप हमें कार्यक्रम के मध्य फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2530135 और मथुरा के बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगा के हमें फ़ोन कर सकते हैं। और साथियों, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी 9412225575 पर मैसेज करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मुस्कान जो है वो चेहरे की पहचान है और स्वस्थ दांत उस मुस्कान की जान है। साथियों, हमारे दांत केवल हमारी खूबसूरत मुस्कान का हिस्सा नहीं है बल्कि भोजन को चबाने और पाचन की प्रक्रिया की पहली सीढ़ी हैं। और आपकी ये मुस्कान जो है वो इसी तरह से बरकरार रहे, आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से हंसते खिलखिलाते रहें, तो आपकी दांतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जैसा कि हमारी साथी दीप्ति ने बताया, कि डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद उषा जी। धन्यवाद दीप्ति जी।
2: जी, श्रोता साथियों का भी हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे श्रोता साथी हमसे जुड़े हमारे कार्यक्रम में, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो है दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल, तो सबसे पहले जहन में ये प्रश्न आता है कि दांतों से संबंधित और मसूड़ों से संबंधित वो आम बीमारियाँ क्या हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: जी उषा जी, मैं सबसे पहले श्रोतागणों को बताना चाहूँगी कि अक्सर मेरे पास जो भी मरीज आते हैं वो शिकायत करते हैं कि उनके दांतों में काफ़ी ज़्यादा खून आता है, मुंह से बदबू आती है, और अगर यदि कभी वो ठंडा आइसक्रीम खाते हैं या पानी पीते हैं तो दांतों में ठंडा भी लगता है। बच्चे हैं वो काफ़ी चिप्स चॉकलेट खाते हैं तो उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं जिसकी वजह से वो खाना चबा के नहीं खा पाते हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: तो ये तीन हमारे यहाँ वर्ग अक्सर आते हैं, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों और बच्चे हों। उन तीनों के लिए मैं एक कॉमन बात या साधारण बात बोलना चाहूँगी कि वो दोनों टाइम ब्रश करें।
2: जी।
1: दोनों ब्रश करने के बाद आप घर में सभी के पास नमक अवेलेबल होता है, सबकी रसोई में अवेलेबल होता है, तो गुनगुने पानी में ब्रश करने के बाद गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप जरूर सुबह शाम कुल्ला कीजिए। तो जो व्यक्ति चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, अगर इस हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो उनके दांतों की सुरक्षा काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। उसके बाद अगर यदि किसी को समस्या है कि दांतों से उसको ब्लीडिंग आ रही है तो वो पायरिया की शिकायत हो सकती है या शुरुआत भी हो सकती है। जैसे ही आपके दांतों से ब्लीडिंग आए तो आप ज़रूर ध्यान दें कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है, कहीं आपको किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके मुंह में पायरिया की शिकायत हो रही हो। इन तीनों केसेस में मैं बोलूँगी कि पहले आप अपने दंत चिकित्सक को दिखाएं और उसके बाद में अपने आगे के जो भी इसका रोग है उसका निदान पाएं।
2: जी डॉक्टर साहब, फोन कॉल एक ले लेते हैं।
1: जी जरूर।
2: हमारे श्रोता साथी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। जी हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन साथी बात कर रहे हैं?
3: मैं आशीष कर रहा हूँ।
2: जी आशीष जी, और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: सदर बाड़पुरा मतदा।
2: जी, अपनी समस्या डॉक्टर साहब से बताएं।
3: समस्या मेरी ये है डॉक्टर साहब कि बहुत जल्दी मेरे को पसीना आ जाता है, पूरी बॉडी भीग जाती है और सबसे ज्यादा थकान होती है, तो इसका समाधान बताएं।
2: जी, समाधान तो आपको मिलेगा क्योंकि अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ हमारे कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन आज हमारे साथ उपस्थित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता गुप्ता। दांतों से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप बताएं।

0: दांतों से जुड़ी सुन लीजिए। तो फिर
1: जी बिल्कुल
0: मेरा एक दांत ऐसा है, इसमें अपनी आप ही टीस मारने लगती है, कोई चीज चबाते हैं तो इसमें मतलब बहुत जोर से ऐसा लगता है कि मतलब सेंसिटिविटी सी महसूस होती है इसमें, काफी दिनों से ऐसा लग रहा है।
1: आशीष जी, उसमें खाना भी फंसता है क्या?
0: नहीं, खाना वाना नहीं फंसता है, आगे
1: अच्छा
0: का जो दांत होता है उसमें एक थोड़ा कीला टाइप का होता है ना, तो उस दांत में मतलब टीस बहुत होती है।
1: अच्छा तो उसके लिए आशीष जी, पहले तो आप दोनों टाइम ब्रश कीजिए, और उसके लिए पेस्ट आता है जो ठंडा गर्म को बंद करता है, वो बाजार में भी आपको मिल जाएगा। वो पेस्ट लाके दोनों टाइम ब्रश कीजिए, नमक के कुल्ले स्टार्ट कीजिए, एक हफ्ता करके देखिए। अगर यदि आपको आराम नहीं आता है तो किसी भी अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो एक्सरे करा लीजिए उस दांत का।
0: अच्छा, ऐसे पेस्ट का नाम क्या बताया?
2: जी देखिए, आप डॉक्टर साहब से आकर के उनके क्लिनिक पे मिल सकते हैं, वो आपको पेस्ट का नाम भी बताएंगी और तरीका भी बताएंगी। फिलहाल इतना ही, आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी।
0: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, आशीष जी का जो प्रश्न था, संवेदनशीलता, ये आजकल देखा जा रहा है कि हर तीसरे व्यक्ति को दांत में समस्या है। फिलहाल एक और फ़ोन कॉल ले लेते हैं, उसके
1: जी
2: बाद इस विषय पर चर्चा होगी। डॉक्टर साहब, हेलो हेलो, किसी कारण से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है डॉक्टर साहब। हेलो जी, हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन साथी बात कर रहे हैं
3: बोल रहा हूँ मैं।
2: जी? एक बार फिर से अपना परिचय दीजिए।
3: यहीं से बोल रहा हूँ, ब्रजवासी कंपनी से बोल रहा हूँ, मिठाई वाली गोदाम से।
2: जी जी जी जी बताइए, समस्या बताइए डॉक्टर साहब से, कैसे फोन किया?
3: मेरे दांतों में दर्द होता है और चलता है दांत।
2: जी, आप स्पीकर पे बात कर रहे हैं क्या? आपकी आवाज ऐसा लग रहा है साफ नहीं आ रही है, बहुत दूर से, या फिर आपने रेडियो सेट ऑन कर रखा है, उसे दूर होकर के थोड़ा बात कीजिए। ऑफ कर दीजिए रेडियो सेट, आप डायरेक्ट बात कीजिए।
3: मेरे दांतों में से खून आता है थोड़ा,
2: जी जी डॉक्टर साहब,
3: पानी लगता है, ठंडा पानी लगता है बहुत।
1: जी, उसके लिए आप सुबह शाम एक तो ब्रश करेंगे, और उसके अलावा आप यदि आपके आसपास, अगर यदि नॉर्मली मैं बात करूं तो नीम का पेड़ होगा आसपास, तो आप नीम की पत्तियों को पानी में डाल के उबाल सकते हैं, और सुबह शाम उसमें थोड़ा नमक मिला के कुल्ला भी कर सकते हैं। अगर दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपको पहले आके एक बार एक्सरे कराना चाहिए, और एक्सरे कराने के बाद क्या समस्या है उसके हिसाब से आपको इलाज हम बता देंगे। जी
2: जी आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी आपने नीम की पत्तियों का जिक्र किया तो पुराना ज़माना याद आ गया कि हमारी जो दादी नानी हुआ करती थी, वो भी इसी प्रक्रिया को बताया करती थी।
1: जी उषा जी, एक्चुअली लोग नीम की दातून यूज़ करते हैं, तो मैं
2: जी
1: उसके लिए थोड़ा सा लोगों को बोलूंगी कि उसका यूज़ करने का मेथड चेंज करें,
2: जी
1: क्योंकि जब आप दातून यूज़ करते हैं तो दांतों की और जो मसूड़ों के बीच की जगह होती है वो घिसने लगती है, क्योंकि काफ़ी हैवी होता है दातून।
2: बिल्कुल
1: लेकिन नीम का एक अपना स्पेशलिटी होता है कि वो एंटीसेप्टिक होता है, तो यूजली मैं सबको ये सलाह देती हूँ कि आप उसे माउथ वॉश की तरह यूज़ कीजिए,
2: जी
1: दोनों टाइम पेस्ट कीजिए और उसकी पत्तियों को उबाल के रख लीजिए, और 7 दिन तक आप फ्रिज में रख के उसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी उसे यूज़ करना चाहें उसे थोड़ा गुनगुना करें, और सुबह शाम माउथ वॉश की तरह यूज़ करें, बेस्ट माउथ वॉश है वो, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए।
2: जी एक साथी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन साथी बात कर रहे हैं?
4: नमस्कार मैम,
2: नमस्कार, परिचय दीजिए अपना।
4: मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सलीम।
2: जी मोहम्मद सलीम जी, डॉक्टर साहब से अपनी समस्या बताइए।
4: मैम मेरी एक नातनी है, अब
2: जी
4: करीब 6 साल की है,
2: जी
4: उसके दो दांत ऊपर के टूट गए, जैसे टूट जाते हैं दूध के,
2: जी
4: लेकिन 6 महीने हो गए, 6 महीने से उसके दांत नहीं आए अभी तक।
1: आप आगे के दांतों की बात कर रहे हैं कि पीछे के दांत टूटे हैं?
4: आगे आगे की ऊपर की।
1: तो कोई बात नहीं है, वो 6 से 7 साल बहुत नॉर्मल सी उम्र होती है, आप 7 साढ़े 7 साल तक वेट कीजिए, और अगर यदि नहीं आते हैं 7 साल के बाद भी, क्योंकि अभी उसकी उम्र निकली नहीं है, वो उम्र 6 से 7 है, हो सकता है किसी किसी बच्चे में थोड़ा सा कभी कैल्शियम की कमी है या थोड़ा न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो लेट हो जाते हैं टूथ, लेकिन फिर भी 6 से 7 साल नॉर्मल एज है। 7 साल के बाद आप किसी डेंटिस्ट को दिखा के एक्सरे करवा लीजिएगा कि उसे उसमें टीथ है या नहीं, लेकिन अभी

0: 7 साल तक वेट कीजिए और उसे दोनों टाइम नमक का कुल्ला करवाइए।
1: नमक का?
0: हाँ, और रात को भी अगर वो दूध पीती है उसके बाद भी जरूर करवाइए, और दूध और दही का सेवन बच्चे को ज्यादा करवाइए जिससे उसे कैल्शियम और विटामिन डी मिल सके।
1: ठीक है मैम, थैंक यू
2: जी। जी, आपने हमें फोन किया, आपका धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद मैम।
2: जी डॉक्टर साहब, ये जिंजिवाइटिस क्या होता है, हमारे श्रोता साथी भी आपसे जानना चाहते हैं।
0: जी उषा जी, एक्चुअली अगर हम नॉर्मली अपने दांतों के ऊपर देखें कि सुबह जब हम सोके उठते हैं तो दांतों के ऊपर एक वाइट लेयर जमी रहती है जिसे प्लाक कहते हैं। अगर हम दोनों टाइम ब्रश करते हैं तो वो प्लाक की लेयर हट जाती है, लेकिन अगर यदि हमारा ब्रश केवल एक ही टाइम है और हम दोनों टाइम ब्रश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेस्ट केवल 12 घंटे काम करता है आपके ऊपर, दांतों के ऊपर सतह पर, तो वो जो प्लाक होता है उसके अंदर बारे थूक के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं जो कि ग्रो करने लगते हैं और हमारे मसूड़ों को इन्फ्लेम्ड कर सकते हैं। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी कि उसमें सूजन बढ़ा सकते हैं। तो पाइरिया से पहले की स्टेज को ही जिंजिवाइटिस कहते हैं। अगर आप उस टाइम पे अपने दोनों टाइम ब्रशिंग करें, नमक का कुल्ला करें, माउथ वॉश करें, तो आप उसे पाइरिया होने से बच सकते हैं, क्योंकि एक बार पाइरिया हो जाता है तो वो बीमारी हो जाती है, लेकिन जिंजिवाइटिस को आसानी से रोका जा सकता है।
2: जी डॉक्टर साहब, अगर ये पायरिया बीमारी हो जाए फिर क्या किया जाए?
0: देखिए, उसकी भी 4 स्टेज होती है। पहली वाली स्टेज जो होती है जिसमें मुंह में से बदबू आना स्टार्ट होता है। दूसरी जो स्टेज होती है, जब आप दांतों के पीछे, आपने देखा होगा लोग कहते हैं कैल्शियम जम गया है, बड़े बड़े ब्लॉक्स बन जाते हैं। तीसरे में मसूड़े नीचे जाने पर लगते हैं और चौथे में दांत हिलने लगते हैं। तो तीसरी स्टेज तक डेंटिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी पे अगर आपको मुंह में से बदबू आ रही है, दांत में ब्रश कर रहे हैं तो ब्लीडिंग आ रही है, या फिर दांत के पीछे जम गया है कुछ कैलकुलस या टार्टर जम गया है, तो आप उसे आके क्लीन करवाइए। लोग कहते हैं दांतों की सफाई करने से प्रॉब्लम होती है, दांतों की सफाई से कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप किस स्टेज में पहुंचे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर आप पायरिया की ऑलरेडी स्टेज 4 पे हैं तो फिर आपको ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, सर्जरी तक करानी पड़ती है, लेकिन अगर आप 3 तक हैं तो आप नॉर्मल दवाइयों से, पेस्ट से, माउथ वॉश से भी बच सकते हैं।
2: यानी समय पर आप चिकित्सक के पास यदि पहुंचें तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है।
0: जी बिल्कुल, पहली और दूसरी स्टेज पे ही आप पहुंच जाइए दांतों को हिलने से पहले।
2: जी डॉक्टर साहब, एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं।
3: हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: मैम नमस्कार। मैम
3: जी नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
4: प्रश्न जो है मैम, दांतों में झंझनाहट, गर्म पानी, वो ठंडा पानी लगना और खट्टापन न खाना।
2: जी प्रश्न आपने पूछ लिया, आप अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं।
4: मैं नरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, इगलास से, जिला अलीगढ़, तहसील इगलास।
2: जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
0: नरेंद्र जी, आपकी उम्र क्या है?
4: मैं 39 है।
0: 39। आप क्या कोई भी तंबाकू या मंजन का सेवन करते हैं? मंजन करते हैं कोई घिसने वाला?
4: मंजन तो मैं कॉलगेट ही करता हूँ, लिक्विड वाला, पर हाँ गुटखा खाते हैं हम।
0: हाँ, तो गुटखा जो है वो एक रीजन है आपको जो ठंडा गर्म लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके दांतों के बीच में कहीं झिरियां हो जिसमें तंबाकू फंसता है, इसकी वजह से मसूड़े थोड़े नीचे चले गए हैं और आपको ठंडा लग रहा है। दूसरा तरीका हो सकता है कि जब आप तंबाकू खाते हैं तो उसमें जो नशीला पदार्थ होता है निकोटीन, वो आपके दांतों की कैविटी को आपको पता ही नहीं चलने देता है, और जब आप लेटर स्टेज में आते हैं उसके बाद ही आपको पता चलता है। तो बेटर है कि आप अभी किसी डेंटिस्ट को अपने आसपास दिखाएं, जैसे आप अलीगढ़ से हैं तो वहां पर एक्सरे कराएं और देखें किन दांतों में विशेष प्रॉब्लम है। अभी एक आध में ही होगा तो वो रुक सकता है, क्योंकि जितना अगर आप इसमें लापरवाही बरतेंगे तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जी
3: तो डॉक्टर साहब, बहुत ही उपयोगी जानकारी दी आपने हमारे श्रोताओं को, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा भी एक प्रश्न है आपसे कि जैसे हम सुबह शाम रातों को सोने से पहले ब्रश करते हैं, अच्छे से सफाई करते हैं और ज़्यादा मसालेदार भी नहीं लेते हैं, नॉन वेज वगैरह भी नहीं लेते, फिर भी दांतों में अगर पीलापन है तो उसके लिए क्या उपाय?
0: देखिए, नॉर्मली दांतों में पीलापन जो होता है, कई बार अगर आप कह रहे हैं दोनों टाइम ब्रशिंग कर रहे हैं तो दांतों के अपने शेड भी होते हैं, जैसे स्किन का कलर होता है वैसे दांतों का भी होता है। तो आप अगर यदि अपने दांतों को स्वस्थ रखें तो कलर उतना मायने रखता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा कंसर्न है तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिन्हें लेमिनेट कहते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, क्लीनिंग कहते हैं, उससे दांतों को सफेद किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे आपको कोको कोला नहीं पीना है, चाय नहीं पीनी है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज दांत स्वस्थ होने चाहिए, कलर तो आप चेंज करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, लेकिन अभी आपने बताया था कि जैसे मसूड़े जो है दांतों को छोड़ने लग जाते हैं तो वो किस कारण से छोड़ते हैं?
0: देखिए, पायरिया उसका एक रीजन होता है कि आपको पायरिया है तो

0: हड्डी अंदर से गलने लगती है और बैक्टीरिया जो एसिड निकालता है जिससे मसूड़ा नीचे सरकने लगता है।
1: जी
0: दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप दातून करते हैं और या ब्रश को केवल सीधे डायरेक्शन में घिसते हैं।
1: जी
0: हमेशा जो ब्रश है वो गोलाकार सतह पे करना चाहिए
1: जी
0: और ब्रश को भी 45 दिन के अंदर बदल दीजिए। पुराना ब्रश जितना होता जाएगा वो उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा।
1: जी
0: बहुत ज्यादा फोर्स मत लगाइए, हर सतह को 1 से 2 बारी साफ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकंड। पूरा लोग 15 मिनट मुंह में लगाकर पूरा
1: जी
0: सीरियल देख लेते हैं, वो नहीं
1: जी
0: करना है।
1: और
0: जी,
1: जैसा
0: ये बहुत बड़ा
1: कि
0: कारण
1: कभी
0: है।
1: कभी हम देखते हैं कि दांतों की जो जो दांत हैं उसमें से ही हल्की हल्की सी परत निकलने लग जाती है ब्रश करने के बाद भी।
0: जी, वो कैलकुलस होता है। मैंने जैसे बताया कि आप जब सुबह उठते हैं
1: जी
0: तो सबसे पहले आपके दांतों के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर जम जाती है, जब हम ब्रश करते हैं तो वो साफ हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग अगर प्रॉपरली ब्रश नहीं कर रहे हैं तो वो लेयर 72 आवर्स में कैल्शियम हमारी जो थूक में रहता है
1: जी
0: बैक्टीरिया रिलीज करवा देते हैं और वहाँ अपनी कॉलोनी बनाते हैं, ऐसे समझिए पक्के मकान बना लेते हैं।
1: जी
0: तो वो जब आप अगर मान लीजिए आपको कभी खुद से चेतन अवस्था में आ गए कि अरे भाई ये तो गंदा जमा हुआ है, तो अच्छे से आपने साफ कर दिया तो वो छूट जाता है।
1: जी
0: तो वो छूटना जरूरी है, उसे टार्टर कहते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया के पक्के मकान होते हैं वो होते हैं।
1: जी
0: तो आपसे अगर साफ ना हो पाए तो आप जरूर जाएं डेंटिस्ट के पास, डीप क्लीनिंग करवा कर आएं, क्योंकि उसी के अंदर कीटाणु रहते हैं।
1: तो रात को सोने से पहले ब्रश जरूर
0: जरूर
1: करना
0: जरूर करना
1: चाहिए।
0: है, क्योंकि जो ब्रश होता है उसका 12 घंटे का ही समय होता है,
1: जी
0: उसके बाद रात को हमारा थूक भी नहीं घूमता और हम लोग सो भी जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी भी लो होती है।
1: जी
0: तो रात को ही बैक्टीरिया मेन अटैक करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दांत का दर्द रात में ही तेज होता है, क्योंकि एसिड निकलता है, बैक्टीरिया को शांत माहौल मिल रहा है, ना
1: जी
0: आपकी जीभ हिलती है, ना थूक चल रहा है, ना गाल चल रहा है, ना ब्रेन उतना एक्टिव है। तो जो भी बैक्टीरिया है आपके दांत के अंदर, कुछ कीटाणु या कुछ खाने का सामान रह गया, उसी को वो अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं। ग्रोथ बढ़ाते हैं तो दांतों से कैल्शियम खींच लेते हैं, जिसकी वजह
1: हाँ
0: से वो काला भी पड़ जाता है।
1: जी
0: और जब वो पक्के मकान बना लेते हैं तो वो दांतों के ऊपर आपको पीला पीला पीछे से जमा हुआ दिखता है, स्पेशली पीछे, क्योंकि पीछे आपकी ब्रशिंग प्रॉपरली हो नहीं पाती है। तो
1: हाँ
0: इसीलिए मैं हमेशा बार बार कह रही हूँ कि नमक का कुल्ला करिए।
2: जी डॉक्टर साहब एक साथी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। जी हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन साथी
3: हेलो,
2: बात कर रहे हैं?
3: मैं नेत्रपाल जी राया से बोल रहा हूँ जी।
2: जी नेत्रपाल जी आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब से समस्या बताइए।
0: जी बताइए।
3: मेरी उम्र है करीब 78 साल।
0: जी
3: जी बहुत खराब डॉक्टर साहब।
2: हाँ डॉक्टर साहब हैं।
0: जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ नेत्रपाल जी।
3: एक कैविटी हो गई है जाड़ में,
0: जी,
3: उसमें क्या किया जाए?
0: उसमें आपको ठंडा या गर्म लगता है, दांत में दर्द होता है,
3: दर्द होता है ना, ठंडा लगता है ना, गर्म लगता है, कुछ नहीं
0: आप
3: लगता
0: कुछ
3: है।
0: भी मंजन करते हैं या फिर कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, तंबाकू गुटखा के फॉर्म में या फिर?
3: कतई नहीं, कतई नहीं,
0: ठीक है,
3: न
0: तो
3: कोई
0: फिर बहुत अच्छा है
3: खराब
0: नेत्रपाल जी।
3: कुमार।
0: आप एक काम करें, उसके लिए ना एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट आता है, सुबह शाम यूज कीजिए और जो कैविटी है ना उसको फिल करा लीजिए। आसपास जो भी डेंटिस्ट हो तो बहुत सारी अच्छी फिलिंग
3: एक
0: मटेरियल्स
3: बार
0: आ
3: करा
0: गए।
3: लिया उसमें निकल जाते हैं वो।
0: अच्छा, वो निकल जाता है तो आप कैप ट्राई कर सकते हैं, अपने डेंटिस्ट से बात करें, तो उसमें कैपिंग का भी एक सुविधा है जो कि आसानी से नहीं निकलती है।
3: ये कौन सा पेस्ट है? हेलो
0: पेस्ट आप उसके लिए ना आपको डेंटिस्ट से मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैविटी है तो अलग होगा और अगर वो गहरी हो गई है कैविटी तो अलग होगा। तो आप पहले एक्सरे करा के देख लीजिए, आपके डेंटिस्ट ही आपको बताएंगे ढंग से।
3: आपने बताया था कौन सी वो थी क्रीम करने।
1: जी इसके लिए आपको डॉक्टर साहब से ही मिलना पड़ेगा, तभी आपको एक्सरे वगैरह सब करके और सही जानकारी आपको दे पाएंगी। आपने कार्यक्रम में फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब तंबाकू गुटखा और ये जो शराब का सेवन ये जो लोग करते हैं उससे भी बहुत लोगों को ओरल कैंसर हो रहा है, तो इस पर जरा प्रकाश डालें ताकि जानकारी मिले हमें और हमारे श्रोता
0: जी
2: साथियों
0: उषा
2: को।
0: जी, ये बड़ी अच्छी आपने प्रश्न पूछा है और काफ़ी ये जो एरिया है मथुरा वृंदावन कोसी और ये वाला जो एरिया है, यहाँ तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा होता है।
2: जी
0: आदमी लोग जो हैं वो प्रॉपर गुटखा खाते हैं और जो औरतें हैं वो निराला दंत मंजन करती हैं, बंदर छाप और गुल मंजन, बहुत सारी वैरायटी आती है
2: बिल्कुल
0: तो वो मंजन करती हैं। तो ये जो जितने भी आपके नशीले पदार्थ हैं ये हमारे दांतों की जो अंदर की ऐसे समझिए कि पेन को सहने की जो क्षमता है उसको डेड कर देते हैं। यानी कि अगर आपको छोटी सी भी कैविटी हो रही है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि आप नशे में हैं, आप समझ रहे हैं। तो
2: बिल्कुल
0: वही दांत के लिए भी है कि अगर पहले अगर ही आप कोई सेवन नहीं करते तो छोटी सी भी चीज आपको बहुत परेशान करेगी तो आप जल्दी ठीक करा लेंगे।
2: जी
0: लेकिन आप जब तंबाकू खा लेते हैं तो वो जो आपकी नसें हैं वो सुन

0: जाती है, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें तो कुछ पता ही नहीं चलेंगे। और नॉर्मली लोग फिर ल्यूकोप्लेकिया, मुंह कम खुलना, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं, या फिर सफेद पैच उनको गाल के अंदर दिखने लगता है। ये कैंसर की पहली स्टेज होती है, लेकिन लोग कभी उसे मानते नहीं है। अगर किसी डेंटिस्ट को दिखा रहे हैं तो वो समझा भी देंगे, लेकिन अक्सर क्या होता है कि फिर भी वो लोग कंटिन्यू करते हैं कि हमारे दांतों में कीड़े नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। कीड़े बहुत छोटी प्रॉब्लम है, कैंसर हो गया वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो उसके लिए फिर आपके पास समय भी नहीं होता, आप कितना भी इलाज करा लीजिए, ठीक है ना। तो बेटर ये है कि आप तम्बाकू किसी भी फॉर्म में मत लीजिए, क्योंकि चाहे वो दांत हो, चाहे और आपने देखा होगा ओरल कैंसर के लिए जितनी भी मूवीज हैं सबसे पहले अवेयरनेस आती है, बिकॉज ओरल कैंसर सबसे ज्यादा विग्रस होता है, सबसे ज्यादा तेज होता है और जल्दी हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब वो स्टेज फोर पे आ गए। तो तम्बाकू का सेवन किसी फॉर्म में मत करिए। औरतों से भी मैं विनती करती हूँ कि कोई भी किलो के हिसाब से जो मंजन मिलते हैं पेट में, और ये सब मैं देखती हूँ रूटीन में भी, गाँव में भी, लोग सुबह एक एक घंटे, फिर दोपहर में एक एक घंटे, रात को एक एक घंटे करते रहते हैं, उसे ना करें, क्योंकि उसे करने से आप कैंसर को न्योता दे रहे हैं। हमारा एक जीन होता है P53, वो एक्टिवेट हो जाता है जो भी नशीले पदार्थ है उससे, तो सीधा सीधा आप उसको न्योता दे रहे हैं कि आखिर हमें कैंसर कर लो।
1: जी
0: ठीक है, तो बेटर है ये नहीं करें, तम्बाकू का किसी भी फॉर्म में सेवन ना करें।
1: जी, आशा है हमारे श्रोता साथियों ने डॉक्टर साहब को सुना होगा और उन्हें जानकारी भी मिली होगी, जागरूक हुए होंगे और आसपास सभी को जागरूक करेंगे। एक श्रोता साथी
0: जी
1: हमसे जुड़ना चाह रहे हैं।
2: हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो,
1: आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप दोबारा ट्राई कीजिए। हमें किसी कारण से श्रोता साथी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं ये बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। फोन कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: हेलो
1: जी, कुछ तकनीकी परेशानी है आपके और हमारे बीच में, जो बातचीत का माध्यम है वो सक्रिय नहीं है, दोबारा से प्रयास कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही थी कि छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो आम से खास कब बन जाती हैं पता ही नहीं चलता है। तो सांसों की बदबू के बारे में हमने बात की, संवेदनशीलता, दांतों का संक्रमण भी आपने बताया, लेकिन ये दांतों का टेढ़ा हो जाना ये क्या है डॉक्टर साहब? ये क्या संक्रमण के बाद की एक वो है?
0: नहीं नहीं, ये जो दांतों का टेढ़ा होना है ये एक शारीरिक जैसे संरचना होती है वैसे ही दांतों का टेढ़ा होना भी है, कि किसी किसी का जबड़े का साइज छोटा होता है तो उसकी वजह से दांत पूरा 32 ही आते हैं, तो वो आगे पीछे थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दूसरा एक जो बहुत यूजल कारण है कि आजकल बच्चे बर्गर, पिज्जा ये सब बहुत खाते हैं। पहले के जमाने में लोग सलाद बहुत खाते थे, गन्ना बहुत खाते थे और चने बहुत खाते थे, तो ये इस सब कैल्शियम का एक सोर्स हुआ करते थे। और दूसरा, जो गन्ना खाते थे उसकी वजह से दांतों की एक्साइज होती थी, तो जो हमारा जबड़ा है वो थोड़ा बड़े साइज में होता था और दांत अपने प्रॉपरली एक्यूमुलेट, मतलब अच्छे से एडजस्ट करते थे। बहुत कम लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हुआ करते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं नॉर्मली बर्गर, पिज्जा और सॉफ्ट फूड पे रहते हैं, और नॉर्मली आप अगर यदि देखें तो 18 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग का भी कंट्रोल्ड होना चाहिए, और बच्चों को जो आपने देखा होगा कि बॉटल से बहुत ज्यादा दूध पिलाने लगे हैं, पहले चम्मच से कटोरी से पिलाते थे, तो जो बॉटल है वो नीचे वाले मैंडिबल को यानी नीचे वाले जबड़े को ग्रोथ नहीं होने देता। इसकी वजह से भी एक रीजन है कि बच्चों का जो ग्रोथ होना चाहिए ऊपर मैक्सिला यानी ऊपर के जबड़े का, नीचे के जबड़े का, वो प्रॉपरली हो ही नहीं रहा, क्योंकि बॉटल नीचे वाले जबड़े पे प्रेशर लगाती है कंटिन्यूस, और उनकी टंग भी डेवलप नहीं हो पाती प्रॉपरली। आपने देखा होगा आजकल बच्चे को ये तोतलापन भी, टंग टाई बहुत ज्यादा होने लगा है, उसका एक रीजन ये भी है। कई बार तो ये जन्म से होता है, कई बार ये एक्वायर्ड हो जाता है हमारे खुद की गलती से। कैसे? आप दोनों टाइम बच्चे का पहला दांत दिखे उसे साफ करना शुरू कीजिए नमक के पानी से, वो आप गौज ले लीजिए या कॉटन ले लीजिए, 6 महीने में पहला दांत दिख जाता है तो उसे तब से साफ करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक बार अगर मुंह में कीटाणु पल गया तो वो पलता चला जाता है। जो बच्चों के दूध के दांत खराब आते हैं तो उनके जो परमानेंट दांत है उनकी भी काफी टेंडेंसी होती है कि वो खराब हो जाएंगे बड़े होके, इसलिए जब छोटे बच्चों के दांत खराब हो एक तो दोनों टाइम ब्रश करवाएं, और जब खराब हो तभी सही करवाएं। ये ना कहें कि मकोई लग गई है ये तो बदलेंगे, ये गलत है, क्योंकि आम जन मैं देखती हूँ लोग बोलते हैं कि मकोई लग गई है ये तो सब बदल जाएंगे बच्चों के दूध के दांत, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि जो दूध के दांत है उसके नीचे ही परमानेंट दांत है। जब दूध के दांत में

0: होगा तो परमानेंट दांत को भी वही बैक्टीरिया मिलता है, वो
1: जी
0: फिर से पल जाएगा उसके थूक में। और दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा दांत से खाना चबा कर नहीं खाएगा तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा?
1: जी
0: चबाएगा नहीं तो जो दांत है हमारा क्या करते हैं, वो सारे विटामिन हमारे मुंह में ही निकालते हैं, सब चर्निंग होती है,
1: जी
0: बाकी बॉडी में कहीं चर्निंग नहीं होती, मतलब कहीं चबता नहीं है,
1: जी
0: वो सीधे सीधे पास होता है। तो जब हमारे यहाँ बड़े जो बड़ा फूड पार्टिकल है उसे छोटे पार्टिकल में चर्निंग हो जाएगी तो हमारे सारे विटामिन अलग होते हैं मुंह के अंदर ही और अब्जॉर्ब भी वहीं हो जाते हैं।
1: जी
0: लेकिन अगर बच्चा चबाएगा नहीं तो वो सीधे चला जाएगा, तो आप कितना भी बढ़िया बादाम दीजिए, कितना भी बढ़िया खाना दीजिए, वो बच्चे का सब फिकस के थ्रू बाहर हो गया। तो
1: जी
0: जो उसे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो भी नहीं मिल रहा,
1: जी
0: दांत की जो एक्सरसाइज के लिए चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, बच्चों का पेट खराब हो जाता है, इतने छोटे बच्चों का बार बार दस्त हो रहे हैं, बार बार उल्टी कर रहे हैं, तो वो रीजन ही है। ऐसे ही बड़ों के साथ भी है, बड़े बूढ़े होते हैं दांत चले गए कहते हैं कि कितनी जिंदगी है, गलत है, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। आप जब जितने दिन है उतना तो चबा के खाना चाहिए ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि नहीं तो आपने देखा है बड़े बूढ़ों का भी होता है कि कब्ज हो रही है कहिए तो दस्त हो जाता है, क्यों? क्योंकि दांत खाना चबके नहीं गया ना,
1: जी
0: चबके जाना चाहिए नीचे, जो काम जिसका है वो वहीं पे ही होना चाहिए, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल
0: आप ब्रेन से दिल का काम नहीं करा सकते, दिल से दांत का काम नहीं करा सकते, दांत
1: बिल्कुल
0: से आंख का नहीं करा सकते,
1: बिल्कुल
0: तो दांत चले गए हैं तो कुछ तो लगाइए, अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिए कि उनके दांत लगवाइए, कम से कम च्यूइंग करेंगे तो बढ़िया से खाएंगे तो आधे टाइम तो ठीक रहेंगे वो।
1: जी। तो डॉक्टर
0: जी
1: साहब, दो छोटे बच्चे जो होते हैं, दूध के दांत जो होते हैं, उनकी दांतों की सफाई के लिए हम किस महीने से उनको ब्रश दे सकते हैं?
0: 6 महीने पे तो आप खुद शुरू कर दीजिए,
1: जी
0: जैसे ही बच्चे का कोऑर्डिनेशन बन जाए, 2 से 2.5 साल में बच्चा स्कूल जाने लगता है, तब आप उसकी ब्रशिंग हैबिट इंट्रोड्यूस करा दीजिए 2 साल के अंदर। छोटा सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए, इतने सारे अच्छे कलरफुल ब्रश आ गए हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा पी मतलब मटर के दाने के जितना देना है, ये नहीं कि आप उसको पूरा भर दें क्योंकि ज्यादा टॉक्सिसिटी भी ठीक नहीं,
1: जी
0: तो मटर के दाने जितना आप ब्रश पे लगाएं उसको फैला दें ब्रश के ऊपर, और उसके बाद बच्चे को राउंड मोशन में सिखाएं। पहले आप खुद सीखिए, यूट्यूब
1: जी
0: लोग इतना यूज करते हैं, यूट्यूब पे ब्रश करने का सही तरीका देखिए और फिर बच्चों को सिखाइए। और
1: बिल्कुल
0: मैं सारे टीचर्स से भी कहूंगी हर स्कूल में ओरल हाइजीन हैबिट को जरूर सिखवाइए, बच्चे खुद ब्रश करें दोनों
1: जी
0: टाइम, और वो 2, 2.5, 3 साल का बच्चा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकता है। उसको वेट मत करिए कि वो बहुत बड़ा होगा समझदार होगा तभी ब्रश करेगा, ब्रशिंग की आदत, नहाने की आदत,
1: जी
0: हाइजीन की आदत बच्चों को छोटेपन से ही आनी चाहिए।
1: बहुत ही
0: जी
1: उपयोगी जानकारी
0: जी
1: दी डॉक्टर साहब। चलिए एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी। हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय दे दीजिए।
2: मैं बीकन बोल रहा हूँ, राम जुड़ावे से।
1: जी अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर
0: जी
1: साहब
0: बीकन
1: से।
0: जी बताइए। ये
2: कि मैं 80 साल की उम्र है
1: जी, अस्सी साल की
0: जी
2: और नीचे और ऊपर की दो दाग हैं सर,
0: जी।
2: हमारे दांत लग सकते हैं अभी?
0: हाँ जी लग सकते हैं बीकन जी, बिल्कुल लग सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो परमानेंट दांत भी लग सकते हैं, और अगर शुगर है तो निकाल कर लगाने वाला भी बढ़िया दांत बन सकता है, तो आप जरूर लगवाइए, ये जरूरी है, चाहे कितनी भी साल की उम्र हो। वैसे भी ओल्ड एज में ही लगते हैं दांत, कोई यंग लोगों को थोड़े ना लगते हैं।
2: तो आप यहाँ लगते हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल लगते हैं, सारी सुविधाएं हैं
2: पतों का है जी?
0: जी, वो माँ सरस्वती अस्पताल जयसिंहपुरा।
2: अच्छा, सदर बाजार में?
0: नहीं सदर बाजार में नहीं है, ये गायत्री तपोभूमि है मथुरा
2: अच्छा,
0: वृंदावन के बीच में, आप वहां पर है। जी जी
1: जी तो उम्मीद करते हैं आपको अपनी समस्या का समाधान कुछ मिल गया होगा। और अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बड़ी उम्र में जैसे बुजुर्ग लोग दांत लगवाते हैं तो उनको खाना चबाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अगर यदि देखिए बुजुर्ग को ही दीप्ति जी दांत लगेगा ना,
1: जी
0: यंग लोगों को तो कभी एक्सीडेंट एकाध बार
1: बिल्कुल
0: हुआ तो एकाध दांत लगेगा,
1: जी
0: लेकिन जो 32 का कॉन्सेप्ट है वो बना ही बुजुर्गों के लिए है ना, क्योंकि वो लोग अपने, आजकल तो लोग बड़े अवेयर भी हो गए हैं, मतलब
1: जी
0: मैं बहुत सारी एक जनरेशन देख रही हूँ, वो पेरेंट्स बच्चे अपने पेरेंट्स को लाते हैं। एक बार मेरे साथ ही था कि उसने अपनी मदर को फुल माउथ इम्प्लांट गिफ्ट किया, मतलब पूरा फिक्स दांत उसको गिफ्ट किया
1: जी
0: मदर्स डे पे, तो
1: जी
0: मतलब कुछ मुझे ऐसा लगता है वो मीनिंगफुल होता है, माँ बाप हमेशा करते हैं, तो अगर आप उनको चाहते हैं वो स्वस्थ रहें तो दांत लगवा दीजिए उनके, आधे टाइम तो मतलब वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो वो जब नहीं इंजॉय कर पाए तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो माँ
1: बिल्कुल
0: बाप को इंजॉय करवाइए, बढ़िया खाना खिलवाइए, तो वो आधे तो वैसे ही सही हो जाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: जी,
0: जी
3: हमारा अगला प्रश्न भी यही आ रहा था कि दंत प्रत्यारोपण क्या होता है और इसके बारे में बताएं, और हमारे श्रोता साथी के माध्यम से हमारे बाकी के श्रोता साथियों को जानकारी मिली।
0: उषा जी, दो तरीके के आप दांत लगवा सकते हैं। एक होता है जो रात को निकाल कर आपको रखना होगा और अगले दिन सुबह ब्रश करके फिर से लगाना पड़ेगा, जिसे हम बत्तीसी कहते हैं या डेंचर कहते हैं, रिमूवेबल डेंचर, यानी रिमूव हो सकता है। तो दूसरा होता है जो फिक्स इम्प्लांट, अभी जो नई टेक्निक आ गई है, जिससे क्या करते हैं आप, कोई भी एज हो, चाहे 80 साल हो, 90 साल हो एज, उसके लिए

0: बार नहीं है, बस आपकी शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए। तो उसमें आप हड्डी के अंदर कुछ टाइटेनियम के इम्प्लांट्स लगते हैं, उनके ऊपर फिक्स दांत लग जाते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही चबा सकते हैं जैसे असली दांत चबाते हैं, और प्रॉपरली चर्निंग भी होती है, लुक भी अच्छा हो जाता है, और जो गाल धस गए हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, काफी कुछ चेंज हो जाता है क्योंकि हड्डी गलना बंद हो जाती है उससे। जी
1: जी, एक साथी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो, किसी कारण से संपर्क नहीं हो पाया,
0: लेकिन उषा जी दांत कोई सा भी लगवाएं उसकी सफाई का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि असली दांत जब आपने खराब हो गए हैं एजिंग की वजह से, आपने दूसरा दांत लगवाया, तो दोनों टाइम ब्रशिंग कुल्ला जरूर कीजिए। बल्कि मैं, लोग कहते हैं कि एक उम्र के बाद दांत झड़ जाते हैं, नहीं झड़ते हैं, आंखें कमजोर हो सकती हैं लेकिन खत्म नहीं होती। सेम दांत भी कमजोर हो सकते हैं लेकिन कभी भी दांत पूरे अपने आप नहीं गिरते, या तो उसके पीछे कोई कारण है, कोई बीमारी है, पायरिया लगा, कीड़ा लगा, आपने समय से ध्यान नहीं दिया, नहीं तो जैसे कि बाकी ऑर्गन होते हैं थोड़े वीक होते हैं लेकिन बुढ़ापे तक के लिए होते हैं, सेम दांत भी हैं, थोड़े वीक होंगे, मेंटेनेंस करा लीजिए, बुढ़ापे तक चलेंगे, तो मेरे हिसाब से तो वो निकलने भी नहीं चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, समय हो गया है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का, लेकिन हमारे श्रोता साथियों को हर तरह की आपके द्वारा जानकारी मिल गई। श्रोता साथियों, आज की हमारी बातचीत से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दांतों की बीमारी को केवल दर्द से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। नियमित सफाई, सही खान पान और समय समय पर जो हमारे दंत चिकित्सक हैं उनसे जांच कराते रहना चाहिए। हमारे दांतों और मसूड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आई,
0: धन्यवाद,
1: आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें और हमारे श्रोता साथियों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि मुस्कान यूं ही चेहरे पर सजी रहे, दांतों में सेहत की चमक बनी रहे, थोड़ी सी देखभाल, थोड़ी सी सावधानी, यही है स्वस्थ दांतों की निशानी। इसी बात के साथ मिलते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले अंक में एक नए विषय पर, नए विषय विशेषज्ञ के साथ, चिकित्सक के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, स्वीकार कीजिए।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। विषय था दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। विशेषज्ञ थी डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

साथियों, इस गीत को हमने लुटेरा फिल्म से लिया है। मोनाली ठाकुर ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी है। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत अमित त्रिवेदी का।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत। साथियों, इस गीत को हमने फिल्म लम्हे से लिया है। आवाज दी है गीत को लता मंगेशकर ने, गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत शिवहरी का।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म लम्हे के इस गीत को। फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में, तत्पश्चात हिंदी में सुने जा सकेंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: Ari over the phone and apprised him of the gravity of the situation. West Bengal Chief Minister has assured prompt action in this regard. Sabita Parikh, Akashwani News, Patna.
1: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh till tomorrow. In cricket, India resumed their innings after lunch against host Sri Lanka in the day two of the second and final test in Colombo. India were 471 for 8 when reports last came in. Rishabh Pant, returning after retiring hurt on day one, battled through a barrage of short balls to remain unbeaten on 63, while Dhruv Jurel made 59 to power India through 419 for 6 at lunch. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 off 193 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 more groups of countries. Supreme Court issues notice to centre on plea seeking CBI probe into JPSC exam irregularities. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi this evening. External Affairs Minister S. Jaishankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. And in Test cricket, India holds strong position against Sri Lanka with 471 runs in the first innings at Colombo. Devdutt Padikkal smashes 117 runs. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन की डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
3: We have about 80 companies.
4: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
3: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक

0: पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
1: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Special Bima Yojana.

0: credit card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
2: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
4: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपने को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
5: पीएमएफएमई की हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदल कर उसमें वैल्यू ऐड कर कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने एमओयू साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.rtv.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रिजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडी इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने

0: तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए
0: जी। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं
0: जी। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ

0: चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागू ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागू में हर साल कोडागू हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
0: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
0: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए
1: जी। और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय।
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ

0: शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
1: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
1: क्या 20 करोड़ साल?
2: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
1: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
2: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
1: रुको, मैं बताती हूँ।
2: तुम बताओ।
1: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
2: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
1: टैथिस महासागर।
2: वाह,
1: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
2: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
2: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
2: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
2: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
2: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
2: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
2: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
2: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
3: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
2: हाँ बेटा क्यों नहीं।
3: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
2: बहुत अच्छे, और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही हैं। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई

0: बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
4: Marvelous.
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
6: ये किस तरह की मूर्ति है?
7: ऐसी मूर्ति तो मैंने
8: वाओ वंडरफुल।
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
2: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।

0: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
1: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
2: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
3: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
0: उस मूर्तिकार ने बताया,
4: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
3: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
5: ग्रेट, मार्वेलस।
2: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
5: वंडरफुल।
6: हाँ, हम सहमत हैं।
3: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
4: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
3: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
0: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
3: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
0: कहीं ऐसा ना हो कि
3: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 5:30 पर हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम आपको आज के इतिहास से जुड़ी रोचक बातें बताते हैं। 24 अगस्त 1690, आज के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी जॉब चडनॉक की खोज पूरी हुई। हुगली नदी के किनारे उन्होंने कुछ गांव ढूंढे जो आगे चल के भारत का एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड हब बनने वाला था। कैलिकटा से कैलकटा और कैलकटा से कोलकाता, ये शहर आज भी अपना पर्पस निभा रहा है और आज के ही दिन कोलकाता स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। वैसे एक फन फैक्ट, 1772 से 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी, जिसे बाद में शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया।
1: आज ही के दिन 1908 में पुणे जिले के खेत गांव में जन्मे महान क्रांतिकारी सेवाराम राजगुरु को आज हम उनके जन्म दिवस पर श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, जिसका मकसद भारत को ब्रिटिश राज से आजाद कराना था। उन्होंने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सिर्फ 22 साल की उम्र में राजगुरु ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। शहीद राजगुरु को उनके जन्मदिवस पर कोटि कोटि नमन। उनका साहस और बलिदान हमेशा हमें और हमें सुन रहे हर युवा को प्रेरित करता रहेगा।
0: आज के ही दिन 1971 में अजीत वाडकर की कप्तानी में भारत ने पहली बार इंग्लैंड को उन्हीं की जमीन पर टेस्ट मैच में हराया। पहले दो टेस्ट ड्रॉ होने के बाद तीसरे और फाइनल टेस्ट में भगवत चंद्रशेखर ने कमाल कर दिया। उन्होंने

0: रन देकर 6 विकेट्स लिए और भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को सिर्फ 101 रन पे समेट दिया।
1: इस हिस्टोरिक जीत को याद करते हुए भारत के पूर्व कप्तान और हेड कोच रवि शास्त्री जी ने बताया कि जब ये मैच हुआ तब वो सिर्फ 9 साल के थे और उन्होंने इसे रेडियो पर सुना था। उनके मुताबिक इस जीत ने पूरे भारत को एक नया आत्मविश्वास जगाया कि भारत के खिलाड़ी सिर्फ ओवरसीज में खेलने ही नहीं बल्कि वहां जीतने को भी काबिलियत रखते हैं। 1971 की ये हिस्टोरिक जीत इंडियन क्रिकेट की इतिहास में हमेशा एक खास मुकाम रखेगी।
0: आज के दिन 2006 में हमारे प्यारे प्लूटो ने प्लैनेट होने का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया और बेचारे ने अपना प्लैनेट होने का स्टेटस खो दिया।
1: प्लैनेट्स के भी कट ऑफ होते हैं?
0: बिल्कुल खुशी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमने प्लूटो जैसे और छोटे बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डिस्कवर किए, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि उन्हें भी प्लैनेट माने या नहीं, और उन्होंने ये कट ऑफ बनाया कि हम उसी को प्लैनेट मानेंगे जो सन के चक्कर लगाते हो, जो गोल हो और जिसका ग्रेविटेशनल पुल हो। अब प्लूटो बेचारा आखिरी वाला नहीं कर पाया।
1: इस बात से तुम इतना क्यों दुखी हो रहे हो?
0: मुझे बुरा लगता है प्लूटो के लिए। मैं रातों को सोचता हूँ कि अगर ये प्लैनेट्स आपस में बातें करते होंगे तो प्लूटो को छोटू छोटू बोलकर चिढ़ाते होंगे। नो वंडर बेचारा दबा दबा सा कोने में रहता है।
1: अच्छा, प्लूटो की बात से मुंह ना उतारो, एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ।

0: एंड हाइजीन का ध्यान रखें। फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक और फटीग इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। ये लक्षण दिखने पर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
1: VMMC और सफदरजंग हॉस्पिटल ने पब्लिक हेल्थ केयर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहली बार रोबोट असिस्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई है। 75 साल के एक पेशेंट की ये सर्जरी आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क की गई है। डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा और उनकी टीम को इस कामयाबी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: आज से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट ने सिम कार्ड नियमों में बदलाव किए हैं। अगर आपकी आईडी पर 9 से ज्यादा सिम्स एक्टिव हैं, तो आप नया नंबर इश्यू नहीं करवा सकते। जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये लिमिट 6 की है।
1: डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने नेशनल लेवल ढाई आखर लेटर राइटिंग कंपटीशन 2026-27 शुरू की है। इस साल की थीम है अ लेटर टू मदर अर्थ, माई प्रोमिस टू प्रोटेक्ट नेचर। इस कंपटीशन को दो एज कैटेगरीज में बांटा गया है, 18 साल तक और 18 साल से ज्यादा। दोनों कैटेगरीज के पार्टिसिपेंट्स हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भारतीय भाषा में लेटर लिख सकते हैं।
0: अगर आप भी नेचर को लेकर अपना मैसेज और कमिटमेंट एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो अपना हैंड रिटन लेटर इस पते पर भेजे। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई 40001। एनवलप पर ढाई आखर लेटर 2026 लिखना ना भूलें। लेटर भेजने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2026।
1: चलिए सुनते हैं अब हमारा अगला गीत, बावरे।

0: कहते हैं ना, कुछ सफर छोटे होकर भी दिल में बहुत दूर तक साथ चलते हैं।
1: और आज का ये खूबसूरत सफर भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है।
0: इन बातों में अगर आपको अपनी कोई बात मिली हो, इन गीतों में अगर कोई अपना एहसास मिला हो,
1: तो समझिएगा हमारी ये मुलाकात थोड़ी सी और खास हो गई।
0: दोस्तों, आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं yuvanifeedback@gmail.com पर, yuvanifeedback@gmail.com।
1: आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली मुलाकात फिर होगी, नए किस्सों के साथ, नई बातों के साथ और उसी मुस्कान के साथ।
0: इसी के साथ मैं हूँ खुशी,
1: मैं हूँ उत्तम। तब तक सुनते रहिए युववाणी। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत रूस संबंध लगातार मजबूत और व्यापक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग आपसी हितों और विश्वास पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर कल दो दिन की रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। वे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंधों में काफी तनाव आया था। हालांकि इसके बाद दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधि मंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। इन पर लुधियाना में ग्रेनेड हमले की नाकाम साजिश में भी शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षित और मजबूत भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। निदेशालय ने दोनों आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कल गिरफ्तार किया। दोनों को गोवा की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद WR खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हिल पीपल्स यूनियन से की थी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट के नुकसान पर 503 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल 115 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में आज शाम नीदरलैंड्स में भारतीय पुरुष टीम का

0: Nifty also fell 33 points to settle at 24,219. And in cricket, India declared their first innings at 500 for 3 for 9 against host Sri Lanka. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी में आप सभी का स्वागत। नमस्कार।
1: नमस्कार। और साथियों, कहते हैं कि आंखें हमारे मन का भाव बोलती हैं, और जब बात हो शिव की आंखों की, उनके नेत्रों की, तो बात कुछ भक्तिमय हो जाती है।
0: बिल्कुल। और मुझे पता है आप आज की बात कर रहे हैं, आज
1: जी
0: सोमवार है, सावन का सोमवार है,
1: जी
0: और कहते हैं कि आज भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग जल, बेलपत्र और सब कुछ पता नहीं क्या क्या चीज़ें अर्पित करते हैं, लेकिन भगवान को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए जो हम अर्पित कर रहे हैं वो तो उनका ही दिया हुआ है। हम
1: जी
0: भगवान को चाहिए कि हमारे जो है
1: द्वेष
0: है, अहंकार है, अगर वो उन्हें समर्पित कर दे तो सबसे बड़ी वही
1: भक्ति है।
0: आराधना और
1: जी
0: भक्ति कही जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कुसुम जी। और अब अवसर ऐसा है, दिन ऐसा है,
0: बिल्कुल
1: तो क्यों ना हम शिव का भजन करें और सुनवाएं अपने साथियों को ओमपाल रतौलवी की आवाज में ये शिव भजन।
0: जी, हम भी भक्ति के रस में डूब जाते हैं, शिवमय हो जाते हैं।
1: जी

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं की पसंद का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को अनुराग पांडे का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो हमारे देश के युवा हैं उन पर एक जिम्मेदारी है इस राष्ट्र के दिशा प्रदान करने की और इस देश को नई नई ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जाने की। फिर चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो और खेलकूद का क्षेत्र हो या विज्ञान का वो क्षेत्र, संगीत का वो क्षेत्र, जो अभी हमें, जिन मंजिलों पर अभी हमें पहुंचना है। जी हाँ, अगर हम जब अपने शैक्षिक जीवन में रहते हैं, यानी कि जब अपने एकेडमिक सेशन में रहते हैं, जब हम क्लास बचपन से लेकर और 12 तक पढ़ते हैं, या हम कहें कि हम जब स्नातक या परास्नातक की कोर्स को पढ़ रहे होते हैं, तो इस पूरे शैक्षिक जीवन में हम कुछ सपने बुनते हैं अपने भविष्य को लेकर। जिम्मेदारी रहती है अपने और अपने परिजनों के सपनों को पूरा करने की। पर इस जिम्मेदारी में, इस संकल्प में, इस आत्मविश्वास में या इस पूरी की पूरी एक साधना में कहीं कोई अड़चन आती है तो वो है हमारा कभी कभी गलत रास्ते पर निकल जाना। जी हाँ, गलत रास्ते से मतलब ये कि एक लाइन है, पंक्ति है कि काफिला भटका हुआ, रहनुमा कोई नहीं, हम जमा हैं उस जमी का, आसमा कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब युवा अपने को पाते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि शायद भविष्य में वो जो सोच रहे हैं शायद वो पूरा हो या ना हो, कह सकते हैं कहीं ना कहीं निराशा जब जीवन को घेरती है कि जब कोई आप प्रयास कर रहे होते हैं तो उसमें सब तरह की चीज़ें आप को देखने को मिलती है। कभी आप बहुत ज़्यादा आशावादी रहते हैं, कभी आपके अनुसार सारी चीज़ें आसानी से आपको अचीव हो रही होती हैं, मिल रही होती हैं, तब ऐसी भावनाएं नहीं आती। लेकिन जब आप प्रयास कर रहे होते हैं और एक या दो बार जब आप उस प्रयास में आप असफल होते हैं तो अक्सर निराशा घेर लेती है और इस निराशा के चलते कई बार हम उन रास्तों पर निकल पड़ते हैं जिन पर हमको नहीं जाना चाहिए। क्यों? कारण ये कि आज, जी हाँ, आप मेरा जो इशारा है वो नशे की ओर है। कई बार हम अलग अलग तरीके से नशे का सहारा लेने लगते हैं अपनी निराशा को दूर करने के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। तो ये जो नशे की जो लत है, अक्सर हम हमारे जो साथी हैं, हमारे जो युवा साथी होते हैं, वो अक्सर आप देखते होंगे कि वो होता है कि भाई कोई बात नहीं, आप शुरुआत करो, हमने भी ऐसी करी थी, या सिगरेट पीने को एक बहुत बड़ी एक इस बात का कि भाई एक मर्दानगी का उदाहरण देकर के शुरू किया कि भाई तो ये मर्द वाली बात है, शराब सिगरेट पी के देखो, शराब पी के देखो, या कोई भी इस तरह का नशा करके देखो। अक्सर हमारे दूसरे जो युवा साथी हैं अपने साथियों को अक्सर इस तरह से कई बार कहते हैं। लेकिन वहीं हम ये समझें, थोड़ा ठहरें और उस निराशा का अपने अध्ययन के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा, अपने और अच्छे मित्रों के द्वारा, अपने परिजनों के द्वारा, जो भी हमारा परिकर है उसमें जब हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम पाते हैं कि समाधान धीरे धीरे होने लगा है। जो असफलता की जो निराशा थी वो कहीं दूर धीरे धीरे होने लगी है, जो असमंजस का जो अंधेरा था वो अब छटने लगा है। तो बात सिर्फ इतनी कि हमको निराश नहीं होना है, हमें कभी अपना साहस नहीं छोड़ना है। और इस बीच में सारी की सारी इस बात में हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम परेशानियाँ आएंगी, हमें घेरेंगी, लेकिन हम अपना हौसला न छोड़ें। हम युवा हैं और किसी भी ऐसे रास्ते पर ना जाएं जिस पर चलकर हम अपने लक्ष्य से भी भटक जाएं, साथ ही साथ स्वास्थ्य हमारा ख़राब हो, हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़े, हमारा जो धन है वो भी खर्च हो। मतलब ये कि हम नशे से दूर रहें। स्थितियाँ उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, आशा निराशा चलती रहती है। जो जिस तरह से सूरज

उगते वक्त और छिपते वक्त एक जैसे रंग का दिखाई वक्त पड़ता है, ठीक वैसे ही हमको अच्छे समय में या प्रतिकूल या बुरे समय में भी अपने को साधना है। इसी का नाम जीवन है। कभी अपनी उम्मीदों को मत छोड़ो, क्योंकि जो उम्मीदें को नहीं छोड़ते और जो अपना प्रयास और अपनी जो नॉलेज उसको लगातार लेते रहते हैं, मंजिलें उनको ज़रूर मिलती हैं।

0: और ये जो उमंग है, ये जो जीवन में आगे बढ़ने का जो हौसला है, बस साथियों इस हौसले को कभी कम नहीं होने देना है। कारण ये कि हम अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे माता पिता जो हैं तो बचपन से जब हमारा लालन पालन करते हैं तभी उनके दिमाग में ये बात रहती है कि ये हमारे परिवार को, हमारे जो बच्चे हैं वो दिशा देंगे और इसे ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, तो जिम्मेदारी उनकी भी है। तो बुरी लतों से दूर रहना है, यही संकल्प हमें लेना है। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे उर्दू संरक्षण के लिए और अधिक संसाधन क्या क्या हैं। जी हाँ, भाषा जी, भाषा ही एक माध्यम है हमारे बीच में संवाद का। हम जब बात करें किसी भी भाषा की बात करें तो भाषाएं आपस में दो लोगों के बीच के संवाद का एक साधन होती हैं, या कह सकते हैं कई प्रकार हो सकते हैं संवाद के। और लेकिन हम जब बात करें भाषाओं को कैसे हम समृद्ध बनाएं, तो सिर्फ ये है कि भाषाओं के जो लैंग्वेज है, आप देखते होंगे चाहे वो भाषा उर्दू हो चाहे वो भाषा हिंदी हो, उसमें अक्सर नए नए शब्द अन्य भाषाओं के उसमें आते रहते हैं। और भाषा तभी जीवित भी रहती है, यानी कि तभी और प्रचलन में भी रहती है कि जब उस भाषा में जो जो उस दौर के जो लोग हैं उस भाषा का बढ़ चढ़ करके प्रयोग करें। और अक्सर जब उस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उस बोली का प्रयोग किया जाता है, तो जो बदलते हुए समय के साथ साथ जा कह सकते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी के कुछ शब्द हैं, कुछ आम बोलचाल के शब्द हैं, वो भी उन भाषाओं में सम्मिलित होते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका है उन भाषाओं का और समृद्धशाली होने का। उर्दू भाषा के संरक्षण और उसे जो बात करें, अगर हम सीखने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं, तो कई डिजिटल ऐसे हमारे ऐप हैं, कई प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम अपनी इस भाषा को और समृद्धशाली बना सकते हैं और उसको सीखा जा सकता है आसानी से। और इन सब भाषाओं में जो साहित्य रचा गया है, लिखा गया है, उसको पढ़ें, उसका प्रचार हो, उसका प्रसार हो। बात करें कि NCPUL, जी हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत ये नोडल एजेंसी उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है। ये काउंसिल पूरे देश में उर्दू और कंप्यूटर जो उसकी एप्लीकेशन है उनमें अपने डिप्लोमा कोर्स चलाती है। राज्य उर्दू अकादमियाँ हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उर्दू की अकादमियाँ हैं, किताबों के प्रकाशन होते हैं। और साथ ही साथ डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा, जी हाँ, आप घर बैठे भी कहीं ना कहीं या नहीं जा पा रहे हैं, आप विद्यालय या कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ भी आप डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा भी भाषा को पढ़ सकते हैं। मुफ्त शिक्षण संसाधन है, फ्री लर्निंग टूल किट्स मिलती हैं, तो ये कई हम ढूंढना चाहेंगे तो हमें चीज़ें मिलेंगी। या हमारे अंदर कहते हैं कि लगन होगी किसी भाषा को पढ़ने की, समझने की, जानने की, तो रास्ते खुलते हैं। तो ऐसे ही रास्ते उर्दू संरक्षण के लिए भी हैं। साथ ही साथ अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है कहानी का। जी हाँ, आज की कहानी आपके बीच लेके आ रही हैं अंजलि गर्ग। आज की कहानी का शीर्षक आवरण।
1: अपनी नन्ही बिटिया प्रिया की उंगली पकड़े हुए मैं करीब 1 घंटे से मार्केट का चक्कर लगा रही थी, उसकी स्कूल की फ्रेंड के लिए गिफ्ट लाने के लिए। बहुत देर में उसे गिफ्ट पसंद आया और आज हम उसे लेकर घर आ गए। पार्टी शाम को 6 बजे थी। आधे घंटे में ही वह सज संवर कर तैयार खड़ी हो गई। आज उसे अपनी फ्रेंड के घर पहुंचना था। उसे लेकर जैसे ही मैं घर के बाहर निकली, सामने से मिसेस शर्मा मिली और बोली, अरे प्रिया बेटी, बड़ी स्मार्ट लग रही हो, कहाँ की तैयारी है? मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। फिर मैंने कहा, उसकी फ्रेंड की क्लासमेट है, उसी के जन्मदिन में जाना है। मिसेस शर्मा अपने अंदाज में बोली, अरे निर्मला बहन जी, ये जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हैं वही? मैंने कहा, हाँ वही निर्मला जी, जिनके पति कनाडा में इंजीनियर हैं। मैंने कहा, तो मिसेस शर्मा फिर बोल उठी, अरे वह तो तलाकशुदा हैं। इस बात

से बिल्कुल अनजान थी। मेरे मन में कौतूहल जाग उठा। मिसेस शर्मा की बात सुनकर मेरे मन में उथल पुथल मच गई। मिसेस शर्मा तलाकशुदा है, आज तक कभी नहीं बताया। उनके व्यवहार में भी कभी ऐसा नहीं लगा। निर्मला जी को मैंने करीबन 1-1.5 साल से जानती हूँ। परिचय का माध्यम थी मेरी बेटी प्रिया और उनकी बेटी शिखा। पहली बार हमारे घर पर आई, मैं उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुई। करीब 5 फुट 5 इंच का लंबा ऊंचा कद, थोड़ा भरा हुआ शरीर, नाक नक्श तीखे तो नहीं लेकिन चेहरे पर शालीनता के साथ साथ एक तेज भी था। बाल कंधे तक कटे हुए, आंखों पर चश्मा, सलीके से पहनी गई तात की साड़ी, एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में मेल खाती हुई चूड़ियां, गले में हल्का सा मंगलसूत्र और माथे पर छोटी सी बिंदी। वह अपनी बेटी के नोट्स के सिलसिले में घर आई थी। बातों का सिलसिला बढ़ा तो उन्होंने बताया, मेरे पति भी यहाँ नहीं है, कनाडा गए हैं, इंजीनियर हैं, थोड़े ही दिन में आ जाएंगे। फिर मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ी और आगे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे सास ससुर दिल्ली में हैं। मेरे मन में कौतूहल और जाग उठा। मैंने पूछा, आप यहाँ और आपके सास ससुर वहाँ? तो वो मेरे मन की बात जान गई और उन्होंने कहा कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए मैं यहाँ नौकरी के सिलसिले में आई हूँ। हमारा मेलजोल बढ़ने लगा। फिर मुझे पता लगा कि मेरी देवरानी उन्हीं के पड़ोस में रहती है। सो मैंने निर्मला जी के बारे में और जानने के लिए मन बना लिया। मैंने अपनी देवरानी नकुर से मिली और निर्मला जी के बारे में और जानकारी चाही। और फिर मेरी देवरानी ने निर्मला जी की आप बीती सुनाई। निर्मला जी का विवाह दिल्ली के धनी परिवार में हुआ। निर्मला जी जो कि मध्यम वर्ग से संबंध रखती थीं, उनके माता पिता खुशी खुशी इस संबंध के लिए राजी हो गए। उनके पति घर के इकलौते बेटे थे जिसके कारण उनके स्वभाव में गुस्सा था। उनकी आदत से निर्मला जी धीरे धीरे प्रभावित हुई लेकिन उनके मन को वह अच्छी तरह नहीं समझ पाई और उनके पति ने उनका बार बार अपमान किया घर वालों के सामने, दूसरों के सामने, लेकिन फिर भी वह ये सब कुछ सहन करती रही। निर्मला जी यह सब सहन कर रही थी। शादी के 2 साल बाद उनके बेटी हुई जिसके होने की खुशी घर में किसी को नहीं थी। निर्मला जी अपनी जिंदगी को जैसे तैसे काट रही थी कि उनके पति अपने दोस्तों के साथ कनाडा चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कोई पत्र व्यवहार नहीं रखा। इधर इनके सास ससुर निर्मला जी को ताने दे रहे थे, उधर उनके पति के जाने का गम। लगभग 4 साल बीतने के बाद अचानक उनके पति घर वापस आते हैं तो निर्मला जी की आंखों में एक आशा की किरण चमक उठी। पर यह आशा की किरण झूठी निकली। उनके पति ने कनाडा में दूसरी शादी कर ली। निर्मला जी के ऊपर तो मानो जैसे पहाड़ ही गिर पड़ा हो। उनके माँ बाप ने भी उनका साथ नहीं दिया। निर्मला जी स्तब्ध रह गई। फिर उन्होंने जिंदगी का अहम फैसला लिया और अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई और जॉब करने लगी। लेकिन जमाने को अपनी दुख की व्यथा कभी नहीं सुनाई और आज अपने आत्मविश्वास के साथ जी रही हैं और अपने विवाहिता के सारे रीति रिवाज निभा रही हैं। मैं उनके जीवन के सारांश को सुनकर अचंभित हो गई। इस समाज में कितने आवरण हैं और इंसान को कभी कभी इस आवरण को लेकर जीना पड़ता है। उन्होंने कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उनके साथ जिंदगी ने इतना गंदा व्यवहार किया। मध्यवर्गीय होकर उन्होंने अपने जीवन के आदर्शों को महत्व दी। उन्होंने एक अच्छी बेटी बनकर दिखाया। अपने आचरण में वे सभी बातें लाई जो उनके माता पिता ने परवरिश में उन्हें दी। कभी भी मायके आकर उन्होंने कभी ससुराल की बुराई नहीं की। हर कर्म को अपना धर्म मानकर जीती रहीं और अपने कर्तव्य का पालन करती रहीं। उन्होंने एक अच्छी बहू बनने का

0: निभाया। सास ससुर के व्यवहार को देखते हुए, अपने पति को दुराचार सहन करते हुए, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी और लगातार खुश रहीं। सारे घर वालों को बेटा चाहिए था, पर निर्मला जी के भाग्य ने फिर उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके कारण उन्हें अपने ससुराल वालों और पति की अवहेलना सहनी पड़ी। पर उन्होंने अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा और जमाने की दुर्व्यवहार को सहते हुए अपनी बेटी की परवरिश करने लगी। उन्होंने एक माँ का फर्ज भी अच्छी तरह निभाया और निभा रही हैं। उन्होंने कभी अपनी बेटी को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वह उसका हर तरह से ख्याल रखती हैं, क्योंकि वह स्वावलंबी हैं। तभी उन्होंने दुनिया को अपने दुख सुनाने से अच्छा अपने ऊपर आवरण ओढ़ लिया, ताकि वह अपने दुखों को उजागर ना करें, बगैर जिंदगी के साथ चल सकें, ताकि जिंदगी में आंसुओं की जगह होठों की मुस्कुराहट निकले। ऐसा जज्बा हर किसी में नहीं होता। बहुत महान है निर्मला जी, जमाने के आत्मविश्वास का आवरण ओढ़े हुए हैं, मन में सुखद एहसास लिए हुए हैं। मैं घर लौट आई, मन में सिर्फ एक ही विचार आया, जिंदगी का आवरण।
1: जिंदगी का आवरण। जी हाँ, अभी आपने सुनी ये कहानी युवा कथाकार अंजलि गर्ग से, आवरण। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है फिल्म संगीत का। इस खूबसूरत रिश्ते में जहाँ एक बच्चा है, एक माँ है, इस पर आधारित ये कहानी, और इसी पर सुनते हैं ये गीत।

अरिजीत सिंह को सुना आपने, लता मंगेशकर को सुना फिल्म संगीत के आज के इस क्रम में। इसी के साथ ये गीत लिए फिल्म लम्हे और यंगिस्तान से, और इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त अनुराग पांडे को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जैसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा

0: कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मदुरोफ के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी है। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

संध्या 6:50 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम लेके आ रही है आपके बीच मृणालिनी दीक्षित, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा पशु आहार में खनिज लवण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। जी हाँ, इस विषय पर रहेगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे विजय कुमार रावत से वार्ता, खरीफ फसलों में कृषि रसायनों के प्रयोग संबंधी सावधानियां। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में ब्रज लोक गीतों का। संध्या 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से और प्रसारित करेंगे। श्रोता सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे, कार्यक्रम शाम सुहानी में संध्या 7:31 पर। जी हाँ, आप कर सकेंगे हमें व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9412255 94122-25575। सुने अपनी फरमाइश के फिल्मी रंग में। फिल्म संगीत का आनंद एक बार फिर से लेंगे आप रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में, और रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने कार्यक्रम में। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

रात्रि 10 बजे आज आप सुनेंगे नुसरत आरा बेगम का लिखा नाटक आंखें खोल गईं। प्रस्तुति डॉक्टर बजबल्लम मिश्री की रहेगी। समय रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार होंगे जितेंद्र अभिषेकी। आप सुनेंगे इनसे ख्याल गायन जो राग जिलाफ में निबद्ध रहेगा। साथ ही सुनेंगे आप भजन पंडित जसराज के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनने जा रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी गौतम से ब्रजवार्ता, ब्रज साहित्य में सद्भावना के स्वर।
1: हमारा विशाल भारतवर्ष एक बृहद लोक है जहाँ अनेक सभ्यताएं एवं अनेक संस्कृतियां अपनी सुगंध प्रकीर्णित करती रहती हैं। कहा जाता है भिन्न है भाषा, भिन्न है वेश, अखंड है राष्ट्र, एक है देश। यानी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न वेश हैं, परंतु हमारा राष्ट्र एक है और एक ही हमारा देश है। इसी भारत वर्ष में है ब्रज 84 कोस और उसका है अपना अवर्णीय साहित्य। ब्रज एवं ब्रज संस्कृति भारतीय संस्कृति की प्राण व अनमोल धरोहर है, जिसका प्रभाव हमारे पूरे देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व पर दिखाई देता है। ब्रज संस्कृति और उससे जुड़े समृद्ध साहित्य के मूल में भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने आपसी सद्भाव, भाईचारे, त्याग का उद्घोषणा की है और उसी भावना को लेकर यहाँ साहित्य का निर्माण होता रहा है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, समाज में जो कुछ प्रतिफलित होता है।

वही साहित्यिक सामग्री का रूप धर लेता है। ब्रजलोक साहित्य में समाज के जीवन दर्शन के संदर्शन हुआ करते हैं। साहित्य समाज का व्याख्याता है, इसलिए समाज में जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ घटित होता है, वही साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। ब्रज साहित्य में यदि सद्भावना के स्वरूप का वर्णन किया जाए तो कृष्णकालीन साहित्य से आज तक इस स्वरूप का दिग्दर्शन भली भांति किया जा सकता है। कृष्णकालीन कथाओं और तत्कालीन परिस्थितियों के साहित्य में सद्भावना को प्रकट होते देखा जा सकता है। इसमें तनिक संदेह नहीं कि लोक साहित्य लोक संस्कृति का दर्पण होता है। लोक जीवन के समरसता और सहजता के समस्त हृदयगत भावों तथा उसकी अनुभूति को लोक साहित्य में देखा जा सकता है। सभ्यता और संस्कृति की अंगड़ाई ने न केवल प्राचीन लोक जीवन के परिदृश्य को बदला है, वरन देशभक्ति राष्ट्र प्रेम को भी प्रभावित किया है। शत्रु देशों की साम्राज्यवादी नीति के कारण सचेत हुए जनमानस की आपसी सद्भाव प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावनाएं साहित्य में भी मुखरित हो उठी हैं। जहां भी सामाजिक विद्रोह और राजनीतिक क्रांति का बिगुल बजा है, वहीं साहित्य के स्वरों ने जनमानस को एक नई चेतना, नई स्फूर्ति, उत्साह, उमंग और राष्ट्रहित की भावना से उत्प्रोत कर दिया है। ब्रज साहित्य में भी यही राष्ट्रीय चेतना के ओजस्वी स्वर जगह जगह परिलक्षित होते हैं। जन जागरण, आपसी सद्भाव, भाईचारे की भावना से ओतप्रोत साहित्य में वीर और महान पुरुषों द्वारा किए गए कार्यों का बड़ा ही योगदान रहा है। वीर बलिदानियों के कार्यों से प्राप्त प्रेरणा के आधार पर राष्ट्रीय प्रेम, सद्भावना, त्याग और बलिदान के स्वर ब्रज साहित्य में उपलब्ध होते हैं। आज भी ब्रजवासी इन गीतों को अपने स्वरों में सजाकर समाज को एक नई दिशा देते हैं, एक नया संदेश देते हैं। हमारे एक कवि साहित्यकार पंडित सांवलदास उप्रेति ने अपनी एक रचना में ब्रिटिश राज के शोषण से पीड़ित भारत माता का चित्र इस तरह प्रस्तुत किया है। अब और जुलम नहीं सहनो, अय हाँ जा कीचक ने रार मचाई, अय हाँ मेरी भूमि भाए पेर आई, अब बेगई मुकुट कराओ। अंग्रेजों ने निष्कंटक राज्य करने को या हिंदू मुसलमानों में भी फूट डालने की कोशिश की, जिन्हें के इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। दे रहो बड़ू भक्ति दुश्मन चौकस रहियो फारे पे, दे रहो बड़ू भक्ति दुश्मन चौकस रहियो फारे पे, जिन्ना कूदई फूक दई, गोरो बड़ो दुश्चार, आजादी देवी कहे परिना खैर खुवार। कहने का आशय ये है कि इन भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य की जो रचनाएं मिलती हैं, वो हमारे आपसी सद्भाव और प्रेम और देश प्रेम को जगाने के लिए पर्याप्त संदेश देती हैं। चीन के भारत आक्रमण पर भी ब्रजवासियों की एकता और सद्भावना को व्यक्त करती हुई ये पंक्तियां जनमानस को झकझोर देती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। आजादी को दीवानो वे ज्वानन ते बोल्यो, आजादी को दीवानो वे ज्वानन ते बोल्यो, आजादी हित प्राण देओ, आजाद वीर बोल्यो, करे के मरो टेक यही, प्राण बलिदान आन यही, सुखी आजाद हिंद जीवे, अमर होए अमृत रस पीवे, आस भारत की आजादी को दीवानो वे ज्वानन ते बोलो। गुलाम भारत को आजादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को व्यक्त करती ब्रजभाषा साहित्य की ये पंक्तियां आज के युवाओं के हृदय में भी उस प्रेम को जागृत करने के लिए पर्याप्त हैं, जो कि इस प्रकार हैं। आजा आजा बोस बंगाली, तेने हिंद की फौज बनाई, दुश्मन ते करी लड़ाई, तेने ईंट ते ईंट बजाई, दुश्मन पे तोप चलाई, आजा आजा बोस बंगाली, तेने हिंद की फौज बनाई, तेने कर दियो बेड़ा पार भारत के हिमताई, आजा आजा बोस बंगाली, तेने हिंद की फौज बनाई। इसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति की मूल भावना तथा उसके उत्थान पतन, आह्लाद विषाद की

भावना से संपूरित ब्रज साहित्य ब्रजवासियों को राष्ट्र हित हेतु सजग करते हुए इस प्रकार की भावनाओं को सदैव उत्प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। सबको रहेगो सिरताज सदा भारत देश हमारो, यानी कि विश्व के सिरमौर के रूप में हमारे भारत की जो कल्पना है, विश्व गुरु के रूप में जो कल्पना है, वो ब्रजभाषा के साहित्य में हमें सहज रूप से दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार भारत भूमि एक है, यहाँ रहने वाले सब आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ रहते हैं। इसी भावना को व्यक्त करती ये पंक्तियाँ दिल को छू लेती हैं। कोई कहता इसे इंडिया, कोई हिंदुस्तान, कोई कहता इसे इंडिया, कोई हिंदुस्तान, भारत में रहने वालों की ये है भारत माँ। वंदे मातरम।

0: भारत में रहने वालों की ये है भारत माँ, वंदे मातरम वंदे मातरम, सोने की चिड़िया है ये भूमि जग नदी उपमा, सोने की चिड़िया है ये भूमि जग नदी उपमा, दिल्ली हृदय बनी राजधानी चरण पखारे सागर पानी, दिल्ली हृदय बनी राजधानी चरण पखारे सागर पानी, जगन्नाथ बद्री रामेश्वर भेंट द्वारका महाकालेश्वर, जगन्नाथ बद्री रामेश्वर भेंट द्वारका महाकालेश्वर, भारतीयों एक सूत्र में अद्भुत काम किया परमेश्वर। कहने का आशय ये कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने की जो भावना है वो यहाँ ब्रजभाषा के साहित्य में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। सभी पड़ोसी बात समारे समाधान मिल बैठ विचारे, ये कैसी पंक्तियां हैं जो आज भी हमारे आपसी सद्भाव को बढ़ाती हैं कि पड़ोसी भी यदि आपस में किसी बात को लेकर मतभेद है, पड़ोसी में भी मतभेद है, तो हम आपस में बैठकर उसका समाधान खोजें। यदि कोई बना मोहम्मद गौरी करे आक्रमण चोरी चोरी, राम कृष्ण की धरती का जलिया बाग न जलने देंगे, वंदे मातरम एक नमन है वंदे मातरम एक हवन है, हवन ये जारी रखना होगा वंदे मातरम कहना होगा, हवन ये जारी रखना होगा वंदे मातरम कहना होगा। इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करता हुआ हमारा ब्रज भाषा का साहित्य इतना समृद्ध है कि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यदि जनमानस को झकझोर हैं तो देश प्रेम आपसी सद्भाव आह्लाद विषाद सभी भावनाओं को वो संपूर्ण संदेश देने में सहयोगी हो सकता है। एक मुक्तक और भी आपके सामने रखना चाहती हूँ जो कि आधुनिक साहित्य की एक रचना है, गीता के शब्द बाइबल कुरान क्या करे, गीता के शब्द बाइबल कुरान क्या करे, गौतम और नानक देव की जुबान क्या करे, जब भावना नहीं तो भगवान क्या करे, इंसानियत है दफन तो इंसान क्या करे, इंसानियत है दफन तो इंसान क्या करे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर लक्ष्मी गौतम से आपने सुनी ब्रजवार्ता, ब्रज साहित्य में सद्भावना के स्वर। इसी के साथ आज का कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संध्या वंदन।

फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों को। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संध्या वंदन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये गीत, फिल्म महिमा काशी विश्वनाथ की, स्वर उषा मंगेशकर और साथियों का।

अभी आपने सुना साधना सरगम को फिल्म मई माँ काशी विश्वनाथ की में। इसी के साथ आज का भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम लेके आ रही हैं आपके बीच मृणालिनी दीक्षित।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को नालनी बहन की राम राम। भैया देखो, जीवन पालन करने के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, स्वस्थ शरीर रहना चाहिए, और स्वस्थ शरीर तो कहो जाए तभी रह सके जब हमारा खान पीन अच्छा होए। और खाने पीने की जब बात आवे ब्रज में, तो भाई बात आवे दूध दही की, कि दूध दही बढ़िया मिलना चाहिए। और कह भी जावे कि ब्रज में तो वही कान्हा की नगरी है, तो दूध दही की तो पार ही ना है, तो दूध दही अच्छा होना चाहिए। तो भैया जब दूध अच्छा होना चाहिए, तो जाके ऊपर बात आवे पशुपालन करने वाले भैया की, कि जो पशुपालन करने वाले भैया हैं, जो दूध उत्पादन को कार्य करे हैं, डेयरी को कार्य करे हैं, उन्हें स्वच्छ दूध उत्पादन करना चाहिए। अब आप कहेंगे बहन जी स्वच्छ दूध का हुए, दूध तो दूध है,

ना भैया, दूध तो दूध है, ये बात बिल्कुल सांची है, लेकिन जरूरी है स्वच्छ दूध उत्पादन। कहने को आशय ये है कि भैया, जैसे दूध जब हम धूमे हैं गैयन को भैंस को जब दूध दुहो जाए, तो भैया वो हाथ पैर बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। क्यों कि तुमने गंदे हाथ से सानी कर रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, बालकनू देख रहे हैं, हाथ ते आज का हो जाए ना गावन में तम्बाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, और भाई यहाँ आते दूध धोवे बैठ गए, तो वो दूध हमारे स्वास्थ्य के काजे, पीवे वाले का के स्वास्थ्य के काजे हानिकारक हुए। पिया जाई के साथ जहाँ बर्तन में हमें दूध धोना हुए, बा बर्तन को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि भाई बा बर्तन को काऊ और प्रयोग में हम ना लाएं, बाकू दूध के काजे ही राख हो जाए। तीसरा भैया हो, जब हम दूध धोएं तो हमारी चाहे पोए हुए, गाय हुए, भैंस हुए, कोई भी हुए, बिना उनके थनन को धोकर साफ कर लेना चाहिए। चौं अगर हम नाए करें तो भैया देखो, दिन भर दूध है, दूध में मिठास तो हो गई है, तो बिन के थन में माखी उलग जाएं, कीड़े उलग जाएं, कबू कबू गोबर करें, मलमूत्र त्यागें, तो बिन को छीटा हुआ आ जावे, तो वो थन में गंदगी लग जाए। तो थन को जैसे आप हमारे बहुत से ऐसे पशुपालन करने वाले भैया हैं, थन को जोगे बहन जी पानी से धो तो लियो, नहीं भैया बहुत अच्छे तनिया से धोकर साफ करना चाहिए। पर दोनों के काजे लाभकारी है, पशु के काजे भी लाभकारी है, उनके स्वास्थ्य के काजे भी, और हमारे खुद के स्वास्थ्य के काजे भी लाभकारी है। अगर दूध हमें अच्छा और साफ सुथरा मिलेगा तो हमारे स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा। तो थन को धो लेना चाहिए, गुनगुने पानी से धो के साफ कर लेना चाहिए, हाथ में हल्की सी ग्रीसिन लगा लेना चाहिए, थन में चोट ना लगे जा बात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातन को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें स्वच्छ दूध उत्पादन मिलेगा। दूध लेवे जा भैंस से चाहे पुअन से दूध ले रहे हैं, बा भैंस से इंजेक्शन ना लगाना चाहिए, जाके दूध अच्छा और स्वस्थ निकले। तो वह दूध को अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारे स्वच्छ दूध उत्पादन होगा, गाय को चारा बढ़िया मिलना चाहिए, भूसी मिलना चाहिए, दाना मिलना चाहिए, जैसे कि दूध अच्छी मात्रा में और स्वच्छ मिले, बढ़िया मिले, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हुए। अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हम जरूर स्वच्छ दूध उत्पादन करेंगे। भैया ये तो रही आज की चर्चा, लेकिन आप तो जाने ही हैं, चौमासे चल रहे हैं, सावन का महीना चल रहे हैं, और सावन को तो आनंद ही कछु और है। तो सावन में तो कहो जाए ना, पियर की याद भी आवे, बट्टार की याद भी आवे, तो आनंद ले जा सावन लोकगीत को कीर्ति शर्मा के स्वर में।

0: भैया अभी आप आनंद ले रहे कीर्ति शर्मा के सर में जा लोकगीत को सावन सुनो लग रहे हो जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको जानकारी दे पाएंगे डॉक्टर एस के थापा से, दलहन में आत्मनिर्भरता का मिशन, इनसे बातचीत कर रहे हैं दिलीप यादव।
1: हमारे संघ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि भारत सरकार को अंग है और एडीजी दलहन तेलहन डॉक्टर एस के झा साहब। निश्चित रूप से दाल और दाल को तड़का समूचे देश में चाहे वो दक्षिण हो उत्तर हो पश्चिम हो पसंद किया जाए, लेकिन दलहन की उत्पादन की स्थिति, किसानों की समस्या है, बाजार की स्थिति, नई किस्मन की स्थिति कहाँ है, ये समझे जाने डॉक्टर साहब।
2: किसान भाइयों, जहां तक दलहन की का प्रश्न है, हमारे आपके जीवन में नित्य हम दाल का सेवन करते हैं क्योंकि इससे हमें प्रोटीन मिलता है और हमारे देश में प्रोटीन के लिए ये मुख्य साधन है दाल। तो अब दाल की खेती तो वर्षों से चली आ रही है हमारे आपके बीच में, लेकिन जितनी मात्रा में हमको जरूरत है पूरे देश में उतनी मात्रा में हो नहीं पाती है, जिसके कारण सरकार ने कई तरह के मिशन चला रखे हैं। बहुत दिनों से मिशन्स भी चल रहे हैं, अभी जो नवीनतम एक मिशन चलाया गया है आत्मनिर्भरता का मिशन। तो दलहन में आत्मनिर्भरता का मिशन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2030-31 तक, यानी कि अब से लेके और 4-5 सालों में हम जो अपनी वास्तविक जरूरत है उस जरूरत को पालेंगे। और उस जरूरत को पाने के लिए जो मुख्य रूप से हमने देखा है आत्मनिर्भरता, तीन दालों में नहीं थी, एक तो तूर की दाल, दूसरी उड़द की दाल और तीसरी मसूर की दाल। यही तीन दाल हैं जो हम बाहर से मंगाते हैं। तो बाहर से मंगाते हैं, अब उन देशों में जो समस्याएं हो सकती हैं तो हमारे देश में भी वो आना मुश्किल हो सकता है। तो इस वजह से हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि किसान भाई सब मिलकर के इन तीनों दालों के लिए अच्छा पैदावार करें। तो जिसके लिए, जो किसान भाइयों, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अच्छी किस्म का बीज। तो ये निर्णय लिया गया है कि पिछले 5 सालों में, नवीनतम 5 सालों में, वैसे तो लगभग 1300 किस्में दाल की आज तक हम लोगों ने विकसित करी हैं और उसमें से करीब करीब 450 दाल की किस्में ये 2014 से 2025 के बीच में ये हमने करीब 450 दाल की किस्में आई हैं। लेकिन जो निर्णय लिया गया है कि नहीं, इतने पुरानी भी नहीं, जो 5 साल की किस्में हैं इन तीनों फसलों की, उनके बीज बहुत अच्छी मात्रा में तैयार करवाए जाएं और किसानों के बीच में इनका वितरण किया जाए, मिनी किट के माध्यम से किसानों को ये बीज दिए जाए। तो एक तो आप सबसे पहले कृषि विभाग के साथ जुड़ जाइए, जहां ये मिशन चलना शुरू हो चुका है, अब तो 1 साल बीत गया, बल्कि आप कहें कि 2 मौसम बीत गए, रबी 2025-26 और ये खरीफ 26-27 ये वर्ष का, अब 2 मौसम चला गया। इसमें हमने 2 खरीफ की फसलें हैं, इसमें तुर और उड़द और जो एक है मसूर, वो रबी की फसल है। तो इस तरह से हमारे कार्यक्रम में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ये सिर्फ बीज बदलने से, अच्छे बीज लगाने से कम 15-20% पैदावार बढ़ी जा सकती है। इसके अलावा जो बहुत सारी तकनीकी की बात की जाती है, सिंचाई की बात की जाती है, तो जो इसमें गुण है, इसमें एक सबसे बड़ा गुण दलहन में क्या है कि ये अपने लिए नेत्रजन यूरिया ये खुद बनाती है, तो काफी मात्रा में आपके यूरिया की बचत हो जाती है, यानी नेत्रजन जो उर्वरक आप देते हैं वो आपको दाल में कम देना पड़ता है, बहुत कम। तो ये एक बात है। तो अब उसके लिए भी क्या होता है कि राइजोबियम कल्चर मिलाना आवश्यक है, तो राइजोबियम कल्चर मिलाएं, बीज में नवीनतम बीज रहेगा उसमें राइजोबियम कल्चर रहेगा। इसके अलावा दालों में हम देखते हैं कि जो बहुत सारे इलाकों में जिंक और ये मोलिब्डेनम, इन सब तत्वों की भी कमी हो गई है हमारे खेतों में, तो उनके लिए भी हमारे तरफ से ये अनुशंसा रहेगी कि इनका भी उपयोग किया जाए, गंधक है इनका भी उपयोग किया जाए। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं सिंचाई।

0: हर फसल को, किसी फसल को ज्यादा, किसी को अगर एक या दो, तो आप एक या दो क्रांतिक अवस्था है इसकी। वो क्रांतिक अवस्था आप भी समझेंगे जब हम फूल की अवस्था में जाएंगे या जब हम फली की अवस्था में जाएंगे, ये सब क्रांतिक अवस्था है। कम से कम एक दो सिंचाई भी आवश्यक है। तो इन सब चीजों के लिए भी आपको पूरी तरह से सूचना दी जाती रहेगी। इसके अलावा
1: मार्केटिंग की जो बात है, हाँ, बाजार की हमारी,
0: वो बहुत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मार्केटिंग की मैं आप बात करता हूँ, बिना मार्केटिंग के ये कुछ नहीं होगा। किसान भाइयों के लिए ये एक व्यवस्था खास तौर से की गई है कि आप, दो संस्थाएं हैं ऐसी जिन्होंने अपना अपना पोर्टल बना रखा है। आजकल आप डिजिटल एग्रीकल्चर हो गया है, वो एक संस्था का नाम है नेफेड और दूसरी संस्था का नाम है NCCF। आप अगर दाल उगाने वाले किसान हैं, और ये तीन दाल उगाने वाले किसान हैं, मसूर, उड़द और तुर, तो आप अपना पंजीकरण करा लीजिए। अपना नाम, किस इलाके में रहते हैं, किस जिले के हैं, कहां पर आप खेती करते हैं, कौन सी फसल की खेती करते हैं दाल की, आप, ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपसे जो है 100% शत प्रतिशत जो उत्पादन आपका होगा इन तीनों दालों में, वो ये दो संस्थाएं खरीदने के लिए इनको पाबंद किया गया है। इनके पास पैसे दिए गए हैं कि आप खरीदेंगे, क्योंकि हम बाहर से जब मंगाते हैं, आयात करते हैं, तो वहां तो मुफ्त में आ नहीं, वहां भी तो पैसे दिए जाते हैं, तो क्यों ना हम अपने किसान भाइयों से ही खरीदें। तो इसलिए ये एक बहुत आवश्यक बात हो गई है इस मिशन के तहत, जिसमें आपको सबसे पहले 5 साल की जो नवीनतम किस्में हैं वो दी जाएंगी, फ्री में दी जाएंगी, बहुत सारे किसानों के बीच में इस तरह का वितरण किया जाएगा, लाखों किसानों के बीच में इसका वितरण किया जाएगा। पर्याप्त पैसा रखा गया है इस मिशन में, और ये करीब करीब 11,440 करोड़ रुपए का मिशन है। तो मैं समझता हूँ ये 5 साल में 11,440 करोड़ का मिशन, जिसमें आपको इसके अलावा भी ये बाजार वाला भी जो काम है जिसमें आपसे खरीदा जाएगा, तो इन सब के लिए भी प्राइस सपोर्ट स्कीम अलग से भी दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस मिशन के माध्यम से जो भी कमियां हैं, कई बार किसान भाई इसी बाजार की वजह से दाल छोड़ करके कोई और फसल ले लेते हैं, दूसरी फसल, कोई मक्का ले लेता है, कोई और फसल ले लेता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारत के इस आत्मनिर्भरता वाले मिशन में, दाल के लिए जो मिशन चलाई गई है, उसमें आप भी जुड़ जाइए, आप भी अपना लाभ कीजिए, और बिना दाल के तो रोटी कैसे खाएंगे, और पूरे देश को इसकी आवश्यकता है, उसमें अपना योगदान दीजिए। मैं समझता हूं कि किसी भी तरह की आपको कोई और जानकारी की जरूरत हो, तो जो कृषि विभाग है आपके जिले में, वहां ये तमाम जानकारियां हैं। कृषि विज्ञान केंद्र है किसी जिले में, वहां भी तमाम जानकारियां हैं। और मैं कहूंगा कि ये आप लोगों को जब कभी भी किसी तरह की कोई जानकारी की आवश्यकता हो इस मिशन से रिलेटेड, कि इस मिशन में और क्या चीजें हुई हैं नवीनतम, तो मैं आपको बेहिचक खुशी खुशी आपको किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए तैयार रहूंगा। तो धन्यवाद।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो किसान भैया, दलहन से जुड़ी हुई जानकारी डॉक्टर एस के झा साहब ने दी। निश्चित रूप से दलहन की खेती अगर आपको करनी है, तो आपको कैसे निःशुल्क बीज, मिनी किट, ये सब कैसे प्राप्त होगी, आप सीधे सीधे इनके माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी नजदीकी जो कृषि रक्षा इकाई है हर ब्लॉक स्तर पर, वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद
2: भैया। अभी आप जानकारी ले रहे दलहन में आत्मनिर्भरता का मिशन, जानकारी दे रहे डॉक्टर एस के थापा, और इनसे बातचीत कर रहे दिलीप यादव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आनंद दिला रहे हैं श्री बाबू कौशिक के स्वर में, जा सावन लोक गीत को।

0: भैया अभी आप आनंद ले रहे श्री बाबू कौशिक के स्वर में जा लोक गीत को सावन की आधी रात। भैया कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको जानकारी दिलवा रहे हैं विजय कुमार रावत से। खरीफ फसलों में कृषि रसायन के प्रयोग में सावधानी।
1: आपको मालूम है खरीफ फसलों में जैसे धान बाजरा मक्का ज्वार उर्द मूंग आदि में कीड़ों तथा खरपतवारों का अत्यधिक प्रकोप होता है। बरसात अधिक होने के कारण इतना समय नहीं मिल पाता है कि खरपतवारों को निराई गुड़ाई के द्वारा

द्वारा मुख्य फसलों से अलग किया जा सके तथा कीड़े मकोड़ों का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण उन्हें नियंत्रित करने के लिए कृषि रसायनों की आवश्यकता अत्यधिक रहती है। ऐसे में कृषि रसायनों का प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यदि इनका प्रयोग सावधानी से नहीं किया गया तो यह प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए तथा हमारी बहुमूल्य फसलों के लिए भी घातक हो सकते हैं। कृषि रसायनों का यदि फसलों के ऊपर सही समय पर सही मात्रा में एवं सही तरीके से प्रयोग किया जाए तथा प्रयोग करने वाला सावधानी बरते तो कृषि रसायनों से अपेक्षा अनुसार परिणाम मिलेगा तथा प्रयोग करने वाले व्यक्ति को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। रसायनों के सही समय पर प्रयोग करने से मतलब है कि यदि खरपतवारनाशक रसायनों का प्रयोग खरपतवारों पर किया जा रहा है तो निर्माता अनुसार सिफारिश की गई फसल की अवस्था अनुसार खरपतवारनाशक रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात यदि किसी फसल के उगने के 25 दिन बाद किसी खरपतवारनाशक रसायन की सिफारिश की जाती है तो उस रसायन का प्रयोग 25 दिन के आसपास अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि 25 दिन से अधिक पहले रसायन का प्रयोग किया जाता है तो उस समय खरपतवारों की पत्तियों तथा जड़ों का पूर्ण विकास नहीं हुआ होता है। ऐसी परिस्थिति में खरपतवारों के द्वारा रसायन का अवशोषण नहीं हो पाएगा तथा खरपतवार पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाएंगे तथा यदि खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग निर्धारित समय के बाद किया जाता है तो खरपतवारों में सेलुलोज की मात्रा बढ़ जाएगी तथा वे सख्त हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में भी खरपतवारनाशी रसायनों से उचित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि किसी भी खरपतवारनाशी रसायन का प्रयोग उचित समय पर निर्माता द्वारा सिफारिश की गई फसलों के उचित समय पर निर्माता द्वारा सिफारिश की गई फसलों के ऊपर प्रयोग करना चाहिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
6: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
5: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
6: कहाँ से पता चलेगा?
5: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
7: आज ही सर्च करूंगा।
5: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जनपद ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे वर्चुअली संवाद। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। क्षेत्रीय सम्मेलन में युवाओं से सजग मतदाता बनने का किया आह्वान। ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। और सावन माह के अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रायबरेली में 879 करोड़ रूपये से अधिक लागत की 346 विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे के आवंटन पत्र भी प्रदान किये। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रायबरेली के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। श्री योगी ने कहा कि इसी फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने की वजह से आज रायबरेली का नाम पूरे देश में गौरव के साथ लिया जा रहा है।
1: इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2156 कोचेज का निर्माण किया और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है और पहली बार मई

0: प्रोडक्शन है और पहली बार मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वंदे भारत ट्रेन बनी है। वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। अब रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायबरेली में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृति सभागार का लोकार्पण किया। साथ ही डाक विभाग की ओर से तैयार किए गए विशेष आवरण का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के करीब 150 संस्थानों समेत देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम के तहत युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को खेल, फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। श्री पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा।
2: मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है 29 तारीख को, उसको इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को सेलिब्रेट करते हुए वर्चुअली इंटरेक्शन करेंगे। हमारे देश के सारे युवाओं से जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम फिट होकर एक विकसित भारत में एक युवा अपना योगदान दे सकता है, कैसे नशे से हम युवा को दूर रख सकते हैं अगर उसको हम खेलों की तरफ मोड़ते हैं।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। दौरे के पहले दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता साक्षरता क्लब और ईसीआई के नेट ऐप को लेकर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पारंपरिक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब को मतदाता जागरूकता और चुनावी शिक्षा के लिए एक मजबूत मंच में बदलने के लिए एक सशक्त और सक्रिय पहल की है। श्री कुमार ने कहा कि आज के संवाद ने इस बात की पुष्टि की है कि छात्रों को चुनावी प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता की अच्छी समझ है और वे लोकतंत्र में भाग लेने पर गर्व महसूस करते हैं।
3: 20 जिलों से आए हुए प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और छात्राओं के साथ संवाद से इस बात की आश्वासना मिलती है कि हमारे छात्र और छात्राओं को चुनावी प्रक्रिया का पूरा ज्ञान भी है और उसकी पारदर्शिता और उसमें उनकी सहभागिता के ऊपर उनको नाज भी है। भारत के चुनाव संविधान, कानून और निर्देशों के तहत ही होते हैं। इसी पारदर्शी प्रक्रिया को छात्रों ने स्वयं देखा।
1: लखनऊ के क्षेत्रीय सम्मेलन में शाहजहांपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ, अमेठी समेत 20 जनपदों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और मीडिया नोडल अधिकारी और लगभग 1500 विद्यार्थी, शिक्षक और संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लखनऊ के कॉलविन तालुकेदार्स कॉलेज में देश की लोकतांत्रिक प्रणाली, चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम की विश्वसनीयता और युवा मतदाताओं के महत्व पर छात्रों के साथ संवाद किया। ईवीएम को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीनें इंटरनेट या किसी भी वायरलेस तकनीक से नहीं जुड़ी होती हैं। उन्होंने छात्रों को फेक न्यूज से सतर्क रहने की सलाह दी। श्री कुमार ने छात्रों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित ये क्षेत्रीय सम्मेलन लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कल लखनऊ और आसपास के जनपदों के लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में आज 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलीला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन

0: नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स एक विचार से आगे बढ़कर उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रमुख मंचों में शामिल हो गया है। जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सतत विकास को लोगों और समुदायों की जरूरतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और सामुदायिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का आयोजन लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक किया जा रहा है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सावन माह के अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में चरणबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। बाराबंकी स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए उरई, जालौन, झांसी, बिठूर, कानपुर समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उधर वाराणसी में तड़के मंगला आरती के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए खोल दिए गए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को काशी हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंज उठी। श्री काशीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों भक्त रविवार रात से ही गंगा स्नान कर कतार में लग गए, जबकि कांवरिये बोलबम का जयघोष करते बाबा के दरबार की ओर बढ़ते रहे। भीड़ को देखते हुए धाम में जिग जग बैरिकेडिंग, छाया, पेयजल, मेडिकल कैंप और खोया पाया केंद्र की व्यवस्था की गई थी। रात्रि में भोग श्रृंगार आरती से पूर्व बाबा की रजत चल प्रतिमा गर्भगृह में विराज मानकर भव्य श्रृंगार किया जाएगा। आरती के बाद श्रद्धालु बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जनपद ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे वर्चुअली संवाद। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। क्षेत्रीय सम्मेलन में युवाओं से सजग मतदाता बनने का किया आह्वान। ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। और सावन माह के अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शाम सुहानी। जी हाँ, आप भी सुन सकते हैं कार्यक्रम में अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। करें हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410022575। 94 122 25 575।

कार्यक्रम श्याम सुहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत। आपके साथ मैं हूं आज आपका रेडियो दोस्त अनुराग पांडे। श्रोता साथियों के आ रहे हैं व्हाट्सएप संदेश।

हमारा व्हाट्सएप नंबर 9412225755। व्हाट्सएप संदेश के साथ में श्रोता साथी जुड़े हैं कार्यक्रम में। आप हैं नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज पीआर जैन का संदेश मिला आप जुड़े कार्यक्रम में। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरदीन फरहान, फारिया और ताहिरा का ये संदेश। और आप मैसेज में जुड़े मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान, अनुराग बेनारा आप भी कार्यक्रम में। सागर लखना दौन से है मध्य प्रदेश से लाडली जी चौबे रिमझिम और सक्षम चौबे का संदेश है। बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद से है बेबी शालिया खत्री, बेबी हलीमा और बेबी जिक्रा खत्री का संदेश मिला आप जुड़े मैसेज के साथ में। श्रोता साथी पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा चेतन और सुलोचना भगत का संदेश। और आप जुड़े मुंबई से ये श्रोता साथी और जुड़े कार्यक्रम में गांव चांदुरा बिस्वा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से राज गवई, राजवीर गवई का संदेश मिला। आप नांगलोई दिल्ली से हैं मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। श्याम सोनी कार्यक्रम में जुड़े हैं करमुला ठेकेदार, नसीम बेगम और मुर्तुबा खान, आफिया खान, शुएब खान ये सभी कार्यक्रम में जुड़े हैं सरोज चौक अमरावती से। एक संदेश के साथ में खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष, लाडो कोयल, नाना चंद मल्होत्रा, शिवा कॉलोनी से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भविका सिक्का का भी संदेश मिला। भोपाल का राजस्थान से है श्रोता धर्मेंद्र, कपिल चिप्पा, ईशान और पूजा परिहार आप भी जुड़े कार्यक्रम में। महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी और राजनू मैडम ये तीनों बहनों का संदेश मिला और आप भी जुड़े कार्यक्रम में मैसेज के साथ में। शंकरलाल जायसवाल, गणेश जायसवाल, शुभम जायसवाल और ये इनके परिवारी जन के साथी जुड़े हैं कार्यक्रम में। आपका मैसेज भी मिला देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल, रजक, मुरली, क्षत्रिय आप जुड़े। नई बस्ती गंडुड़ावारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी कार्यक्रम के साथ में। गांव गोपी की नगरिया से मिट्टन लाल सारस्वत, नेहा नीरज, निकिता मार्ट में ये परिवारी जन इनके। गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानुप्रिया, रामानुज, राधिकी, पवन, करण, नमन, भोला, डुग्गू और इनके परिवारी जन। गांव नौगरा से कोमल मास्टर, जशोदा, सूरज, रोहित, चंचल, अंजना और इनके मम्मी पापा। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से हैं अजीत, अमित, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और इनके परिवारी जन। अगले संदेश के साथ में है ये सुधी श्रोता। आप जुड़े हैं कार्यक्रम में ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत, परवीन, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान, अब्बासी परिवार का कार्यक्रम में जुड़ चुका है और आप भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। ये संदेश हम तक राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार का जुड़ा है हमसे और आप भी जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में। मैसेज में मोहाली पंजाब से बब्बन मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा कार्यक्रम में। शिगांव गोंदली से उषा गोंदली, शिगांव से है श्याम गोंदली, कोपरगांव से सुरेश मलोदे और वर्षा मलोदे का ये संदेश मिला है। और कार्यक्रम में आपने अपने संदेश में अपनी फरमाइश हम तक भेजी। आप सभी सुधी श्रोताओं की फरमाइश पहले ही सुनते हैं कार्यक्रम में। फिल्म नगीना से ये गीत आवाज दे रहे हैं इस गीत को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश। आप भी जुड़े कार्यक्रम में। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई, आपका जलगांव जंक्शन से संदेश मिला। दिनेश काले, वंदना काले, आदेश काले, प्रोफेसर जी हाँ प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का भी संदेश हमसे पहुंचा हम तक। राजकोट गुजरात से हैं रश्मि झरना और भरत कुमार, एक और संदेश के साथ में ये सुधी श्रोता जुड़े हैं। खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ो खेड़ा, शालनी टिवांशी, आरबी खेड़ा, वाणी, जीवन सिंह बुक और सब परिवार है इनका। फजिल का पंजाब के सुधी श्रोता है संदेश के साथ में। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी राय कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़े हैं कार्यक्रम में अपने संदेश के साथ में।

सुधी श्रोता कार्यक्रम में आपने संदेश भेजा पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवान, संगीता लिपि और दीपाली गोप का संदेश मिला। दत्तरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोकीलाल वर्मा जुड़ चुके हैं। और आप भी संदेश कलन और हरियाणा से हम तक भेजते हैं। नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा उत्तम नगर दिल्ली से। गीतका खोरवाल, बोधराज, कमला, भानु, प्रकाश गौतम, गजानन एले, नवदीप एले, विश्वदीप एले, अशोक एले, शेरी बंडे रघुला से, अरुणा बलदेव, दामोदर आदित्य दामोदर का हम तक संदेश। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा। एक और मैसेज के साथ में रविंद्र मोहनदास, आशा, राघव कुमार, भानुप्रिया, देवाशी मेघा और अनुराग मोहन जिला किशनगंज बिहार से संदेश भेजते हैं। अगली दीवान मध्य प्रदेश से हैं रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी और दिलीप कुमार चंद्रवंशी। मैसेज के साथ में सुधीश होता कलन और हरियाणा से नरेंद्र, किरण और नितिन और मयंक शर्मा का संदेश मिला। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार और आरती कुमारी भी जुड़े कार्यक्रम में। जिन भी सुधी श्रोताओं का मैसेज कार्यक्रम में शामिल है वो दोबारा संदेश न भेजें। आप जुड़े कार्यक्रम में बिरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करम कर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनिया करम कर एक मैसेज के साथ में। पटिया वाली रोड डुड़वावारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज अरीबा, हबीबा, कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता पिपरिया से संदेश भेजते हैं। शर्मा परिवार भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश और गौरव शर्मा का ये संदेश मिला। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी इदरिश और गुरनमा। आप जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में बाजार रोड मुगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शुभिस्ता मोहम्मद, पलक और लुबना यश मंसूरी, सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना, बुशरा, गुलिस्ता, नंदनी और अंजलि कृष्णा की नगरी मथुरा से ये संदेश हम तक पहुंचा। आप भी जुड़े कार्यक्रम में झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया का मैसेज में। चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार पटवा, विनीत और कुमारी कृष्टी पटवा धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से हम तक अपना संदेश भेजते हैं।

मैसेज के साथ में है अपने रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा। मैसेज में आप हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज, भानु प्रकाश, जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी, मुकम्मम पोस्ट फुल चिंचोली के हैं ये सुधीर श्रोता। और ये सुधीर श्रोता हैं रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, योगेश, संध्या कीर्ति और डिकेश साहू का संदेश मिला है। सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने, हीरा माणी, प्रणय और प्रतिभा गुणाने हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। आइए सुने सुधीर श्रोताओं की पसंद पर गाना फिल्म फकीरा से। स्वर दे रही है गीत को हेमलता, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

और अभी आपने सुना इस फिल्म से हेमलता ने दिया इस गीत को स्वर, फिल्म फकीरा से ये गीत।

कार्यक्रम में जुड़े हैं सुधी श्रोता व्हाट्सएप संदेश के साथ में आप हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित राज पीयूष कुमार का ये मैसेज मिला। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव अनिता आरती प्रसाद सोनल बिबिसिया जाधव जालना शहर से सोमनाथ जाधव गीता ओम जाधव सुभाष चंदन और एकनाथ जाधव का भी ये मैसेज मिला। और आप जुड़े कार्यक्रम में आरती आराध्या विजय सोनकर महाराष्ट्र से ये कार्यक्रम। खमरी छत्तीसगढ़ से साबित धर्मेंद्र सावित्री और प्रतीक कुमार जुड़े कार्यक्रम में। बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित लकी तनिया का भी मैसेज मिल चुका है और आप भी जुड़ चुके हैं। गांव पाटर कवड़ा से हैं अनिल बुराड़े उषा अनुश्री और धनश्री बुराड़े। एटा रोज गंडुड़ा वाला उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम सरिता गौतम अगले संदेश के साथ में श्रोता साथी हैं। मैसेज में गांव शुभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। आइए सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला नगमा। आवाज इस गीत में आशा भोसले और साथियों की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देव वर्मन का।

आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में, और आई सुना किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में, गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और इसके बाद उन सुधी श्रोताओं के नाम जिनने फरमाइश करी इस गीत को सुनने की।

हम तक फरमाइश पहुंची जिन श्रोता साथियों की, आप जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में राहुल चौधरी एडवोकेट का ये संदेश मिला कैलाश नगर मथुरा से, और आप जुड़े सुधीश्रोता भाई पैठण से, महादेव परदेसी शेख चांद शेख अदनान का भी संदेश मिला, और आप जुड़े कार्यक्रम में भागवत जेठे पाटिल लक्ष्मी जेठे पाटिल धामड़ गांव महाराष्ट्र के सुधीश्रोता हैं, और आप बालकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद राजेंद्र उमेश पमेला पंचोर गांव पंचायत बठेना पाछन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हम तक संदेश भेजते हैं। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम अमजद अली लाल ने भी हमें संदेश भेजा। अगला संदेश ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर आई मेरा जहां का था, ये संदेश हम तक पहुंचा आज़ाद नगर लक्सर हरिदुर्ग जी हां उत्तराखंड हरिद्वार से ये सुधीश्रोता। एक और मैसेज के साथ में उत्तम कुमार भगत श्वेता किसु अर्णव सत्यमानंद पाकुड़ झारखंड से मैसेज करते हैं। एस एम जावेद शगुफ्ता अंजुम नजमुल हौदा गुमला झारखंड के श्रोता। कार्यक्रम में जुड़े वीना मस्कीन आशीष राजा तुलसी चैतन्य मेघा और डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता संदेश के साथ में है। कानगुला गोपाल महेश्वरी पवलिका विष्णुवर्धन विघ्नेश का करताल हैदराबाद तेलंगाना से ये संदेश। तुलसी मस्कीन वीना आशीष चैतन्य मेघा मस्कीन गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से अगले संदेश के साथ में। जॉन डिकस्ट्रो रोजी पॉल और विलिस डिकस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से संदेश भेजते हैं। आपका भी संदेश मिला जिला मुरादाबाद गांव दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरहान सलमान इरफान इसरार जुड़े थे कार्यक्रम में। के एच राही गुड़िया बेगम वकील हमदाद जमील तहसील लोज गंजुड़ावारा के सुधीश्रोता। कार्यक्रम में शिरकत करी गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार डैनी और मनीष पवार ने कार्यक्रम में आनंद लेके। जी टी वी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से हैं। हिना शकीला जैस्मीन राजिया सुल्ताना अख्तार अंसारी मोहम्मद जावेद अंसारी और इनके परिवारिक जन। गांव लोहड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से हैं जयपाल यादव इंद्रपाल यादव रागेंद्र रागनी दिव्यांशु और आराधना। सैयद आलम हाशमी गुलनाज असद अरहम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी का भी नाज पैलेस अजमेर शरीफ से ये संदेश मिला। आप जुड़े गार्डन पैठण से बाबा साहेब सरगर ज्योति सरगर शुभम और महेश सरगर रेणुका शिगोका।

विजय शिगुकार ऋषिकेश जयशी और देव शिगुकार ने पलसी बुजुर्ग महाराष्ट्र से कार्यक्रम में संदेश भेजा। राम दुलारी प्रजापति राम शरण चंद्रेश चंद्रकला और शशिकांता का संदेश आप जुड़े बुराला खुर्द से आदिनाथ पाटिल अमोग गुड़िया और अशोक देशमुख।

इसी के साथ आज का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त अनुराग पांडे को। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म हाथी मेरे साथी से ये गीत, स्वर मोहम्मद रफ़ी का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल को फिल्म जब वी मेट में, गीत इरशाद कामिल का, संगीत प्रीतम का।

बोल इरशाद कामिल के, संगीत प्रीतम का, आवाज दे रही थी गीत को श्रेया घोषाल, फिल्म जब वी मेट के लिए। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत क्रिएचर 3D। जी हाँ, इस फिल्म से यह नगमा और आवाज दे रहे गीत को अरिजीत सिंह, गीत संगीत टोनी कक्कड़ का।

अभी सुन रहे थे आप अरिजीत सिंह को फिल्म क्रिएचर में। गीत संगीत टोनी कक्कर का था और अगले गीत की फरमाइश, जी हाँ, आप सुने गीत फिल्म राज से, स्वर दिया इस गीत को अलका याग्निक ने।

समीर के गीत को संगीत दिया नदीम श्रवण ने, और आवाज़ दे रही थी इस गीत को अलका याग्निक। फिल्म राज से था ये गीत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेश्वर में देशगान FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म राज। आइए सुनते हैं फिल्म से चंद नगमे। ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में

गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का, आवाज़ दे रहे थे गीत को उदित नारायण और अलका याग्निक। आइए सुने कार्यक्रम में अगला गीत अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आज की फिल्म थी राज। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ @9, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
2: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
1: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने

0: कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
1: We are a young country.
2: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
2: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
3: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत

0: प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने

0: पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 गोल से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत ये टीम सातवें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जल स्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Peking for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. The Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary ERS, Mayank Singh, were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jayashankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jayashankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, the Russian President offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. The Russian President credited Prime Minister Narendra Modi for the growing partnership between New Delhi and Moscow. He said, External Affairs Minister's visit underscores the level of relations that has been established between

फिल्म फकीरा में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। सुहाने तराने कार्यक्रम का अगला गीत लेते हैं फिल्म सुहाग से, आवाज़ें शशि कपूर और आशा भोसले की। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को शशि कपूर को फिल्म सुहाग में, और अगला गीत लता मंगेशकर मनोहर उदास के स्वर में फिल्म हीरो से।

लता मंगेशकर, मनोहर दास को अभी आपने सुना फिल्म हीरो में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इसी के साथ कार्यक्रम सुहाने तराने अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

है तो क्या उनके पास हुनर है? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर डिग्री नहीं भी है तो आप स्किल सीखकर आप रोजगार हासिल कर सकते हैं।

0: बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आज बुलाने के लिए।
0: और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री प्रशांत सिन्हा जी। प्रशांत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
0: और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं। नंबर है 0112331 0418 0112371717 0112371716 और 0112331 4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। आप #AskAIR के साथ एक्स पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मानसी जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कौशल विकास क्या है, यानी स्किल डेवलपमेंट क्या है और इसमें कौन सी सरकारी योजनाएं आती हैं?
1: धन्यवाद जी। सबसे प्रथम तो आपने जैसे शुरुआत की थी कि कौशल विकास वो है जो अपनी हुनर को निरंतर तौर पर तराशना और उसे बेहतर करना, इसको हम कौशल विकास कहते हैं। इससे हमें ये मिलता है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको करना आना चाहिए। केवल, जैसे आपने ठीक बोला, एक होता है डिग्री लेना, दूसरा होता है वो कौशल प्राप्त करना, वो हुनर प्राप्त करना जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारे मंत्रालय ने बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हैं चला रहे हैं हम लोग, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत से ऐसी योजनाएं लाए हैं जो रोज़मर्रा जिंदगी में अलग अलग स्तर पर आपके कौशल को कैसे बेहतर किया जा सके उस पर काम करते हैं। चाहे वो स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, जिसके तहत हम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म

0: ट्रेनिंग्स दे रहे हैं हम लोग 3 से 6 महीने के, साथ ही हमारे पास जन शिक्षण संस्थान है जो निचले स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं उनको कैसे हम कौशल प्रदान करें, और वो हम लोग ये भी प्रदान करें कि वो कुछ अपने ज़िंदगी में एम्प्लॉयबल हो पाएं या कुछ पैसे कमा पाएं। और वैसे ही हमारा एक ITI इकोसिस्टम है जिसपे हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से कौशल दे रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत से हमारी योजनाएँ भी हैं। तो इस प्रकार से हर स्तर पर अलग अलग लोगों के लिए उनके ज़रूरतों के हिसाब से हमारा मंत्रालय अलग योजनाएं प्रदान कर रहा है
1: जी। अच्छा प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे भी एक है कि जो NSDC है वो कौन से स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें तुरंत नौकरी मिल जाती है?
2: जी, इसको एक परिवेश में समझना होगा। कोई भी बच्चा जब आता है तो उसकी एक कार्य क्षमता होता है, उसकी एक इंटरेस्ट होती है, वो क्या लाइफ में आगे करना चाहता है, कहाँ काम करना चाहता है। तो ये बस इस चीज़ के इसको इस तरह से सिर्फ नहीं देखा जा सकता कि कौन से सेक्टर में नौकरियां ज़्यादा मिल सकती हैं, इसको एक पूरी तरह से एक कंप्लीट परिवेश में देखना पड़ेगा। बट कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो कि हमारे देश में थोड़ा जॉब के मामले में अच्छे कर रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, देश में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रियल स्टेट है, बाकी जगह भी है, तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी नौकरियां हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर, ऑटो में, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी नौकरियां फिर हैं। हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम अच्छा नौकरियों में ग्रोथ देख रहे हैं। बट जैसा मैंने बोला, ये सिर्फ इस चीज़ का किसी को भी अगर ये देखना है तो सिर्फ ये ना देखें कि हमें नौकरियां कहाँ हैं, ये भी देखें कि वो करना क्या चाहते हैं, कहाँ काम करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सब मिला जुला के देखना पड़ेगा
1: जी। और अब आइए हम अपने श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र जी।
3: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार।
0: नमस्ते
3: सर। मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे ये मालूम करना है, प्रधानमंत्री जी नौकरियों के लेटर बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं, और आप भी बहुत सारे प्रपोजल चलाते हैं, क्या ब्लाइंड के लिए प्रपोजल है आपके पास?
2: भूपेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, इसमें हम बहुत बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं जो कि किसी एक वर्ग के तरफ ज़्यादा उसके ज़रूरतों के हिसाब से होता है, तो बीच बीच में बहुत सारे हम स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, और वहाँ पे बीच बीच में ऐसा हुआ है कि PWD के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स बने हैं प्रोग्राम के अंदर, स्कीम के अंदर, ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, और साथ साथ स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी पास में चलाए गए हैं, जहाँ क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, जब किसी तरह की इस तरह की शारीरिक क्षमता की बात आती है तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह के नौकरियों में किस तरह के लोग योगदान कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह के नौकरियों में वो कैसे लोग को एक्सेप्ट करेंगे, और उस हिसाब से हम ना सिर्फ मंत्रालय इंसेंटिव्स बिल्ड कर रहा है अपने स्कीम्स में, स्पेशल इंसेंटिव्स है, और अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो भी बीच बीच में संचालित किए जाते हैं।
0: साथ में मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूँगी भूपेंद्र जी कि हमारा जो ITI इकोसिस्टम है, इसमें जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी ब्रेल के हिसाब से जो लर्निंग टूल्स हैं वो भी बनाए गए हैं, तो कुछ ट्रेड्स जो हैं उसमें पूरा एक लर्निंग टूल्स उनके लिए प्रदान किए जाते हैं जिसके थ्रू शिक्षण दिया जाता है।
1: मानसी जी, आपने ITI की बात करी है, तो इसमें सबसे पहला सवाल जो आ जाता है PM सेतु का आ जाता है, तो ये नवीनतम योजना है सरकार की, तो इसके माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर ये ध्यान भी दे रही है, तो ITI इकोसिस्टम को कैसे बदलेगा?
0: जी, PM सेतु एक जरिया है जिससे हमारे जो ITIs हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे ITIs बहुत ही कोर रिक्वायरमेंट्स हमारे जो होते हैं ट्रेड्स के वो प्रदान करता है, पर उसको इंडस्ट्री बहुत बार कहता था कि भाई आप जो अपने आईटीआईज में प्रदान कर रहे हैं क्या वो रोजगार

0: योग्य हैं, हमें और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इसी सोच के द्वारा पीएम सेतु का ये मकसद है कि इंडस्ट्री को साथ लेकर,
1: जी
0: उद्योगों को साथ लेकर हम लोग वो ट्रेनिंग आईटीआईज में प्रदान करें। तो इसमें भागीदारी के द्वारा प्रदान किया जाएगा,
1: जी
0: एक हमारे देश में 1,000 आईटीआईज का कायाकल्प किया जाएगा, उसमें इंडस्ट्री भागीदार रहेगा, इंडस्ट्री स्टेट और सेंटर मिलकर एक वहाँ स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी जिसमें
1: जी
0: इंडस्ट्री उसको चलाएगा। जब इंडस्ट्री चलाता है तो उससे क्या होगा कि जो डिसीजंस हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री योग्य है, क्या उसको बेहतर किया जाना चाहिए या नए ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उसके बारे में बात की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा व्यय किया जाएगा। एक क्लस्टर में जिसमें लगभग 5 ITI होते हैं, उसमें 241 करोड़ तक की का बजट वहां प्रावधान किया
1: जी
0: गया है, और ऐसे पूरे स्कीम 60,000 करोड़ की स्कीम है। इट इज द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम इन द स्किलिंग साइड प्रेजेंटली। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का ये एक विजन है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री, ऑलरेडी हमारा वाइजैग और लगभग 8 क्लस्टर्स इंडस्ट्री को हम ला चुके हैं। वाइजैग में आर्सलर मित्तल निपॉन स्टील आ गया है, जिंदल्स आ गए हैं, तो ये इंडस्ट्री पूरा होलिस्टिक डेवलप करेगा। बस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होगी, पर फैकल्टी कैसी है, इंडस्ट्री अपनी फैकल्टी भी ला सकती है, कोर्सेज क्या हैं, क्या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लाने हैं, तो हमारे आईटीआईज को कैसे एस्पिरेशनल और बेहतर आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर स्किल रेडी कैसे बनाया जाएगा, ये जवाब पीएम सेतु लाता है।
1: बिल्कुल, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो ये एक नारा भी है। और अब एक और श्रोता हमसे, हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला। और मेरा ये प्रश्न ये है कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्किल इंडिया डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और हमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या क्या सुविधा है, ये मेरा प्रश्न है।
0: जी राकेश जी, धन्यवाद। कोटखाई ये सब तो मैं स्वयं भी जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी जो ITIs हैं, हर जिले के स्तर पर भी आइडिया ये है कि उन ITIs के द्वारा जो है, वहाँ बहुत से ITIs में हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं, तो ग्रामीण इलाकों से उधर बच्चे आ सकते हैं और उधर अपना स्किल पा सकते हैं। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इसमें अभी प्रशांत जी और इसके बारे में बताएंगे, पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के भी बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अलग जगह, उसमें अलग अलग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी प्रदान की जाती हैं। मैंने जो जन शिक्षण संस्थान की बात की, जैसे शिमला में एक सेंटर है, पर ज़रूरत के अनुसार उनको सैटेलाइट सेंटर्स भी ले जाकर डोर स्टेप स्किलिंग जहां आवश्यकता है उधर वो भी प्रदान करते हैं। तो इसमें मैं प्रशांत जी से बोलूंगी आगे, प्लीज बताने।
3: जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं, और ये स्किल मंत्रालय के अलावा कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। खासकर जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के सेंटर्स चलाते हैं, और उनका पूरा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्र ही हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ही ये स्कीम चलती है। तो जैसे मैम ने बोला, जन शिक्षण संस्थान भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सेंटर्स भी दूर दराज के एरियाज़ में होते हैं। हर स्टेट सेंटर में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का प्रावधान है, और बाकी उसके 7 सेंटर्स हैं। आजकल पीएम विश्वकर्मा योजना खासकर जो है वो आर्टिजन्स पे फोकस्ड है, उस पर मेसनरी, टेलरी, फ्लोरिस्ट्री, इस तरह के स्किल्स पे फोकस है, और ये भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही सुविधा और स्किल्स और लोन देने के लिए ये स्कीम अभी भी चल रही है। तो आप इन तरह के स्कीम्स के लाभ उठा सकते हैं।
1: प्रशांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं की बात कर लेते हैं, यहाँ पर तकनीक से हमेशा वो सीमित रही हैं, तो ऐसे में स्किल इंडिया के आने के बाद से क्या उनका मनोबल बढ़ा है या रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं?
3: मैम आप लेना चाहिए।
0: हाँ जी, सर्वप्रथम तो जैसे अभी कहा गया, ये हमारी मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट, हम सब बहुत से ऐसे योजनाएं चलाते हैं जो वहाँ, जैसे पंचायत घरों में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। जन शिक्षण संस्थानों की

0: बात करूं तो उसकी मंशा ही यही थी कि बहुत सी महिलाएं जिनको वर्कफोर्स से ड्रॉप आउट होना पड़ता है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, क्या उनके लिए हम एक सुविधा ला सकते हैं जहां हम उनके करीब जाकर उनकी ट्रेनिंग कर पाएं। वैसे ही DDU GKY स्कीम भी उसी मंशा से चलाई जा रही है। जन शिक्षण संस्थान में हमारे अगर आप बेनिफिशरीज देखें तो 83 से 84% जो हैं वो महिलाएं ही हैं। तो मनोबल उनका इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत से हम देखते हैं हमारे बेनिफिशरीज, ठीक है उन्होंने अगर टेलरिंग का ही काम सीखा तो वो घर पर वो बनाकर अपने आसपास पड़ोसियों के लिए अपने गांव में वो प्रोवाइड कर रही हैं सुविधाएं ब्यूटिशियन वाला। पर साथ ही साथ महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अब मैं बताना चाहूंगी कि अब महिलाएं जो है ट्रेडिशनल ट्रेड्स तक नहीं रही हैं। आप देखिए हमारी कुछ ITIs हैं जिसमें महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आई हैं। एक ITI जहां पर ड्राइविंग का कोर्स सिखाया जा रहा है,
1: ई रिक्शा तक चला रही हैं,
0: पिंक कैब्स ये सब चलाई जा रही हैं। तो हमारी महिलाएं जो है अब उनका मनोबल इतना बढ़ा है। अगर मैं आपको एनरोलमेंट्स की बात करूंगी कि तो अब हमारे एनरोलमेंट्स इतने बढ़ गए, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का है वो भी बहुत बढ़ चुका है, 41% पहुंच चुका है। तो मनोबल तो पड़ रहा है, अब हमें अपनी महिलाओं को और ऐसी सुविधाएं देनी है कि वो इन सारे योजनाओं का लाभ उठा सकें और नए ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन टेक्नीशियन सब में महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं।
1: चलिए मानसी जी, हम चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी का। जी रवि जी।
2: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
2: और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्ते,
2: आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम।
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: हाँ थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ITI से प्रशिक्षित एम्प्लॉयमेंट हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका प्रशिक्षण आगे मैं कहाँ ले सकता हूँ। खासकर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और मैं मतलब वाक्पटुता में भी थोड़ा सा मतलब अच्छा हूँ, मतलब मैं स्पीच थेरेपी मेरी अच्छी है मैम, ये जानना चाहता हूँ मैं।
0: जी रवि जी, आपने ITI से प्रशिक्षण ले लिया है ये मैंने समझा आपके प्रश्न में। तो इसके बाद एक अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग करनी है तो आपके पास बहुत से चीज़ें, यदि आप बोल रहे हो कि आप स्पीच इसमें भी अच्छे हो, यानी यदि आप पढ़ाना चाहते हो, आपने कुछ प्रशिक्षण लिया पढ़ाना चाहते हो, तो हमारे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत जिन्होंने ITI से प्रशिक्षण किया या कहीं से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है वो यदि पढ़ाना चाहते हैं ITI इकोसिस्टम में तो वो एडवांस कोर्स करके आ सकते हैं। उसके अलावा एडवांस्ड ट्रेनिंग्स भी हैं जो आप NSTIs या ग्लोबल हमारे स्किल सेंटर्स हैं उधर आप कर सकते हो और उधर उसको लेकर फिर उसके हिसाब से आगे आपके लिए और एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ेगी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो आप ये दोनों चीजें जो आपको ठीक लगे वो आप उस लाइन पर आगे बढ़ सकते हो।
1: प्रशांत जी, मानसी जी ने बता दिया कि ट्रेनिंग के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे अक्सर युवाओं का ये प्रश्न होता है कि ट्रेनिंग तो हम लोगों ने कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो NSDC प्लेसमेंट को कैसे सुनिश्चित करता है?
3: देखिए प्लेसमेंट्स बहुत सारे दिशाओं पे इस पे काम होता है। जैसे कि मैम बोल रही थी कि आप ITI से निकले तो आपके पास एक ऑप्शन है, हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चलती है जिसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप के कोर्सेज कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि ITI करने के बाद बहुत सारे बच्चे NAPS में आते हैं और साल भर या वैसा जो भी प्रोविजन हो उसमें वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, और चूंकि अप्रेंटिसशिप एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां वो इंडस्ट्री के अंदर होती है, तो आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनता, जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसी इक्विपमेंट पे उसी सिस्टम पे आप काम करते हैं, तो उससे नौकरियां काफ़ी या तो जो कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप दे रही है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अदरवाइज आपको दूसरी जगह भी नौकरी मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। दूसरा हमारा एक सिद्ध पोर्टल है स्किल इंडिया डिजिटल हब, अगर आप मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये जो पोर्टल है इस पर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कोर्सेज सेलेक्ट करने के, जॉब सेलेक्ट करने के लिए, उस पर अप्लाई करने के लिए। तो आप उस पोर्टल पे जाएं और देखें कि क्या नौकरियां हैं। काफ़ी सारी नौकरियां, लाखों में नौकरियां वहां पे एग्रीगेट की गई हैं।

0: उसके अलावा बहुत सारे हम लोग कौशल महोत्सव करते हैं अभी बेलूर घाट बंगाल में, काफ़ी इंटीरियर में जाके हम लोगों ने
1: जी
0: किया, काफ़ी भीड़ जमा हुई, इसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे आए। तो इस तरह के अप्रेंटिसशिप मेलास, जॉब मेलास, ये रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, आप उस पर नज़र रखिए, अगर आपके एरिया में हो रहा है तो आप उसका लाभ उठा
1: जी
0: सकते हैं।
1: प्रशांत जी, श्रीधर पोर्टल के अलावा कोई ऐसा नंबर जिसमें कि हमारे श्रोता जो हैं आपसे संपर्क कर सकें और इसके बारे में, इस योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें?
0: जी सो अगर आप सिद्ध पोर्टल पे जाते हैं तो उसका आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पोर्टल पे भी जा सकते हैं अपने ब्राउज़र के द्वारा, और आप वहाँ जाएंगे तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में आपको एक नंबर भी मिलेगा। ये मंडे टू सैटरडे 9 to 6 ऑपरेट करता है,
1: जी
0: इसमें 8800055555, 5 बार 5 ये नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको एक फॉर्म भी खुल जाएगा, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो फॉर्म भर के हमें वहाँ पे वेबसाइट पे ही सबमिट कर सकते हैं।
1: और अब एक और श्रोता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी,
2: धन्यवाद, नमस्कार। मैं
1: नमस्कार।
2: ये पूछना चाहता था कि जो अनस्किल्ड यूथ है, स्किल्ड नहीं, किसी तरह से अप्रेंटिसशिप नहीं और क्वालिफाइड है, उसके लिए क्या जो है रोजगार का माध्यम?
1: रमाशंकर जी कहना चाहते हैं डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है उनके पास, तो उसमें क्या संभावना है? क्या आपके प्रश्न को सही समझ रहे हैं रमाशंकर जी?
2: जी,
1: स्किल्ड आप हैं, मतलब डिग्री आपके पास है लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है।
3: जी, तो अभी जैसे प्रशांत जी ने बताया, रमाशंकर जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आज हर जगह गांव में भी बच्चे ऐप डाउनलोड करते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ आप सिद्ध वाला ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। जब आप उस ऐप में आगे जाएंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं हैं, और फिर आपकी आपका रुझान कौन से सेक्टर्स तरफ है, ऐसे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको रजिस्टर होने बोला जाएगा। उसके बाद आपके रुझान के हिसाब से यदि आप देखते हैं कि कुछ उधर अवेलेबल हैं कोर्सेज, आप वो कर सकते हैं। ये तो हुआ सिद्ध पोर्टल की बात। इसके अलावा अगर आपको अगर आपके पास जैसे 8वीं आपने पास की है या फिर 10वीं की है और आपको लगता है कि आप कुछ कौशल, आप एक हुनर पाना चाहते हैं, तो आप हमारे ITIs में भी आ सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहूँगी, कुछ बच्चे जैसे आपने कहा कि अनस्किल्ड ये रहते हैं, पर कुछ बच्चे जो 8वीं पास करके भी हमारे ITIs में आते हैं, हमने ऐसा प्रावधान दिया है कि वो 10वीं का सर्टिफिकेट भी एक दो लैंग्वेज पेपर्स साथ में लेकर, टाई अप है हमारे मंत्रालय का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज़ के साथ, और वो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट भी लेते हैं और साथ में हुनर भी प्राप्त करते हैं, तो दो चीज़ें इकट्ठे पा सकते हैं वो लोग। तो और हुनर का कोई ऐसे एज ये नहीं रहता है, तो आप बिल्कुल, हमने अभी जो भी आपको योजनाओं के बारे में बताया, आप उसमें यदि वो एज ब्रैकेट में है तो बिल्कुल आप आकर कोई भी हुनर पा सकते हैं। और स्किलिंग का ऐसे तो कोई एज नहीं होता है, आप हमारे सिद्ध पर भी देखेंगे वेरियस एज ग्रुप्स के लिए हमने प्रावधान दिया हुआ है स्किलिंग का।
1: बिल्कुल मानसी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब चाहें कुछ नया सीख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, मानसी जी आपसे ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने बात कर ली स्किल्स के बारे में, ब्यूटिशियन है, IIT है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल की यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की, तो किस तरह के कोर्सेज की डिमांड है इसमें?
3: जी आजकल बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, एक जैसे अभी प्रशांत जी ने भी बोला था जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें डिमांड हमारा नेशनली नहीं इंटरनेशनल भी है काफ़ी। दूसरा जो देख रहे हैं हम लोग केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी यानी जिसमें चाहे वो चाइल्ड केयर हो या जेरियाट्रिक केयर, यानी बच्चों का ध्यान यदि रखना हो या बुजुर्गों का, उसके लिए अभी बहुत से जैसे जापान, जर्मनी, इन देशों में बहुत मांग है और हमारे बच्चे जा भी रहे हैं, तो उनके लिए हमारे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं जहाँ पर हम लोग लैंग्वेज ट्रेनिंग भी करा रहे हैं अलग अलग हुनर में, जो नॉन मेडिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं, फिर कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स हैं, और भी हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड भी हैं, तो इसमें हमारे बच्चे पर केयर इकोनॉमी में आजकल खास करके बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है और डिमांड भी है।
1: बिल्कुल, ये बहुत ही

0: एक पहल है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है घर पे बच्चों के साथ कोई रहे, या फिर आपके साथ जो बुजुर्ग रह रहे हैं तो उनके साथ कोई रहे, तो ये एक अच्छी पहल है मुझे लगता है प्रशांत जी।
1: जी इंटरनेशनल मोबिलिटी में जैसा हम जानते हैं
0: जी
1: जो बल्क ऑफ द लेबर फोर्स फ्यूचर के होने वाली है वो इंडिया से ही जाएगी, और इसका डिमांड बहुत ही तेज़ी से हम लोगों ने देखा है कि लास्ट पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और एक बहुत ही यू नो डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स है। हेल्थ केयर में ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा है, हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा है, इस तरह के सेक्टर्स में ज़्यादा है। बट अभी मैं दो तीन दिन पहले ही SIIC मैम ने बोला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गुवाहाटी में था, और वहाँ पे मुझे बच्चे जर्मन ट्रेनिंग करते हुए मिले, और उसमें फाइनेंस के भी बच्चे थे, नर्स भी थी, उसके बाद कुछ बच्चे थे जो हॉस्पिटैलिटी में जा रहे थे। तो वो लोग गुवाहाटी और आसपास के एरियाज में, बहुत लोग आसपास के स्टेट से आके गुवाहाटी में रह के लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी, अगर जिन लोगों को विदेश में जाके एक करियर बनाने की इच्छा है उसके लिए SIIC और NSDC इंटरनेशनल और इस तरह के जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू जुड़ें, क्योंकि एक स्किल्ड माइग्रेशन, लीगल माइग्रेशन जो कि सही ढंग से माइग्रेशन हो और अच्छे नौकरियों में जाएं, ये इस तरह के रास्ते जो हैं ज्यादा सुनिश्चित करते हैं।
0: जी, और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा से संजीव जी। जी संजीव जी।
2: जी नमस्कार और सभी को।
0: नमस्कार
2: जी, मैंने कोर्स किया मैडम जी DDUGKY में यहाँ यमुनानगर से, और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा जी? ना तो कोई जॉब मिली, ना एग्जाम होया, और ना सर्टिफिकेट मिला जी। बैचलर ट्रेनिंग का कोर्स किया और ड्रोन।
0: संजीव जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताइएगा आपने किस चीज का कोर्स किया है?
2: जी DDUGKY में बैटरी रिपेयरिंग का कोर्स किया।
0: बैटरी रिपेयरिंग,
2: हाँ जी। और
0: ठीक है,
2: ड्रोन का भी कोर्स किया।
0: ड्रोन का भी किया आपने? जी
2: हाँ जी। तो अभी तक ना तो कोई जॉब मिली, ना एग्जाम हुआ, और मेरी एज 44 ईयर से होगी, तो ये बोलते हैं कई जगह के भाई आपकी एज ज्यादा है, तो अब क्या कर सकते हैं मैडम?
0: इन्होंने ड्रोन का कोर्स किया है और बैटरी का रिपेयरिंग का कोर्स किया है, और एज जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है कि एज ज़्यादा है, तो कैसे होगा?
1: जी संजीव जी, नौकरियों का अपनी एक रियलिटी होती है। मुझे पता नहीं आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं, पर ड्रोन में ज़्यादातर आप अपना काम कर सकते हैं। हमारी अगर आप ड्रोन दीदी टाइप के स्कीम्स देखें तो उसमें एग्रीकल्चर में ड्रोन का एप्लीकेशन है, उसमें आप अपनी थोड़ी कमाई कर सकते हैं। शादियों में ड्रोन है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज अब ड्रोन में नौकरियां दे रही हैं क्योंकि ड्रोन का एप्लीकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो अगर आपने खुद का काम करने का, पता नहीं आपने कोई संभावना तलाश की है कि नहीं की है, अगर आसपास आपकी नौकरी नहीं है तो आप एक बार ज़रूर इस बार इन संभावनाओं को देखें कि आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं किसानी में या फिर किसी और तरह के क्षेत्र में जहां ड्रोन का एप्लीकेशन है।
0: प्रशांत जी आपने स्टार्टअप की बात करी, लेकिन सबसे पहला प्रश्न आ जाता है इसमें पैसों का, कि स्टार्टअप अगर हम लोग शुरू करें तो हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, तो इसमें क्या सरकार किस तरह का लोन प्रोवाइड करवाती है?
1: जी इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम हो रहा है, जैसे कि आप सबसे PM विश्वकर्मा योजना जो MSME की स्कीम है उसकी स्किलिंग MSD के थ्रू हम NSDC में करते हैं, तो उसमें क्या है कि जब आप बेसिक स्किलिंग हो जाती है तब आपको लोन मिलता है, और अगर आपने लोन लेके उसका किश्त जमा कर दिए तो 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग मिलती है, उसका डबल 2-2.5 लाख रुपये का लोन मिलता है।
0: जी।
1: तो ये आपकी विश्वकर्मा स्कीम में जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं उनको लोन देने का प्रोविजन है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें लोन का प्रोविजन रहता है।
0: जी, और अब अंत में चलते चलते एक और प्रश्न हम ले लेते हैं छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से विभूति शर्मा जी का। जी विभूति जी।
3: नमस्ते सर, मैं विभूति शर्मा, सभी आपके टीम को नमस्कार, आपने मेरी बातों को सुना। जैसे कोई दृष्टिबाधित है, महिलाएं हैं, तो ऑनलाइन कुछ घर बैठे ऐसे पैसा कमाने का कोई जरिया है क्या, और ऐसा कोई स्किल है, और दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से स्किल चलाए जा रहे हैं?
0: ऑनलाइन कोर्स के बारे में समय कम है तो इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ी सी इसमें आप बता दीजिए।
1: जी इसमें कुछ दिनों पहले जैसे मैं बता रहा था, मैं एक CII का

0: सेंटर है बॉम्बे में, वो लोग एक करियर काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं, और पूरा का पूरा सेंटर का जो मैनेजमेंट है, 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट एक व्यक्ति उसको पूरा का संचालन करते
1: जी
0: हैं। मैं खुद उनसे मिला हूँ, और बहुत ही सक्षम रूप से वो काउंसलिंग सेंटर वहाँ ऑपरेट कर रहा है। जो ये दृष्टि बाधित 3-4 लोगों की टीम है जो उसको बहुत सक्षमता से चला रही है। तो मैं ही बोलूँगा कि इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ संभावनाएं हैं, जो कि अलग अलग स्कीमों के तरह आप उसको उसकी लाभ उठा सकते हैं।
1: जी मानसी जी, अंत में चलते चलते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि स्किल इंडिया 2026 के रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, तो अपने श्रोताओं से क्या आप अपील करना चाहेंगी?
2: जी बिल्कुल, स्किल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सभी लोगों को, जिनके पास हुनर है, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं उस हुनर को शोकेस करने का। तो मैं आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, प्लीज़ रजिस्टर करें और प्लीज़ अपने हुनर को आजमाएं, और इससे फिर जो जीतेंगे वो आगे भी जाते
1: जी
2: हैं, आगे के स्किल्स वर्ल्ड स्किल्स चैम्पियनशिप में भी जाते
1: जी
2: हैं।
1: बिल्कुल, जो
2: तो ये
1: चीन की शंघाई में होने वाली है,
2: 15 सितंबर तक हमारे रजिस्ट्रेशन खुले हैं, तो आप लोग प्लीज आए और रजिस्टर करें।
1: तो इसके साथ ही आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे दीजिए फरहत नाज को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार,
2: नमस्ते, धन्यवाद।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए नुज़त आरा बेगम का लिखा नाटक आंखें खुल गईं। प्रस्तुति डॉक्टर बजबल्लभ मिश्र की है।
1: कौन?
2: आप कहाँ है वो लड़का? वो पीली कमीज और खाकी नेकर पहने हुए था। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? क्या तुम्हें उस लड़के की माँ हो? कहाँ छिपाया उसे? जल्दी बाहर निकालो, मेरे रुपए लेकर भागा है वो।
1: क्या?
2: हाँ,
1: रुपए लेकर।
2: हाँ, मैं सामने की दुकान से सामान खरीद रही थी। मेरे पर्स से 10 रुपए का नोट जैसे ही उड़कर सड़क पर पहुंच गया, उसकी उस पर नजर पड़ी और वो उसे उठाकर भाग लिया। इधर ही आया था, इधर ही कहीं छिपा है वो।
1: क्या
2: कहा है वो?
1: क्या तुम सच कह रही हो? महेश,
3: महेश, क्या है बाबा? क्या खाना बन गया?
1: ये
2: कहा है मेरे रुपए? जल्दी बता वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। जल्दी बता मुझे।
1: नहीं आंटी, नहीं, पुलिस को मत बुलवाना आंटी।
2: तो मेरा नोट कहाँ है? लाकर मुझे दे। कहाँ छिपा रखा है उसे?
1: अभी देता हूँ आंटी, गद्दे के नीचे रखा है। ये लीजिए आंटी, ये आपका नोट।
2: तो यहाँ छिपा रखा था, मिल गया ना घर में? क्या जान से ही मार डालोगे बच्चे को? उसकी क्या गलती है? माँ बाप जैसी शिक्षा देंगे वैसा ही तो बच्चा बनेगा।
1: माफ करो मालती, माँ बाप न तो ऐसे हैं और न उन्होंने बच्चों को कभी ऐसी शिक्षा दी है।
2: तो मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तो शहर में नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी आवाज कुछ पहचानी सी लग रही है।
1: हाँ,
2: तुम राधा ही हो।
1: राधा?
2: मगर तुझे तुझे ये क्या हुआ? तू तो एकदम बूढ़ी लगने लगी। ये तेरा बच्चा है?
1: हाँ आंटी, मेरी माँ का नाम राधा है। मैं सच कहता हूँ आंटी, माँ ने मुझे चोरी करने की शिक्षा कभी नहीं दी। मगर आप कैसे जानती हैं मेरी माँ को?
2: तुम ये बताओ कि तुमने चोरी की क्यों?
1: मेरे पास प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं थी। मैं 10 दिन से पिताजी से कह रहा था। आज सुबह जब मैंने जिद की तो उन्होंने कहा मेरे पास तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, स्कूल छोड़ दो। स्कूल गया तो मास्टर जी ने क्लास से बाहर निकाल दिया।

0: जब कॉपी मिल जाए तब स्कूल आना। तुम्हारा नोट देखकर मेरा जी ललचाया और मैंने सोचा इन पैसों से कॉपी खरीद लूंगा।
1: जी क्या कह रहा है राधा, क्या ये सच है?
2: हाँ मानती, आज इस घर की हालत।
0: आंटी आप मेरी माँ को कैसे जानती हैं?
1: बेटा हम लोग साथ पढ़ते थे। ये लो, ये 10 रुपए लो और तुम अपने प्रैक्टिकल की कॉपी लेकर स्कूल जाओ। अरे माँ की तरफ क्या देख रहा है, मैं तेरी माँ की खास सहेली हूँ, वो बना नहीं कर सकती। तू जा, जा बेटे कॉपी लेकर आ।
0: मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो आंटी, अब मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा।
1: कोई बात नहीं, मेरे पति का ट्रांसफर होकर यही, हाँ वो यहाँ स्टेशन मास्टर है, अब मैं ऐसा मौका ही नहीं आने दूंगी कि तुम ऐसी भूल करो। जाओ अब तुम स्कूल जाओ जल्दी से।
2: अब मुंह क्या देख रहा है अभागे, जाना स्कूल।
1: झल्लाते क्यों है, जा बेटे जा। और सुन, तुझे जब भी कोई जरूरत हो मेरे पास आ जाना, स्टेशन पर आकर स्टेशन मास्टर साहब का क्वार्टर पूछ लेना। हाँ
0: अच्छा आंटी, नमस्ते।

क्यों रोती है राधा? जानती है, मैं हमेशा तुझे याद करती रहती हूँ। अपने पति से हमेशा तेरी तारीफ करती रही कि हमारी सहेली राधा पढ़ाई खेलकूद में क्लास में सबसे आगे रहती थी। तुझे याद है ना, जब हम लोग बीए में थे तो खेलकूद में फर्स्ट आई थी। कॉलेज डे मनाया गया था, तुझे उसमें गोल्ड मेडल मिला था। उन्हीं दिनों वो रामलाल नाम का एक लड़का था ना, तेरे पीछे दीवाना होकर घूमता फिरता था।

0: क्या है?
1: मैं फिर से आपके पीछे दौड़ लगा रहा हूँ।
0: कहिए।
1: ये फूलों का गुलदस्ता जी, मैं आप ही के लिए लाया था।
2: जब वाइस चांसलर साहब आपके गले में गोल्ड मेडल डाल रहे थे, तब मैं सोच रहा था कि काश कोई ऐसी घड़ी आए कि मैं आपके गले में माला डालूं।
0: बड़े आदमी हो तो इसका ये मतलब नहीं कि चाहे जैसी बकवास करो, होश में तो हो
1: जी।
0: राधा, अरे तू यहाँ खड़ी है राधा, और वहाँ कैंटीन में हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओ मिस्टर रस्तोगी, ये फूलों का गुलदस्ता लाए हैं आप?
1: जी, राधा जी के लिए।
0: हाँ भाई, राधा है भी तो फूलों जैसी कोमल।
1: जी,
2: वो कल एक साहब दिल्ली से मेरा रिश्ता तय करने आए थे। मैंने माँ से कहा कि मैं तो राधा जी जैसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने इनके बारे में पूछा तो मैंने कहा वह फूल सी कोमल है, सरस्वती का अवतार है।
0: मगर मिस्टर रस्तोगी, आप चले रही साधु और ये बेचारी मध्यम परिवार की।
2: अजी, हमें पैसे की क्या जरूरत, हमारे पास सब कुछ है। 4-5 मकान है, खूब किराया आता है, फैक्ट्री है, घर में कार है, और फिर मेरी माँ मेरी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार है।
0: सुनिए, आपका नाम राम है ना?
1: जी।
0: तो राम जी महाराज, हम 4 बहनें हैं। आप भी अगर राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की तरह 4 भाई हो तो चलिए आप ही से स्वयंवर लसा लेंगे।
1: जी नहीं,
2: हम 4 भाई नहीं, मैं तो अकेला हूँ जी, अपने घर में अकेला।
0: अच्छा सुनो, अब भाग जाओ, कभी मेरे पीछे मत आना, शराबी कहीं का। भागो वरना एक थप्पड़ में

0: अरे जरा तो मुस्कुरा देती, हाय बेचारा।
1: मुझे ऐसा पति कभी नहीं चाहिए मालती। मैंने अक्सर देखा है कैंटीन में शराब पीकर आता था। मैं शराबी पति को बारूद के ढेर पर रखा एक हीरा समझती थी। मेरा सपना तो है मालती कि मेरा एक प्यारा सा घर हो जो शांति से भरा हो, हंसी से गूंजता रहे। उस आंगन में प्यार हो, शांति हो, ममता भरी किलकारियां हो और मैं उन सब के बीच एक स्वर्गमय आनंद की स्वर्णिम दीप जलाऊं।
0: अरे रे रे देवी जी, धरती पर आइए, धरती पर। ये स्वर्ग नहीं है, पृथ्वी लोक है, बल्कि कहिए नरक लोक।
1: तुम देखना मालती, मैं एक दिन अपना सपना जरूर सच करके दिखाऊंगी। इतना सच कि तू भी देखकर हैरान रह जाएगी।
2: मगर आज तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि सारी दुनिया ही बदल गई हो।
1: बदल ही नहीं गई बाल्टी, बर्बाद हो गई। मेरी दुनिया तो पूरी तरह बर्बाद हो गई है।
2: मगर हुआ क्या? शादी के बाद तो मिली नहीं, और जब मिली तो इतनी कमजोर, जैसे जवानी से छलांग लगाकर सीधी बुढ़ापे की दहलीज में पहुंच गई हो।
1: मेरा जीवन तो इस घर में आते ही नरक बन गया था। सोचती थी कि मायके की गरीबी की काली साए इस नए घर में आकर खत्म हो जाएगी। वहां माँ और बापू की दिन रात की तकरार,
0: चौथी बेटी क्यों पैदा हुई, हमें बेटा चाहिए था, इनकी शादी का पैसा कहाँ से आएगा, कब इनसे पीछा छूटेगा।
1: उनकी बातें सुन सुनकर सोचती थी आत्महत्या कर लूं, बहरी हो जाऊं, ताकि इन तीखे तानों और माता पिता की तकरार को सुन ही ना सकूं।
2: मगर मैंने सुना था कि तुम्हारा विवाह तो बिना दहेज के ही हो गया था ना।
1: हाँ, तूने ठीक ही सुना। मैं एमए और वह हाई स्कूल, अपने पिता की चौथी कन्या थी ना। पिताजी तीन बहनों की शादी करके मेरे गम में मर चुके थे। माँ को अपना बोझ उतारना था, सोनू ने इनके साथ शादी करके उतार लिया।
2: कुछ दिन पहले मुझे नीतू मिली थी, उसी ने बताया था कि तू यहाँ है। अरे अपनी क्लास फेलो थी ना नीतू।
1: हाँ, कुछ याद तो आ रहा है, मगर अब तो गृहस्थी के झंझट में सब भूलने लगी हूँ। आटे दाल के अलावा अब तो कुछ भी याद नहीं रहता। चार बच्चे और इतनी महंगाई,
2: हाय राम, चार बच्चे, क्या कह रही है तू? छी, तेरा पढ़ना लिखना सब बेकार हो गया, क्या यही समझदारी है तेरी?
1: इस घर में आने के बाद समझदारी ने साथ छोड़ दिया मालती, लाचारी ने पल्ला पकड़ लिया। यहाँ आकर मैं औरत से गाय बन कर रह गई, सिर्फ एक गाय।
2: गाय? वो कैसे?
1: मेरे पति अपनी माँ के अंधे भक्त थे। शादी के चार महीने बाद ही घर में झगड़े शुरू हो गए।
0: कहा माधव, बहू आज खाना नहीं बनाएगी?
3: हाँ माँ, आज खाना तुम बना लो।
0: मगर वो क्यों नहीं बनाएगी?
3: माँ वो अस्पताल से आई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
0: क्यों, अस्पताल किस लिए गई थी? दिखाने दिन चढ़ने लगे हैं क्या बेटा?
3: मुझे नहीं पता माँ, उसी से पूछ लो।
0: राधा, हो राधा,
4: आई।
0: यहाँ आओ बहू।
4: जी माता जी।
0: माधव क्या कह रहा है, क्या दिन चढ़ने लगे हैं बहू?
1: जी, मगर अब नहीं चढ़ेंगे।
0: क्या मतलब?
1: चढ़ने लगे थे, मगर मैं अस्पताल जाकर।
0: क्या गिरवा आई?
1: जी।
0: कितने दिन चढ़े थे?
1: 2 महीने।
0: ओ तेरा सत्यानाश हो कलमोही, हत्यारी है हत्यारी। भगवान ने दिया और तूने तूने उसकी हत्या कर डाली। डाहिन, ओ कलमोही।

0: समझ और बुद्धि भी भगवान नहीं दी है। अभी से संतान का झगड़ा।
1: तो शादी किस लिए की थी कलमोही?
0: शादी सिर्फ संतान के लिए ही नहीं की जाती माता जी।
1: ज्यादा जीत चलाएगी तो मुंह तोड़ दूंगी। माधव
2: क्या है माँ?
1: इस हत्यारी को इसकी माँ के घर पहुँचा दे। ये हमारा वंश नहीं चलाना चाहती। मैं ऐसी बहू की शक्ल भी नहीं देखना चाहती।
2: माँ लेकिन इसके घर में अब इसकी माँ के अलावा और कौन है?
1: लगता है तू भी चोरू का गुलाम हो गया है। कान खोल कर सुन ले, इस घर में रहना है तो आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। बच्चे तो भगवान की देन होते हैं बेटा, खंस की तरह उनका वध करना है तो मुझे पहले जहर दे दो ताकि मैं तो पापियों के पाप से दूर हो जाऊं।
2: माँ अब कभी ऐसा नहीं होगा, इस बार हमें माफ कर दो।
1: तूने क्या कर दिया बेटा?
2: कहाँ जा रही हो राधा?
0: अस्पताल, दो बच्चे ही बहुत हैं।
2: माँ के मरते ही उनकी बात भूल गई?
0: माँ का जमाना अब गया, हमें अपना भला बुरा खुद सोचना है। माँ के सामने उनकी आज्ञा की लाचारी थी, अब वो नहीं है।
2: बहुत सोचने लगी हो।
0: क्योंकि बच्चों का बोझ मुझे उठाना पड़ता है।
2: एबॉर्शन नहीं कराओगी? माँ का कहना था कि हत्या का काम करने से पाप लगता है, समझी?
0: सरकार ने सोच समझ कर नियम बनाया है। क्या सरकार हत्या करवाती है?
2: ज्यादा मुंह मत लगो, मेरे लिए सरकार नहीं माँ की आज्ञा महत्वपूर्ण है।
0: मैं अबॉर्शन करवाऊंगी।
2: तुम अगर घर से बाहर भी गई तो टांगे तोड़ दूंगा।
0: मगर इतनी औलाद।
2: बको मत, चुपचाप घर में बैठो, समझे?

सारे अरमान खुद कर रह गए। आज बरस में चार बच्चों की माँ बन गई। हर समय घर में कलह होने लगी, कभी बच्चों की बीमारी, कभी मेरी, कभी उनकी। घर नरक बन गया, माटी नरक।

0: शायद पापा आ गए, मैं दरवाजा खोलता हूँ, सब्जी भी आ गई होगी। क्या पापा इतनी देर लगा दी?
1: तुम लोगों को पापा का नहीं सब्जी का इंतजार होगा।
2: चुप रे महेश, देखता नहीं सारे कपड़े भीगे हुए हैं। बैठो जी, कपड़े बदल लो, मैं चाय बना कर लाती हूँ।
1: आज से इस घर में चाय बंद कर दो राधा।
2: क्यों
0: माँ, पापा तो सब्जी भी नहीं लाए।
1: हाँ नहीं लाया, और अब लाऊंगा भी नहीं। बिना सब्जी के खाना खाने की आदत डालो।
2: क्यों झिझकते हो बच्चे को? शायद बरसात की वजह से नहीं ला पाए होंगे। महेश बेटा, तू अपने भाइयों को संभाल, मैं दाल पकाए देती हूँ।
1: नहीं, अब इन बच्चों को चटनी से रोटी खाने की आदत डालो राधा।
2: चटनी से? भला क्यों?
1: मैंने कहा ना, मेरा सिर मत खाओ।
2: मगर बात क्या है?
1: मत पूछो राधा, मत पूछो।
2: मर्द की आंखों में आंसू शोभा नहीं देती। साफ साफ बताओ क्या बात है
1: राधा। मेरे पिताजी कहा करते थे, मर्द का सुहाग उसकी नौकरी होता है। आज आज मेरी नौकरी छूट गई। मैं अनाथ हो गया। अब कैसे इस घर के बोझ को उठा पाऊंगा? कैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा पाऊंगा? तुम्हारी नौकरी भी मैंने माँ के कहने मारकर छुड़वा दी। राधा राधा, मैं आंख होते हुए भी अंधा हो गया।
2: मगर आप एक बार मालिक को समझाते तो।
1: प्राइवेट नौकरी में दलील और दया के खाते नहीं होते राधा। मालिक कई महीने से माफ करता चला आ रहा था, मगर आज आज उसने आखिरी हिसाब कर दिया।

0: बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की। तनख्वाह कल मकान वाला आएगा, 60 रुपए किराए के दे देना, और तुमसे किराया देना भी मुश्किल हो जाएगा।
1: क्यों दिल छोटा करती हो? धरती के मालिक ने नौकरी के दरवाजे बंद किए हैं, आसमान के मालिक ने तो बंद नहीं किए। महेश के पापा, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से।
2: माँ, छोटू तो भूखा ही हो गया।

0: रात के 2 बज गए, अब तक नहीं आए। न जाने क्या हो गया है इन्हें। 2 महीने बीत गए, रात रात भर गायब रहते हैं। शरीर सूख कर पिंजर हो गया है। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? कौन? कौन? महेश के पापा? महेश के पापा? अरे तुम्हारे मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। हाय राम, तुमने फिर पीनी शुरू कर दी। तुमने तो अपनी माँ की कसम खाई थी कि अब कभी
1: शराब नहीं पीऊंगा। हाँ खाई थी, मगर तुम्ही ने तो एक दिन कहा था कि मर्द अपनी हिम्मत और मेहनत से सोना उगा सकता है। राजा राजा, मैंने तुमसे छिपाकर मेहनत करना शुरू किया। मेहनत
0: मुझसे छिपाकर?
1: हाँ राजा, आज उस मेहनत की मंजिल के करीब पहुंचने वाला था कि जाने से बुखार आ गया। इस बुखार ने मेरे 2 महीने की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। राजा पानी फेर दिया।
0: साफ साफ बताओ, कौन सी मंजिल, कैसी मेहनत?
1: राजा मैं 2 महीने से रात को रिक्शा चलाकर पैसे जोड़ रहा था।
0: हाय राम, रिक्शा चलाकर?
1: हाँ, सोचा था 1,000 रुपए जमा करके एक छोटी सी दुकान खोलकर बैठ जाऊंगा। राजा मैंने 100 रुपए महीने की दुकान भी तय कर ली थी। तुम्हें पता नहीं, देखो वो सामने वो अलमारी है ना, उसमें उसमें 970 रुपए जमा हो गए। हाँ हाँ, 30 रुपए और हो जाते, मगर कम्बल बुखार ने दर्द पहुंचा। मैंने 10-5 रुपए कमाए कि बुखार मेरे जिस्म को तोड़ने लगा। एक साथ के रिक्शे वाले ने कहा थोड़ी सी पी ले, गर्माई आ जाएगी। इसलिए थोड़ी सी पी कि रिक्शे के घूमते हुए पहिए से अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। मैं बदमाश नहीं माना, तेरा सारा जिस्म तोड़ कर रख दिया इसने।
0: महेश के पापा, जी चाहता है तुम्हारे कदमों पर अपनी जान लुटा दूं, अपनी सारी डिग्रियां तुम पर न्योछावर कर दूं। तुमने सचमुच हिम्मत और मेहनत का महल बनाकर खड़ा कर दिया है। उठो उठो, चारपाई पर लेटो, मैं सर दबाए देती हूँ।
1: मेरी मंजिल दूर हो गई राजा, मेरी मंजिल दूर हो गई, मेरी
0: मंजिल नजदीक आ गई। बस एक वचन दो, अब कभी शराब नहीं पियोगे।
1: शराब तो राजा इसलिए पी थी कि किसी तरह अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं।
0: 1,000 पूरे करने के लिए 30 रुपए चाहिए ना, मैं देती हूँ।
1: तुम?
0: हाँ, सिलाई की कमाई से मैं भी कुछ जोड़ती रहती हूँ। मेरे पास 100-200 रुपए पड़े ही रहते हैं। दिल छोटा ना करूं महेश के पापा, मेहनत का महल कभी टूटता नहीं। कहीं अपनी दुकान खोल लो। अरे ये पैसे भी तो तुम्हारे ही हैं, मैं भी तो तुम्हारी ही हूँ। मुझे क्या पता था कि तुम इस गृहस्थी की गाड़ी के लिए रात रात भर रिक्शा खींच रहे हो।

छोटी सी दुकान खोल रखी है मालती, सुबह से रात तक वहीं रहते हैं, बस दाल रोटी का काम चल जाता है। मगर बच्चों के भविष्य के लिए क्या सोचा तुम लोगों ने?

0: सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। बड़ा लड़का 11 बरस का है, यही महेश, पढ़ने में भी तेज है। वो चाहते थे कि पढ़ाई छोड़कर उनके साथ दुकान पर बैठे, पर ये तैयार नहीं हुआ। वो छोटे को साथ ले जाते हैं। सुन, तू नौकरी क्यों नहीं कर लेती? हाँ, कल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए थे, कह रहे थे कि रेलवे इंस्टीट्यूट के स्कूल में शायद 3 टीचर्स की जगह खाली है। अरे, घर की नौकरी से फुर्सत कहाँ है? तूने अच्छा नहीं किया राधा, घर की आमदनी घटा दी और खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी। जरा सोच, कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएगी, कैसे उन्हें अच्छा नागरिक बना पाएगी?
1: जिसने दिया है वही पाल।

0: नागरिक बना पाएगी?
1: जिसमें दिया है वही पालेगा।
0: राधा, छलनी में दूध दुहो, कर्म को दोष दो। भगवान ने अक्ल भी तो दी है, समझ भी तो दी है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? मुझे देख, मेरे तो सिर्फ दो बच्चे हैं और आगे होने की गुंजाइश नहीं है। अरे, हम तो सीता के मार्ग पर चलते हैं। दुई सुख सुंदर सीता जाए, लव कुश वे पुरानन जाए।
1: ठीक कह रही हो मालती, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसी लाचारी आएगी कि धरती पर बोझ बनकर जिंदगी काटूंगी।
0: रो मत मालती, लाचारी तो एक मुर्दा चीज है और तू जिंदा औरत है। अपनी शक्ल देख, समय से पहले बूढ़ी दिखने लगी है। हिम्मत और मेहनत के पाठ हमें सुनाया करती थी, खुद भूल गई? हिम्मत से काम ले रहा था, हिम्मत से सब ठीक हो जाएगा।

0: क्या बात है राधा, दुकान पर क्यों आई हो?
1: छोटू को बेचकर खाना क्यों नहीं मंगवाया? मुझे आना पड़ा, ये लो खाना।
0: अरे आज सुबह से ही दुकानदारी इतनी तेज है कि हम बाप बेटों को एक पल को भी फुर्सत नहीं मिल पाई। सुनो, तुम आ गई हो तो कुछ देर दुकान देखती रहो, मैं कुछ जरूरी सामान ले आऊं। छोटू यहाँ है ही, तुम जरा ध्यान रखना बस। जी आपको बहन जी क्या चाहिए?
1: अरे तुम यहाँ क्या लेने आई हो राधा?
0: माफ कीजिए, आप मेरी पत्नी का नाम कैसे जानती हैं?
1: मालती, यही है तुम्हारी जीजा जी।
0: ओ तो मालती जी आप ही हैं, स्टेशन मास्टर साहब की पत्नी। नमस्कार।
1: नमस्कार जी, और आपकी पत्नी की क्लास चले।
0: बैठिए बैठिए, मेरी दुकान पर तो ये छोटा सा स्टूल है।
1: अरे जी उसकी कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं घर चलती हूँ, बच्चे को अकेला सुला कर आई हूँ। जाग गया तो पता नहीं क्या कर बैठे। क्या छोटे बच्चे को अकेले छोड़ कर आई हो? थोड़ी अफीम देकर सुलाई थी, दूसरे दोनों को पड़ोस वाले बाबा के पास छोड़ आई हूँ।
2: माधव देख, मुझे तो किराया चाहिए, किराया। पूरे 4 महीने हो गए जो है कायम। देख ये बीमारी का बहाना कब तक चलेगा? महीने भर से दुकान बंद करके घर में पड़े हो जो है कायम।
0: क्या करूं लाला जी, ये बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही। गरीबी की वजह से बड़े डॉक्टर का इलाज करा नहीं सकता।
2: अरे अरे मैंने सुना है जो है कहा तो, अब तो तुम्हारी घरवाली जो है कहा तो रेलवे के स्कूल में पढ़ाने लगी है।
0: लाला जी हाँ, 1 महीने से नौकरी लगी है।
2: देखो भाई, पानी अफसर से ऊपर गुजर चुका है जो है कहा, किराया नहीं देते, पैसे नहीं है तो बच्चों का दूध बंद क्यों नहीं कर देते जो है कहा।
0: बाल बच्चों के घर में भला दूध दही के बिना गुजर होती है लाला जी?
2: अरे जब पाल नहीं सकते जो है कहा तो बच्चों को अनाथालय में भेज दो
0: लाला जी।
2: जेब कटिया स्मगलिंग की ट्रेनिंग दिला दो। धंधा भी चोखा और माल भी मोटा।
0: लाला जी घर से बाहर निकल जाइए। मैं कहता हूँ निकल जाइए बाहर।
2: जाता हूँ
3: भी
2: गलियों में भीख न मंगवा दी। तो मेरा भी नाम है। ये तो बेहोश हो गया।
4: ये क्या हुआ पिताजी को? क्या हुआ ये पिताजी को?

0: तरफ देखो महेश के पापा, मेरी तरफ। अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। देखो देखो आज मैं वेतन लेकर आई हूँ, 800 रुपए। लो लाला जी का 4 महीने का किराया 300 रुपए अभी भिजवा देती हूँ। महेश महेश ले बेटा, दे लाला जी को पैसे।
1: माँ माँ पिताजी ने आके खोल दी, थोड़ा पानी और मुँह पर डालू।
0: महेश के पापा,
1: पिताजी
0: महेश के पापा,
1: माँ अपने बेटे के 800 रुपए लेकर आई थी, मैं लाला जी का किराया उनके पास पहुँचा देता हूँ।
0: मुझे 300 रुपए के 3 ट्यूशन भी मिल गए हैं। अब तुम चिंता छोड़ो, हिम्मत से काम लो। अब हमारे सामने लाचारी नहीं रहेगी, हम मेहनत करेंगे और लाचारी को रोशनी में बदल देंगे। आंखें खुल गई तो अब अंधेरे में नहीं भटकेंगे। अब मेरे साथ साथ तुम्हारी भी आंखें जो खुल गई हैं, हम दोनों की आंखें खुल गई
2: हैं।
3: अभी आपने सुना श्रीमती नुजहत आरा बेगम का लिखा नाटक आंखें खुल गईं। प्रस्तुति डॉक्टर ब्रज बल्लभ मिश्र की थी। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे श्रीमती दीपा रानी श्रीवास्तव, श्रीमती साधना भार्गव, धर्मेंद्र कुमार, अंशुमान मिश्र, रमेश मिश्रा, कौशल किशोर तोमर और श्रीमती राजकांता अरोड़ा।
4: अभी आप सुन रहे थे नाटक आंखें खुल गई। लेखक थी नुजहत आरा जुबैरी। प्रस्तुति डॉक्टर ब्रजबल्लभ मिश्र की थी। और इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं जितेंद्र अभिषेकी। आप सुनेंगे इनसे ख्याल गायन, जो राग जिलाफ में निबद्ध रहेगा। साथ ही सुनेंगे पंडित जसराज से भजन।

0: बुलाया मांगने आए थे, वो बुरा भला करने लगे तो पिताजी को गुस्सा आ गया, उन पर बरस पड़े और बेहोश हो गए।
1: तू जल्दी से पानी ना, जा, देखो, सुनो, सुनो, उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? महेश के पापा, महेश के पापा।
0: कहती थी ना, ये संतान तुम्हें चिंता के अलावा और कुछ नहीं देगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। कलाकार थे आज के जितेंद्र अभिषेकी, जो ख्याल गायन कर रहे थे और जो राग जिलाफ में निबद्ध था। साथ ही सुना आपने पंडित जसराज से भजन।

0: पंडित जसराज के स्वर में है अभी आपने सुना ये भजन जो राग अहीर भैरव में निबद्ध था। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
4: With a large domestic market.
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्त तरीके पर मंत्रिस्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। दो दिन के सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न